एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 11वीं तिथि, तदनुसार 1 जून सन 2026। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों

0: को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। एक महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा। इस दौरान उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग, मौसम से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देने, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाने पर बल दिया जाएगा। इससे पहले श्री चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत में इस अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। आज से 8 जून तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान और मतगणना 18 तारीख को होगी। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति ने विधान परिषद चुनाव के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मंगोलिया के उलान बटार स्थित गंदतेग चेगलिंग मठ में अरहत सारिपुत्र और अरहत महामोगलन के पवित्र अवशेषों को पूरे विधि विधान के साथ स्थापित किया गया। ये दोनों भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। इन अवशेषों को भारत से 10 दिन की प्रदर्शनी के लिए लाया गया है, जो 10 जून तक चलेगी। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मंगोलिया में भारत के राजदूत अतुल मल्हारी गोत्सुर्वे की उपस्थिति में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल अक्टूबर में मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख की भारत यात्रा के दौरान इस प्रदर्शनी की घोषणा की थी। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थीं। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सुमन कल्याणपुर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार IPL खिताब जीत लिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली की नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। वंदना कार्यक्रम में सर्वप्रथम हम नमन करते हैं अपनी मातृभूमि को और सुनते

आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से श्रोताओं आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। वंदना कार्यक्रम में लीजिए अब हम आपको सुनवा रहे हैं अनूप जलोटा के स्वर में ये भजन।

श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में लीजिए, हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर के स्वर में हम दोनों फिल्म से लिया गया ये फिल्मी भजन।

इसी फिल्मी भजन के साथ कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होती है। FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है।

0: फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। सुबह के 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनते हैं चिंतन आलेख सीएस तिवारी का।
1: एक चरवाहे की कथा है। वो अपनी गायें जिस जंगल में चराने ले जाता था उसमें एक पुराना शिव मंदिर था। चरवाहा मंदिर में लगे घंटे की ध्वनि से प्रभावित था और रोज नियम से शिवलिंग पर खड़े होकर घंटा बजाया करता था। एक दिन उसके गांव और जंगल के बीच पड़ने वाली नदी में बाढ़ आ गई। चरवाहा जंगल के मंदिर में पहुंच घंटा बजाने से लाचार काफी देर तक प्रतीक्षा करता रहा कि नदी में पानी कम हो तो वो निकले, पर नदी और उफनती जा रही थी। अंततः चरवाहे ने फैसला किया कि उफनती नदी पार करके वो घंटा बजाने जरूर जाएगा। बड़ी मुश्किल से उसने नदी पार की और मंदिर पहुंचा। वहां जरारू पर चढ़कर जैसे ही घंटा बजाने को हुआ, शिवजी प्रकट हो गए और उससे वर मांगने को पूछने लगे। चरवाहा हतप्रभ, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसने आखिर ऐसा कौन सा काम कर दिया जो भगवान उससे वर मांगने को कह रहे हैं, जबकि ये तो कितनी कठोर तपस्या करने वालों को भी दर्शन तक नहीं देते। फिर अचानक उसे अपने अपराध का भी ज्ञान हुआ कि इन्हीं पर तो पैर रखकर मैं रोज घंटा बजाया करता था। इन्हें तो मुझसे नाराज होना चाहिए और ये उल्टे मुझसे वरदान देने की बात कह रहे हैं। चरवाहा संशय में पड़ गया। भगवान शिव ने चरवाहे के संशय को ताड़ लिया और उसका समाधान करते हुए कहा कि अपराध तो तुमने किया परंतु अनजाने में, लेकिन अपने नियम पर तुम अडिग रहे। उफनती नदी भी तुम्हारा नियम नहीं तोड़ सकी, यही बात तुम्हें असाधारण बनाती है। ऐसे हैं बाबा भोलेनाथ, उनको समझना बहुत कठिन है। परम तत्वज्ञ भीष्म पितामह से नीति धर्म और मोक्ष के सूक्ष्म रहस्यों का विवेचन सुनते हुए महाराज युधिष्ठिर ने जब शिव महिमा के बारे में प्रश्न किया तो पितामह ने असमर्थता व्यक्त करते हुए कहा था कि साक्षात विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण ही भगवान शिव की महिमा का वर्णन कर सकते हैं। और पितामह भीष्म के प्रार्थना करने पर भगवान कृष्ण ने भी यही कहा था कि वे भी भगवान शिव के संपूर्ण तत्वों को जानने में असमर्थ हैं, केवल कुछ गुणों को ही वो व्याख्यायित कर सकते हैं। शिव ज्ञान वैराग्य और साधुता के परम आदर्श हैं। वे नित्य हैं, अजन्मे हैं, अनंत हैं, परम पवित्र और परम तत्व हैं, उनके परे कुछ भी नहीं है। श्रुति के अनुसार सृष्टि के पहले न सत था न असत, केवल एक निर्विकार शिव ही विद्यमान थे। इसलिए जो सृष्टि के पहले हो वही सत है, वही ब्रह्म है, यानी ब्रह्म का नाम ही शिव है। विश्व में शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना अति प्राचीन काल से मानी जाती है। वस्तुतः ये 12 किस्म की शक्तियां या ऊर्जाएं हैं, जैसे काल या समय की ऊर्जा, जल की ऊर्जा, वनस्पति की ऊर्जा आदि को व्याख्यायित करते हैं। आइए इस भोर में हम उस महाशक्ति का चिंतन करें जो सभी प्रकार की ऊर्जा से परिपूर्ण है, जो सत्य है, जो शिव है और जो सुंदर है।

फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। सुबह के 6:35 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम श्री रामचरित मानस गान। आज की कड़ी में मुख्य गायक स्वर है रविंद्र साठे का, संगीत निर्देशक सतीश भाटिया।

दल बल समेत भरत के आगमन के समाचार से निषाद राज को आशंका होती है। क्या कारण है जो भरत वन में जा रहे हैं? यदि उनके मन में कपट भाव न होता तो साथ में इतनी बड़ी सेना लेकर क्यों चलते? निषाद राज ने सेवकों तथा कुटुंबियों को सभी नावों को कब्जे में करके पानी में डुबो देने तथा सभी घाट रोक लेने के लिए सावधान कर दिया। कहा, सब लोग भरत से युद्ध में लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं स्वयं भी स्वामी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि देकर 14 भुवनों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा। निषाद राज की ललकार सुनकर निषादों की एक छोटी मोटी सेना तुरंत खड़ी हो गई। सभी शूरवीरों ने कमर में छोटे छोटे तरकस बांध धनुष पर वाण चढ़ा लिए। रण के लिए ढोल बजा ही था कि बाई ओर से छींक सुनकर एक वृद्ध अनुभवी निषाद के मन में विचार आया कि भरत से मिल लेना चाहिए, शकुन शुभ है, अतः युद्ध नहीं होगा। भरत कदाचित राम को लिबाने जा रहे हैं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। आज की कड़ी में मुख्य गायक स्वर था रविंद्र साठे का, संगीत निर्देशक सतीश भाटिया।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का प्रसारण। सुबह के 6:45 हुए हैं। आइए जानते हैं आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रम संबंधी जानकारी।

अब से बस थोड़ी देर बाद यानी 6:50 पर आप सुनिएगा सदाबहार फिल्मी की। 7:10 पर प्रादेशिक समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। 7:20 पर आप सुनिएगा हमारा दैनिक मनोरंजन कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट। 8:00 समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। 8:15 पर आप लुत्फ उठा सकते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत का। महिला श्रोता बहनों का कार्यक्रम महिला जगत आप सुनिएगा सुबह 8:30 पर। हमारी साथी होंगी मधुलता तिवारी। विविध भारतीय प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जाएंगे सुबह 9:00 आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

10 बजे आप सुन सकते हैं जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं सुबह 10:05 पर, 10:30 पर आप सुन सकते हैं प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का उमंग, 11 बजे विविध भारती सेवा मुंबई के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से, दोपहर 2:10 पर आप सुनेगा प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से और 2:15 पर समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, 2:30 पर आप लुत्फ उठा सकते हैं विविध भारती के कार्यक्रमों का आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। श्रोताओं, हमारी सांध्यकालीन सभा का आरंभ होगा शाम 5 बजे कार्यक्रम युववाणी से। 5:30 पर आप आनंद ले सकते हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम का। गुड इवनिंग बालाघाट, हमारा दैनिक मनोरंजन कार्यक्रम आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे।

6:30 पर आप लुत्फ उठा सकते हैं गजलों का कार्यक्रम सुगम संगीत के अंतर्गत। शाम 7 बजे कार्यक्रम संबंधी जानकारी आपको दी जाएगी कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत। दिल्ली से समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे शाम 7:05 पर और प्रादेशिक समाचार का समय होगा शाम 7:10 जिसे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले किया जाएगा। शाम 7:21 पर आप आनंद ले सकते हैं फिल्म संगीत का। 7:30 पर किसान भाइयों का कार्यक्रम ग्राम सभा अनुप्रसारित किया जाएगा आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। फिल्म संगीत के कार्यक्रम का आप लुत्फ उठा सकते हैं रात 8 बजे और 8:30 पर पॉप म्यूजिक का। दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे रात 8:45 पर। तो श्रोताओं, ये थी संक्षिप्त जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। समय है कार्यक्रम सदाबहार गीतों का। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं श्रोताओं इस गीत के साथ, जिसे हमने चुना है आपके लिए फिल्म उपहार से। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, रचना आनंद बख्शी की, और इस गीत को अपने स्वर से सजाया है मुकेश ने।

श्रोताओं माफ कीजिएगा, हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के स्वर में फिल्म काला पत्थर फिल्म का गीत। संगीत राजेश रोशन का है, बोल साहिर लुधियानवी के।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी के स्वर में काला पत्थर फिल्म का गीत। संगीत राजेश रोशन का था, बोल साहिर लुधियानवी के। तीन देवियां, लीजिए सुनते हैं इस फिल्म का गीत। आवाज़ लता मंगेशकर किशोर कुमार की है, संगीत दिया है SD बर्मन ने और गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी।

अभी आप सुन रहे थे तीन देवियां फिल्म का गीत। आवाज लता मंगेशकर किशोर कुमार की थी, संगीत दिया था एसडी बर्मन ने और बोल थे मजरू सुल्तानपुरी के। श्रोताओं आप सुन रहे

है 101.3 मेगाहर्ट्स पर। ये आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र का कार्यक्रम में अगला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं आई मिलन की बेला फिल्म से। आवाज़ लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी की है, धुन तैयार की है शंकर जयकिशन ने और बोल हैं शैलेंद्र के।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी के स्वर में एक कली मुस्काई फिल्म का गीत। संगीत शंकर मदन मोहन का था, बोल राजेंद्र कृष्ण के थे। कार्यक्रम में ये आखिरी गीत लीजिए आपके रेडियो सेट।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं चोरी चोरी फिल्म का गीत। आवाज लता मंगेशकर और मन्ना डे की थी। संगीत शंकर जयकिशन का और गीतकार हैं शैलेंद्र। श्रोताओ, इसी गीत के साथ कार्यक्रम सदाबहार फिल्मी गीत अब यहीं संपन्न होता है। FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। सुबह के 7:10 होने को है। रुक करते हैं।

0: आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की ओर और सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गान अपना।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। म्यांमार के राष्ट्रपति आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रायसेन से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में लॉन्च की ड्रोन यूनिट और ट्रैफिक साथी एप्लीकेशन। और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दूसरी बार जीता आईपीएल खिताब, विराट कोहली बने मैच के हीरो। अब समाचार विस्तार से। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच भारत म्यांमार संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा होगी। म्यांमार के राष्ट्रपति 5 दिवसीय आधिकारिक भारत यात्रा पर शनिवार को आए थे और उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत बिहार के बोधगया से की थी। राष्ट्रपति पद संभालने के बाद ये उनकी पहली आधिकारिक भारत यात्रा है। कल 2 जून को वे मुंबई में उद्योग और व्यापार से जुड़े कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान की शुरुआत करेंगे। ये अभियान किसानों को मिट्टी परीक्षण, प्राकृतिक खेती और संतुलित उर्वरक उपयोग के बारे में जागरूक करेगा। इससे पहले रविवार को शिवराज सिंह चौहान ने देश भर के कृषि वैज्ञानिकों, अधिकारियों और किसान संगठनों से वर्चुअल संवाद किया। उन्होंने कहा कि बढ़ता तापमान और रासायनिक खादों का असंतुलित उपयोग खेती के सामने बड़ी चुनौती बन गया है।
2: प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है खेत बचाओ, 1 जून से 30 जून तक खेत बचाओ अभियान पूरे देश में चलेगा। आप सबसे मेरी अपील है कि इस अभियान में भाग लीजिए और वैज्ञानिक जो कहें उनकी सलाह मानकर खाद का संतुलित उपयोग कीजिए, धीरे धीरे प्राकृतिक खेती की ओर बढ़िए। धरती कहे पुकार के कि अपनी माँ के साथ अन्याय मत करो, हम खेत बचाएं, तभी खेती बचेगी और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बचेगा।
1: इंदौर में रविवार की शाम लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जन्म जयंती धूमधाम से मनाई गई। गांधी हाल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अहिल्याबाई का शासन आज भी रामराज्य की याद दिलाता है। उन्होंने हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आनंद सिंह बहरावत और न्यायमूर्ति हिमांशु जोशी को अहिल्या गौरव सम्मान से सम्मानित किया। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल शाम इंदौर में डिस्ट्रिक्ट ड्रोन यूनिट और इंदौर ट्रैफिक साथी मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की। इस मौके पर 18 हाईटेक ड्रोन और 10 पुलिस वाहन भी इंदौर पुलिस के बेड़े में शामिल किए गए। ये ड्रोन कानून व्यवस्था और यातायात निगरानी में पुलिस की मदद करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने इंदौर में 3 नए थाने के खोले जाने की घोषणा भी की।
3: पुलिस कमिश्नर के माध्यम से 3 पुलिस थाने की आपने डिमांड की है, 3 पुलिस थाने भी इंदौर में बनाए जाएंगे और आवश्यक पुलिस बल जो निर्धारित मापदंड के हिसाब से है अभी कम है, निश्चित रूप से हमारी सरकार एक एक करके वो सारे काम कर रही। पूरे प्रदेश के प्रत्येक जिले में पुलिस बैंड स्थापित कर रहे हैं। पुलिस की भर्तियों में भी हमारी सरकार के द्वारा लगभग 22,500 पदों की भर्ती हर साल करते जा रहे हैं।
1: वहीं इंदौर से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टर यादव ने उज्जैन संभाग के 31 समर्पित शिक्षकों को भी सम्मानित किया। सम्मानित शिक्षकों में वे लोग शामिल थे जो नदी नाले पार कर और लंबा रास्ता पैदल तय कर दूर दराज के बच्चों तक पढ़ाई पहुंचा रहे हैं। 5 जून को पूरी दुनिया विश्व पर्यावरण दिवस मनाएगी। इस साल की थीम जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित है। इस बार वैश्विक कार्यक्रमों की मेजबानी अजरबैजान कर रहा है। वहीं भारत में इस बार 15 मई से 5 जून तक 21 दिनों का राष्ट्रव्यापी पर्यावरण संरक्षण अभियान चलाया जा रहा है। रेलवे स्टेशनों पर प्लास्टिक मुक्त बर्तनों को बढ़ावा देने के साथ साथ डिजिटल टिकटिंग अपनाने की अपील की जा रही है। वहीं भोपाल में कल पर्यावरण अनुकूल टिकाऊ शहरी आवास विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन सम्पन्न हुआ, जिसमें देश भर में वैज्ञानिक, पर्यावरणविद और शहरी

0: योजनाकारों ने हिस्सा लिया। विशेषज्ञों ने कहा कि बढ़ते शहरीकरण के बीच शहरों के विकास में प्रकृति और स्थानीय पारिस्थितिकी को केंद्र में रखना जरूरी है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में नीदरलैंड से वापस लाई गई 11वीं सदी की चोल ताम्र पट्टिकाओं का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि इन 24 पट्टिकाओं में चोल वंश की उपलब्धियां और उनकी समुद्री ताकत का वर्णन है। श्री मोदी ने कहा कि यह हर भारतीय के लिए गर्व का पल है। इसके साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ के मल्हार में मिली 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाओं का भी उल्लेख किया जो 6वीं-7वीं शताब्दी की बताई जा रही हैं। अब रुख करते हैं एक अच्छी खबर का। बैतूल जिले में एक अनोखा गांव है जो

0: ताम्र पट्टिकाओं का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि इन 24 पट्टिकाओं में चोल वंश की उपलब्धियां और उनकी समुद्री ताकत का वर्णन है। श्री मोदी ने कहा कि यह हर भारतीय के लिए गर्व का पल है। इसके साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ के मल्हार में मिली 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाओं का भी उल्लेख किया, जो 6वीं-7वीं शताब्दी की बताई जा रही हैं। अब रुख करते हैं एक अच्छी खबर का। बैतूल जिले में एक अनोखा गांव है जो सदियों पुरानी जनजाति कला को जीवित रखे हुए है। यह कला मूलतः भरेवा जनजाति की परंपरा है, लेकिन अब सामान्य समाज के लोग भी इसे अपना रहे हैं। इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे बैतूल संवाददाता मयंक भार्गव।
1: जिला मुख्यालय बैतूल से महज 5 किलोमीटर दूर बसा टिगरिया गांव अब क्राफ्ट विलेज के नाम से अपनी पहचान बना चुका है। इस हस्तशिल्प कला को जीवित रखने वाले और गांव को अनूठी पहचान दिलाने के लिए वाघमारे परिवार मुख्य भूमिका का निर्वाह कर रहा है। यह परिवार पीतल और बेल मेटल से आदिवासी संस्कृति से जुड़ी कलाकृतियां बनाता है। इनकी हस्तशिल्प कला देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी धूम मचा रही है। इनकी मेहनत के चलते अब उनके गांव को भारत सरकार ने क्राफ्ट विलेज घोषित कर दिया है। भरेवा कला के काम में माहिर बलदेव वाघमारे बताते हैं,
2: बैतूल जिले के 9-10 गांव में जो भरेवा समुदाय के लोग रहते हैं, ये सभी लोग इस काम को करते हैं। बड़े गर्व की बात है कि बैतूल जिले को पहला GI टैग मिला हुआ है और भरेवा कंगन के नाम से कलाकृति तैयार किया था, जो नेशनल अवार्ड जीत चुका है 2024-25 का। लगभग 500 से ऊपर कलाकार बैतूल जिले के अंदर इस काम को कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे।
1: आकाशवाणी समाचार के लिए बैतूल से मयंक भार्गव।
0: प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण का काम पूरा हो गया है। प्रदेश के 55 जिलों में से 1,44,000 से अधिक प्रगणकों ने घर घर जाकर मकानों की गिनती और जानकारी जुटाई। खास बात यह रही कि पूरी प्रक्रिया मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए डिजिटल तरीके से की गई। जनगणना का दूसरा चरण फरवरी 2027 में होगा, जिसमें परिवारों की सामाजिक और आर्थिक जानकारी ली जाएगी। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी कल से 5 जून तक मालवा निवाड़ अंचल के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे नीमच, मंदसौर, रतलाम और उज्जैन जिलों का दौरा करेंगे। हर जिले में जिला समन्वय समिति की बैठकें और कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में इस साल मानसून 5 से 7 दिन देरी से आ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून की एंट्री 20 से 22 जून के बीच होने का अनुमान है। विभाग ने आज धार और खरगोन में ओले बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि झाबुआ समेत कई जिलों में आंधी और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट है। वहीं कल आंधी और बारिश के चलते प्रदेश में तापमान 42 डिग्री से नीचे आ गया और सबसे ज्यादा गर्मी शाजापुर में 41.4 डिग्री दर्ज की गई। रायसेन जिले के छोटे से गांव सेमरी की बेटी अंजना यादव ने माउंट एवरेस्ट फतह कर प्रदेश का नाम रोशन किया है। उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि अंजना का साहस और संकल्प सभी बेटियों के लिए प्रेरणा है। एवरेस्ट विजेता अंजना आज भारत लौट रही हैं और प्रदेश में उनके भव्य स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं। अब रुक करते हैं क्रिकेट की खबर का। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लगातार दूसरी बार IPL का खिताब अपने नाम किया है। कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराया। विराट कोहली ने 75 रनों की नाबाद पारी खेली और 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर टीम को जीत दिला दी। विराट को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। लगातार 2 IPL खिताब जीतने वाली बेंगलुरु अब चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के साथ इस खास क्लब में शामिल हो गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर कल आगरमालवा, झाबुआ, शिवपुरी, राजगढ़ और गुना समेत विभिन्न जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन कर नशा मुक्ति का संकल्प लिया गया। नीमच RCT संस्थान के द्वारा 3 जून से चीताखेड़ा मेन रोड कथित विश्राम भवन के पास महिलाओं के लिए निशुल्क 31 दिवसीय सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो रहा है। सीहोर में नगरपालिका द्वारा कलेक्टर कार्यालय के पास मुख्य मार्ग पर डॉक्टर अंबेडकर उपवन में कल डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। कृषि महाविद्यालय खंडवा में परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इंदौर में हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने पर मातृभाषा.com और हिंदी सेवी मातृभाषा उन्नयन संस्थान के द्वारा व्याख्यान का आयोजन कल किया गया और डिंडोरी में ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। सुबह के 7:20 हुए हैं। डीजे सुनते हैं, नमस्कार बालाघाट।
4: नमस्कार बालाघाट।

नमस्कार बालाघाट सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ नमन। आज के इस नए अंक के साथ मैं हूं आज आपकी दोस्त वैशाली नागतोड़े। श्रोताओं, आज है 1 जून, यानी नए महीने की पहली तारीख, एक बेहतरीन शुरुआत का प्रतीक। जी हां दोस्तों, जून का महीना दस्तक दे चुका है और इसके ठीक 15 दिन बाद यानी 16 जून से बच्चों के स्कूल एक नए सेशन के साथ फिर से गुलजार होने वाले हैं। गर्मियों की लंबी छुट्टियों के बाद यह समय बच्चों के लिए एक नई शुरुआत, नई ऊर्जा और एक नए फ्रेश माइंडसेट के साथ वापसी का सही समय है। यह एक ऐसा मौका है जब आप पिछली असफलताओं को पीछे छोड़कर नए सिरे से अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। दोस्तों, यह एक महज एक कैलेंडर का पन्ना नहीं है, बल्कि आपकी जिंदगी की किताब का एक नया अध्याय है। एक नई सुबह, एक नई शुरुआत। इस जून में उन सभी चीज़ों को अपनाएं जो आपको आगे बढ़ाती है और आपके जीवन में खुशियाँ लाती है।

दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर कई महापुरुष हुए जिन्होंने अपने जीवन में बड़ी सफलताएं हासिल की। इन महापुरुषों ने अनमोल वचन कहे हैं जिन्हें हम अपने जीवन में उतारें तो हम भी सफल इंसान बन सकते हैं। उनके ये विचार ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। आइए जानते हैं आज का सुविचार। अब्दुल कलाम के अनुसार इंसान को कठिनाई की आवश्यकता होती है सफलता का आनंद उठाने के लिए। यह जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, जीवन में संघर्ष असफलताएं और चुनौतियां बहुत ज़रूरी हैं। यदि हमें बिना किसी मेहनत या रुकावट के सब कुछ मिल जाए तो हमें उस जीत या उपलब्धि का एहसास और असली खुशी कभी नहीं मिलेगी।

0: पटाखा एंड पटाखा एयर आर्म्स,
1: शादियां और अन्य अवसरों पर पटाखों की विशाल रेंज,
0: बालाघाट में एयर गन के अधिकृत विक्रेता,
1: एयर गन के प्रयोग से फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जानवरों को आंशिक आहत और डर से भगाएं, अपनी फसलों की रक्षा करें।
0: स्कूल कॉलेज गन शूटिंग के लिए भी संपर्क करें। पटाखा एंड पटाखा, सरेखा बाईपास रोड, बालाघाट।
1: मोबाइल नंबर 9406788702।
2: श्रोताओं, आज है 1 जून। 1 जून को इतिहास के पन्नों पर कौन कौन सी घटनाएं दर्ज हो गई, आइए जानते हैं। भारत और इसराइल के बीच हवाई समझौता हुआ 1 जून 1992 को। ब्रिटिश खोजकर्ता जेम्स क्लार्क रॉस ने पहली बार उत्तरीय चुंबकीय ध्रुव की खोज की 1 जून 1831 को। भारत की पहली डिलक्स ट्रेन दक्कन क्वीन को मुंबई और पुणे के बीच शुरू किया गया 1 जून 1930 को। भारत में छुआछूत जैसी कुरीतियों को समाप्त करने के लिए अस्पृश्यता कानून आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया 1 जून 1955 को। यूरोपियन सेंट्रल बैंक की स्थापना हुई 1 जून 1998 को।

श्रोताओं, इतिहास के क्रम में आइए अब जानते हैं उन महान व्यक्तियों के बारे में जिनका जन्म आज की तारीख में हुआ। भारतीय सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री जिन्होंने अमर फिल्म मदर इंडिया में अविस्मरणीय किरदार निभाया, उनका जन्म 1929 को आज की तारीख में हुआ। भारत के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी अशोक कुमार का जन्म 1 जून 1955 को हुआ। महावीर चक्र से सम्मानित भारतीय नौसेना के नाविक चिमन सिंह यादव का जन्म भी 1945 को आज की तारीख में हुआ। भारत की प्रसिद्ध भारोत्तोलक कर्णम मल्लेश्वरी का जन्म भी 1975 को आज की तारीख में हुआ। भारतीय क्रिकेट टीम के आक्रामक ऑलराउंडर खिलाड़ी यूसुफ पठान का जन्म

0: क्या आप किसी ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज की तलाश में हैं जो आपको न सिर्फ शिक्षण दे बल्कि साथ में दे रोजगार?
1: तो अब आपकी तलाश हुई पूरी, चले आइए AICTE से मान्यता प्राप्त और RGPV भोपाल से संबद्ध सतपुड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज में, जहां BTech कंप्यूटर साइंस, माइनिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल में डिग्री और साथ ही पॉलिटेक्निक के साथ 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग में।
0: हमारा पता है सतपुड़ा कैंपस, लालबरा रोड, गर्रा, बालाघाट।
1: मोबाइल नंबर 6262604111 और 9425836824।
2: श्रोताओं, इन संदेशों के बाद कार्यक्रम में वापस आते हैं और जानते हैं उन व्यक्तियों के बारे में जिन्होंने आज की तारीख में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। नीलम संजीव रेड्डी, जो कि भारत के 6वें राष्ट्रपति थे, उनका निधन 1996 को आज की तारीख में हुआ। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और उर्दू लेखक ख्वाजा अहमद अब्बास का निधन 1 जून 1987 को हुआ। प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी साजिद वाजिद में से एक थे वाजिद खान, ने सन 2020 में इस दुनिया को अलविदा कह दिया आज की तारीख में। श्रोता, वाजिद खान का जन्म 10 जुलाई 1977 को हुआ था और 1 जून 2020 में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वे बॉलीवुड के मशहूर संगीतकार और गायक थे। उन्होंने अपने भाई साजिद के साथ मिलकर साजिद वाजिद की जोड़ी बनाई। इस जोड़ी ने दबंग, वांटेड और प्यार किया तो डरना क्या जैसी सुपरहिट फिल्मों में सुपरहिट संगीत दिया। 42 वर्ष की आयु में किडनी की बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। श्रोताओं, वे बेहद संगीत प्रेमी परिवार से आते थे। उनके दादा उस्ताद अब्दुल लतीफ खान एक प्रसिद्ध सारंगी वादक थे और उनके पिता उस्ताद शराफत अली खान एक जाने माने तबला वादक थे। संगीत का माहौल घर में होने के कारण उनकी और उनके भाई साजिद की रुचि बहुत छोटी उम्र से ही संगीत में हो गई थी। वाजिद ने अपने भाई साजिद के साथ मिलकर संगीत की दुनिया में कदम रखा। इस जोड़ी ने साल 1998 में सलमान खान की सुपरहिट फिल्म प्यार किया तो डरना क्या में कुछ गाने कंपोज करके अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वाजिद खान ने केवल संगीत नहीं दिया बल्कि अपनी शानदार आवाज में कई सदाबहार गीत गाए। तो श्रोताओं, सुनते हैं उनका ही संगीतबद्ध किया ये गीत।

श्रोताओं, आज मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस 1950 से 1 जून को मनाया जाता है। इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय लोकतांत्रिक महिला संघ द्वारा बच्चों की शांति, स्वास्थ्य, सुरक्षा और शिक्षा की वकालत करने के लिए की गई थी। बाल संरक्षण के अंतर्गत बच्चों को हर प्रकार की हिंसा, दुर्व्यवहार और शोषण से सुरक्षित रखने के लिए कड़े कानूनों और सामाजिक जागरूकता पर विचार किया जाता है। सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हों, जिससे कि सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा और पोषण और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हों, बाल श्रम को पूरी तरीके से खत्म करने और बच्चों के सुरक्षित भविष्य के निर्माण के लिए की जाने वाली पहलों पर आज के दिन विचार विमर्श किया जाता है। तो श्रोताओं, आज है अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस और हर साल 1 जून को दुनिया भर में विश्व दुग्ध दिवस यानी वर्ल्ड मिल्क डे भी मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा 2001 में की गई थी। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को संतुलित आहार में दूध और डेयरी उत्पादों को शामिल करने के फायदों के बारे में जागरूक करना है। तो श्रोताओं, बातें आपसे आगे भी करेंगे, उससे पहले सुनते हैं।

0: श्रोताओं, बहुत ज़्यादा गर्मी चल का समय चल रहा है। आप सभी जानते हैं अभी नवतपा का समय है। मौसम में थोड़ी ठंडावक जरूर आई है, लेकिन इस तपती धूप और भीषण गर्मी से अपने आप को बचाना बहुत ज़रूरी है। इस तपती हुई धूप में अपने आप को हाइड्रेट रखना और धूप के सीधे संपर्क से में आने से आपको बचना चाहिए। घर से बाहर निकलते समय हमेशा सिर ढके और हल्के पूरे कपड़े पहने। पर्याप्त मात्रा में पानी या तरल पदार्थों का सेवन करें। अपने आहार में तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, संतरा जैसे मौसमी फलों का शामिल करें। इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है। ज़्यादा तला भुना मसालेदार खाना खाने से बचें, क्योंकि यह शरीर के तापमान को बढ़ाता है। तो श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। तो चलते चलते हम आपको बता दें कि आज के इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग हमें प्राप्त हुआ प्रदीप जैन और आरएल कटरे का। प्रस्तुति कुंवर विक्रम सिंह की थी और आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ थी मैं वैशाली नागतोड़े। तो दीजिए इस कार्यक्रम से हमें अनुमति। नमस्कार।
1: नमस्कार बालाघाट।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट। ये आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में समाचार प्रभात अनुप्रसारित किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
2: सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन से वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा, संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा, उसी दिन मतगणना भी होगी। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास आघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना यूबीटी 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा।
2: यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए की दिशा में एक बड़ी पहल है। इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि सभी मिलकर भाग लेंगे। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोयल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे में भी किसानों को सजग किया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई प्रमुख पहल की। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
3: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के रहने वाले किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा

0: सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
1: वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
2: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से।
1: वही न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार के द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का कल मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। एक श्रद्धांजलि।
4: कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को ढाका में हुआ था। सुमन कल्याणपुर ने 1950 के दशक के मध्य में हिंदी फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत की और आगे चलकर उन्होंने महान संगीतकारों और गायकों, विशेष रूप से मोहम्मद रफी के साथ सैकड़ों गीत रिकॉर्ड किए। उनके सबसे लोकप्रिय गीतों में आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, नाना करते प्यार शामिल है।
5: नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे।
4: सुमन कल्याणपुर के करियर की एक विशेषता ये थी कि उनकी आवाज महान गायिका लता मंगेशकर से काफी मिलती जुलती थी। इस तुलना के बावजूद सुमन कल्याणपुर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई और अपनी मधुर तथा सधी हुई गायकी के लिए वो हमेशा याद की जाएंगी। उनके निधन से भारतीय फिल्म संगीत का एक और स्वर्णिम अध्याय समाप्त हो गया है।

आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में लू के दौरान सुरक्षा, सावधानियां और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस चर्चा में सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग के डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों में आंधी, बारिश और खराब मौसम की घटनाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन, राहत आयुक्त कार्यालय और संबंधित विभागों को निरंतर निगरानी बनाए रखने और किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट

0: पर 155 रन बनाए। विराट कोहली के नाबाद 75 रन की पारी के बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राजस्थान के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। उन्होंने सर्वाधिक 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती। वो 15 साल 65 दिन की उम्र में ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। कागिसो रबाडा ने सत्र में सबसे ज्यादा 29 विकेट लेकर पर्पल कैप हासिल की। मनीष पांडे को बैकवर्ड पॉइंट पर टिम डेविड का शानदार कैच लेने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। मोहम्मद सिराज को सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने का पुरस्कार मिला, उन्होंने 172 डॉट बॉल फेंकी। साई सुदर्शन को सबसे ज्यादा चौके लगाने का पुरस्कार मिला, उन्होंने 75 चौके लगाए। वैभव सूर्यवंशी को सर्वश्रेष्ठ उभरता खिलाड़ी, 237.3 के स्ट्राइक रेट के साथ सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर और 72 छक्कों के साथ सर्वाधिक छक्के लगाने का पुरस्कार भी मिला। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुनीश शर्मा।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपील की कि गर्मी और लू से बचने के लिए खूब पिए देसी पेय। ये खबर जनसत्ता समेत सभी अखबारों में है। पत्र आगे लिखता है कि प्रधानमंत्री ने एथलेटिक्स में बने कीर्तिमानों की सराहना की है। भारत ओमान व्यापार समझौता आज से लागू, भारतीय उत्पादों को शुल्क मुक्त बाजार। अमर उजाला ने इसे प्रमुखता से देते हुए लिखा है, मोदी सरकार के कार्यकाल में 5वां FTA, पश्चिम एशिया संकट के बीच 2 गुना होगा द्विपक्षीय कारोबार। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा 30 जरूरी दवाओं के दाम निर्धारित करने पर हिंदुस्तान लिखता है कि इससे हड्डी, हृदय रोग और मधुमेह के रोगियों को राहत मिलेगी। सुरक्षित सोशल मीडिया शीर्षक से हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है कि भारत ने 9 से 17 वर्ष के करीब 76% बच्चे सोशल मीडिया मंच का इस्तेमाल समय बिताने के लिए करने लगे हैं, जिससे उनकी सोचने समझने की क्षमता प्रभावित हो रही है और ध्यान केंद्रित करने की उनकी क्षमता भी काफी घटती जा रही है। रोहतांग में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश से उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी से राहत मिलने और हवा में सुधार पर अमर उजाला ने सचित्र देते हुए लिखा है कि उत्तर पश्चिम में भारत में आंधी तूफान और बारिश के आसार। जबकि नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, दिल्ली वालों की राहत वाली हवा, 2018 के बाद तीसरी बार सबसे साफ हवा दर्ज की गई। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर के निधन पर स्मृति शेष विशेष में राजस्थान पत्रिका लिखता है, 3000 से ज्यादा फिल्मी और गैर फिल्मी गीत उन्होंने गाए। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, रहे ना रहे हम महका करेंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लगातार दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बनने को सभी अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन के साथ वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। सुबह के 8:15 हुए हैं। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं साथियों भूपेंद्र सिंह की गाई गजल के साथ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भूपेंद्र सिंह के स्वर में गाई इस गजल को। कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति मिताली सिंह के स्वर में। शायर हैं जमीर काजमी।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे हरिहरन के स्वर में गाई इस गजल को। इसी गजल के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं संपन्न होता है। FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। सुबह के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है महिला बहनों का कार्यक्रम महिला जगत।

0: महिला जगत कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों को अपनी रेडियो सखी मधु तिवारी और हमारे साथ हैं वैशाली, हम दोनों का स्वीकार करें प्यार भरा नमस्कार।
1: नमस्कार
0: वैशाली, समय आज बहुत बदल गया है
1: जी।
0: हम
1: हाँ।
0: अपने ना तो हाथ पैर चलाना चाहते हैं और ना ही दिमाग, हर काम हर सवाल के लिए मोबाइल में या तो गूगल या फिर AI का सहारा हम लेने लगे हैं।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन दिमागी कसरतों का क्या करें, अगर वो भी मशीन करेगी तो विकास हमारा कैसे होगा। इसलिए इस बात को सोचना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के मामले में तो यह भी और चिंताजनक है कि यदि एक बच्चा शुरू से ही AI पर निर्भर हो जाएगा तो उसकी स्वयं की स्वतंत्र सोच कभी विकसित नहीं हो पाएगी। इससे हमारे बच्चे सवाल पूछें, तर्क करने व सही गलत में अंतर समझने की क्षमता कभी हासिल ही नहीं कर पाएंगे, तब वे जीवन से जुड़ी कठिन परिस्थितियों के आगे अपने घुटने टेक देंगे।
1: मधु, संघर्ष ही व्यक्तित्व की गढ़ता है।
0: बिल्कुल
1: है ना, ये

0: हम सभी को पता है एआई की कला बनाम मानवीय संवेदनाओं, कला अनुभवों और भावनाओं के संघर्ष को ही जन्म देता है। गीतकार अपने अनुभवों से गीतों की रचना तो करता है, वहीं एआई द्वारा रची गई रचनाएं भी ऊपर से सुंदर दिख सकती है पर उसमें आत्मा नहीं होती। ये तो बात सत्य है,
1: बिल्कुल सही
0: है ना।
1: और जो इंसानों के अनुभव से ही आती हैं,
0: बिल्कुल जी।
1: और वैशाली, हम ये नहीं कहते कि मदद हम ना लें, मदद आप लें पर खुद को निर्भर ना बनाएं, क्योंकि ये दिमागी विकास को रोकती हैं। इसलिए सोचने की आदत बनाएं, फिर एआई की मदद से उन्हें बेहतर बनाएं। उदाहरण के लिए यदि आप किसी विषय से सीधे उनसे कहेंगे कि आप ये लेख लिखो, ये कहने की बजाय यह कहना अधिक बेहतर होगा कि यह मेरी रूपरेखा है, इसमें जो कमियां हैं उन्हें आप बताएं, इसे और बेहतर बनाने की आप सुझाव दें।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं मधु जी आप। हाँ। इस तरह से एआई हमारी सोच को कमजोर नहीं बल्कि अधिक स्पष्ट और गहरा बनाने में मदद करेगा।
1: बिल्कुल
0: है ना,
1: आपको आगे भी बढ़ाएगा
0: और हमें, हाँ आगे भी बढ़ाएगा और हमें जो है तरक्की के लिए सही रास्ता भी दिखाएगा,
1: रास्ता भी दिखाएगा।
0: लेकिन हम पूरी तरीके से अगर उस पर निर्भर रहेंगे तो ये तो सही नहीं होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और वैशाली, ये सब आपके सपनों को भी पूरा करेगा।
0: बिल्कुल,
1: सपने आप खूब देखें, उन्हें पूरा किसी के कंधे का सहारा लेकर पूरा ना करें।
0: जी हाँ,
1: मेहनत करके आगे बढ़े, अपने सपनों में रंग भरें और आगे बढ़ते जाएं।
0: जी हाँ, और कैसे, इस गीत की तरह।
1: बिल्कुल।

0: ताज नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: हम सभी उनके नाम को, उनके काम को से बहुत अच्छे तरह से परिचित हैं। वो एक ऐसी फिल्म अभिनेत्री थी जिन्होंने कई वर्षों तक फिल्मों में अपना काम, अपना लोहा मनवाया।
1: बिल्कुल,
0: आज हम सब मना रहे हैं उनका जन्मदिन।
1: जी,
0: उनका जन्म 1 जून 1928 को कोलकाता के पश्चिम बंगाल में हुआ था। उनका बचपन का नाम फातिमा रशीद था। वो डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन 6 साल की उम्र में भी वो अभिनय करने लगी थी। भारतीय सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री बनी वो, जिन्होंने हिंदी फिल्में अभिनेता सुनील दत्त से शादी की। उनका फिल्मी सफ़र बचपन से शुरू हुआ, लेकिन इन्होंने मैन अभिनेत्री का शुरुआत इन्होंने की 1942 में तमन्ना फिल्म से।
1: जी,
0: तो चलिए उनकी याद में सुनते हैं, उन पर फिल्माया गया एक प्यारा सा गीत।
1: जी।

0: वैशाली, आज यानी 1 जून को हम मनाते हैं विश्व दुग्ध दिवस और वैश्विक अभिभावक दिवस। विश्व दुग्ध दिवस मनाने का उद्देश्य था संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठनों को संगठित करना।
1: बिल्कुल,
0: FAO द्वारा 2001 में इस दिन की शुरुआत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर भोजन और पोषण के रूप में दूध और डेयरी उत्पादों के महत्व को

0: उजागर करना है और डेयरी उद्योग को आगे बढ़ाना है।
1: बिल्कुल मधु जी, हम सभी जानते हैं दूध और उससे बने पदार्थों का जो ये रहता है ना, वो हमारे जीवन के लिए कितना महत्व रखता है।
0: बिल्कुल,
1: है ना। बच्चों के जन्म के साथ ही उसका पहला आहार माँ का दूध ही होता है और जीवन के अंत तक दूध हमारे साथ रोजमर्रा के खाने पीने में कई रूप में शामिल होता है। जैसे कि हम दूध से दही, है ना, दूध से छाछ, मतलब कई चीजें बनाते हैं। माँ का दूध तो बच्चे को अमृत के समान है जिसका कर्ज बच्चा जीवन भर नहीं चुका सकता है।
0: वैसे हमें ध्यान देना होता है कि आजकल मिलावट का जमाना है
1: जी,
0: तो कहीं हम अपनी सेहत अच्छी करने के लिए दूध का उपयोग कर रहे हैं
1: जी,
0: और यदि उसमें कुछ मिलावट की गई है तो वो फायदा होने के बजाय नुकसान ना कर दे।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए हमें इन चीजों का बहुत ध्यान देना चाहिए
1: जी।
0: दूध यदि बाहर से हम लेकर उपयोग कर रहे हैं तो उसका ध्यान रखें, उसकी शुद्धता का
1: जी।
0: माँ और बच्चे का तो दूध का रिश्ता ही अलग होता है।
1: बिल्कुल,

0: वैशाली, हम मौसम की मार तो झेल ही रहे हैं, नौ तपा आजकल चल रहे हैं, गर्मी बहुत हो रही है और साथ साथ हम देख रहे हैं कि जगह जगह पर आंधी तूफान ये सारी चीजें हमारे मौसम को गड़बड़ा रही हैं।
1: बिल्कुल,
0: है ना। और एक चीज और भी है इसके साथ में जो अनमोल है हमारे लिए,
1: सही
0: जो प्रकृति ने हमें मुफ्त में दी है,
1: जी हाँ,
0: उसका भी हम अपने जीवन में बहुत दुरुपयोग करते हैं।
1: बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप,
0: उसका मोल नहीं समझते।
1: जी,
0: आप शायद हमारा इशारा समझ गए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ, ये तो मैं तो समझ ही गई हूँ, हमारे श्रोता भी समझ गए होंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, कि हम बात कर रहे हैं
1: पानी की।
0: बताइए वैशाली, कि हम एक दिन यदि पानी के बिना रह सकते हैं क्या?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं, ना? नहीं
0: तो
1: बिल्कुल।
0: फिर क्यों हम इसकी उपयोगिता नहीं समझते?
1: बिल्कुल।
0: और वैशाली, हर साल जब गर्मी का मौसम आता है तो चारों ओर पानी की कमी हो जाती है।
1: जी,
0: हम सभी इस बात से बहुत परेशान भी हो जाते हैं कि पानी की कमी है, क्या करें, पानी नहीं मिल रहा। चारों तरफ हम जब किसी से भी बात करते हैं तो ये बात हमारे सामने आती है।
1: गर्मियों के दिनों में ही मधु जी ये परेशानियां आती हैं, और जब बारिश होती है,
0: हाँ,
1: और जब भरपूर पानी हो जाता है तो हम पानी को किस तरह बर्बाद करते हैं, मतलब उसकी उपयोगिता के बारे में हम जानते ही नहीं है, समझते ही नहीं है।
0: समझते हैं वैशाली, हाँ, लेकिन जो क्षणिक हमारी परेशानियां थी उसको हम भूल जाते हैं।
1: भूल जाते हैं, बिल्कुल,
0: कि कल हमारा क्या था,
1: क्या था,
0: और आज जब हमारे पास बारिश हो रही है, पानी आ रहा है, तो यदि वो बह रहा है तो उसको बहने देते हैं।
1: जी,
0: बहुत लोग कहते हैं कि आप उसको बचाइए।
1: जी,
0: जैसे आप अपनी छत पर वाटर बोल लगा सकती हैं, पाइप लगा सकती हैं, जमीन तक
1: बारिश के पानी को स्टोर कर सकते हैं,
0: स्टोर कर लें आप।
1: जी,
0: और उससे, लेकिन हम कभी किसी से कहते हैं तो कहेंगे, अरे पानी बह रहा है तो हम कैसे बचाएंगे उसको, कोई छाता लगा के घर में तो भर नहीं लेंगे, है ना। तो ऐसा हम बहनों से जब हम बात करते हैं तो ऐसे हमारे सामने ये चीजें आती हैं। लेकिन इनके कई तरीके हैं जिससे हम अपने जमीन का वाटर लेवल बढ़ा सकते हैं, कि ऊपर का जो छत का पानी बह रहा है उसको पाइप को नीचे आप जमीन में डाल दें तो नीचे पानी जाएगा,
1: पानी जमा हो जाएगा, वो पानी जो है हमारे पेड़ पौधों के लिए, हमारी जो छोटी मोटी जो जरूरतें हैं, मतलब पानी की तो आप जानते ही हैं कि हर चीज में हर प्रकार से हमको जरूरत है।
0: और चाहे तो आपके घर के आसपास ही आपके कहीं जगह खाली पड़ी है, खेत है आपके, तो उनमें छोटे छोटे गड्ढे कर दें, उन गड्ढों में आप बरसात का पानी भर लें।
1: बिल्कुल,
0: तो इससे क्या होगा, कुछ समय जैसे बरसात खत्म हुई है कुछ समय वो पानी भरा रहेगा, आपके पीने का उपयोग का यदि नहीं है तो जानवर पी सकते हैं।
1: जी,
0: और आप उस पानी को पेड़ पौधों में डाल सकती हैं, कुछ पेड़ पाल सकती हैं, वो पेड़ जाके हमें ठंडक देंगे,
1: सही बात है,
0: से वो हमारे लिए काम आएंगे।
1: आजकल क्या है, देखिए कई जगह पे मैंने देखा है नल खुले रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने एक बात सुनी हुई थी, यहाँ नगर पालिका में सब रंग कार्यक्रम में हमारे यहाँ बात की गई थी, तो उसमें नल खुले रहते हैं, नगर पालिका से हम शिकायत करते हैं पानी नहीं आ रहा है, एक टाइम नल नहीं आ रहा है, ऐसी चर्चाएं हमारी चलती हैं।
0: बिल्कुल, बिल्कुल
1: ठीक बोल रही।

0: ना मधु जी, लेकिन क्या है, जब पानी आता है तो हम उसी पानी को वेस्ट करते हैं,
1: बिल्कुल,
0: और अति से ज्यादा वेस्ट करते हैं।
1: कई बार हम देखते हैं कि हमारे घर में यदि नल है
0: जी
1: और आपके यहाँ मोटर लगी हुई है
0: जी,
1: तो आप बहुत प्रेशर से आप पानी भर रहे हैं
0: जी,
1: और नहाने में यदि एक बाल्टी दो बाल्टी लग रही है तो वहाँ आप चार चार बाल्टी फेंक रहे हैं,
0: बिल्कुल
1: साबर का उपयोग कर रहे हैं
0: जी।
1: और वहीं बाजू में किसी का, गरीब व्यक्ति का यदि घर है या जिसके यहाँ नल नहीं है
0: जी,
1: तो आप ये नहीं करेंगे कि पाइप लगा के उसको दो चार बाल्टी पानी दे देंगे
0: जी,
1: लेकिन उसको ये जरूर दिखाएंगे कि आपके यहाँ नहीं है, मेरे यहाँ भरपूर है,
0: भरपूर पानी है, बिल्कुल।
1: तो उसका जब हम दुरुपयोग किसी भी चीज का करते हैं
0: जी,
1: तो प्रकृति हमें सजा देती है,
0: बिल्कुल सजा देती
1: है ना
0: जी।
1: तो हमें ऐसा नहीं करना,
0: नहीं करना चाहिए, बल्कि हाँ हमें ध्यान देना चाहिए कि हम वो पानी को कैसे बचाएं, है ना, बजाय पानी को वेस्ट करने के, बर्बाद करने के।
1: और आप घर के आसपास, जैसे अब बरसात आने वाली है, अभी आम जामुन बहुत आ रहे हैं
0: जी,
1: मैं हमेशा बोलती हूँ अपनी बहनों से कि अभी ये सारे चीजें आ रही हैं, हम खा रहे हैं उनको, अभी आप उनकी गुठलियों को इकट्ठा कर लें
0: जी,
1: और जैसे ही आपकी बरसात आती है, एक दो पानी गिरते हैं, उसके बाद आपके आसपास जो जमीन है उसमें आप वो गुठलियां जो है उनको रोपित कर दें। कहीं मैंने एक पेपर में पढ़ा था कि एक किसान है, वो पूरे हिंदुस्तान से नहीं, विदेशों से भी उसने आम की गुठलियां मंगवाई
0: जी,
1: और आज उसका बहुत बड़ा आम का बगीचा
0: है,
1: कई प्रकार के, कम से कम करीब 500-700 प्रकार के उसके बगीचे में आम लगे हुए हैं, और ऐसे ऐसी किस्में उसके यहाँ हैं कि जो हमें देखने और सुनने भी ना मिले, सिर्फ उसने गुठलियां मंगवाई, उससे उसने इतनी बड़ी चीज खड़ी कर।
0: हम भी ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि हम आम खाते हैं तो आम की गुठलियां हैं, उन गुठलियों को हम कहीं घूमने जाते हैं,
1: बिल्कुल,
0: है ना। हाँ। जैसे कि अभी छुट्टियों का समय चल रहा है, छुट्टियों में बच्चे दादा दादी नाना नानी के यहाँ घूमने जाते हैं बाहर, तो ऐसे समय में क्या है, उन गुठलियों का आप जो है कहीं डाल दें तो आप नेचर के प्रति, यानी प्रकृति का हम एक सहयोग कर सकते हैं, यानी उससे क्या होगा, कई जगह पेड़ हो जाएंगे,
1: बिल्कुल,
0: है ना, तो उससे हमको वो तो फल तो देंगे ही, साथ में हमको छाया भी उनसे,
1: बहुत सारी चीजें देते हैं पेड़ हमको। और आपने छुट्टियों की बात की, तो बच्चों की छुट्टियां जो आजकल चल रही हैं
0: जी,
1: नौतपा हैं, आप बच्चों को घर में रखें
0: जी,
1: है ना, और जो उनकी छुट्टियां हैं उनको सिर्फ छुट्टियां ना माने
0: जी,
1: उनको सुकून दें, क्योंकि हम देखते हैं कि जहाँ बच्चों की छुट्टियां हुई और मम्मी पापा कहते हैं, पहले से सोच के रखते हैं इस छुट्टी में बच्चे को क्या सिखाना है,
0: क्या सिखाना है,
1: और क्लास कहाँ ज्वाइन कराना है, तो एक क्लास से छूटते हैं
0: दूसरी क्लास में उनको,
1: हमें अपने दिन याद है कि हम कैसे फ्री हो जाते थे छुट्टी हुई तो,
0: मस्त घूमते थे नाना नानी के यहाँ,
1: सबके यहाँ घर जाना, बिल्कुल स्वतंत्र होते थे, 2 महीने बिल्कुल एंजॉय करते थे। वो चीजें आज खत्म हो गई,
0: बिल्कुल।
1: तो आप वो दिन अपने याद करिए और वैसे ही सुकून भरी छुट्टियां अपने
0: बच्चों को भी दीजिए
1: जिससे वो अपना एंजॉय कर सके
0: और हम भी आनंद लेते हैं इस गीत का,
1: बिल्कुल।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला जगत FM बैंड 101.3 MHz पर। ये आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। सुबह के 9 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में सुनते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

0: चित्रलोक कार्यक्रम में आप सुनते हैं ये गीत। सन ऑफ सरदार 2 फिल्म का ये गीत है, नेहा कक्कर की आवाज।
1: हंसती फिरे ते नाल जचती फिरे, जचती फिरे ते

सन ऑफ सरदार टू फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, आवाज नेहा कक्कर की थी। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर। दोस्तों आज है ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स यानी विश्व वैश्विक मातृ पितृ दिवस, हर वर्ष 1 जून को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है माता पिता के प्रति कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त करने का। यह अवसर है माता पिता के प्रेम त्याग और बच्चों के पालन पोषण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इस ओर ध्यान दिलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। जिनकी उंगली थामकर हम चलना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, वो हैं हमारे माता पिता, हमारे जीवन की पहली पाठशाला और पहले गुरु होते हैं। उनके प्यार दुलार और मार्गदर्शन से ही हमारा सुंदर व्यक्तित्व का निर्माण होता है, अच्छे भविष्य का निर्माण होता है। आइए हम अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें, उनके साथ कुछ समय बिताएं, उनका सहारा बने और हमेशा ये एहसास दिलाएं कि वे ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। माता पिता का सम्मान हर रोज किया जाता है, जीवन भर अपना कर्तव्य निभाई जाने वाली हमारी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। चित्रलोक कार्यक्रम में अब हम आपको ये गीत सुनवाते हैं।

तनु वेल्स मनु फिल्म का गीत कृष्णा की आवाज में आप सुन रहे थे। इस गीत को राजशेखर ने लिखा था और कृष्णा ने इस गीत की धुन बनाई थी। चित्रलोक कार्यक्रम में अब गदर 2 फिल्म का ये गाना आपको सुनवा रहे हैं।

उदित नारायण और साथियों की आवाजों में गदर टू फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे हैं थे आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। चित्रलोक कार्यक्रम में एक और छोटा सा ब्रेक।

0: आज विश्व दुग्ध दिवस है। हर वर्ष 1 जून को मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य ये है कि स्वास्थ्य के लिए दूध के महत्व को जानना, डेयरी क्षेत्र के योगदान या कहें कि डेयरी क्षेत्र के समग्र योगदान को जानना। विश्व दुग्ध दिवस वर्ल्ड मिल्क डे सिर्फ पोषण के लिए ही नहीं बल्कि उन लाखों पशुपालकों, डेयरी कर्मियों और वितरण व्यवस्था से जुड़े लोगों के योगदान को भी सम्मान देने की ओर ये दिन याद दिलाता है, ध्यान दिलाता है, जिनके प्रयास से प्रतिदिन शुद्ध दूध हमारे घरों तक पहुंचता है। एक ग्लास दूध में किसान की मेहनत, पशुपालकों का समर्पण और उदारता और त्याग, साथ ही डेयरी व्यवस्था का अथक प्रयास भी इसमें समाहित होता है। विश्व दुग्ध दिवस पर आइए इस अमूल्य योगदान का सम्मान करें और संतुलित आहार और स्वस्थ जीवन का संकल्प लें। और एक संदेश आपको और सुनाते हैं।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमें।
3: तेरा जवाब नहीं
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
0: सुनिधि चौहान और अरिजीत सिंह की आवाजों में हेलीकॉप्टर इला फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं।

मुल्क फिल्म का गीत आप सुन रहे थे सफाकत अली और साथियों की आवाजों में। शकील आजमी ने इस गीत को लिखा था, अनुराग सैकिया का संगीत। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर। आज है वर्ल्ड मिल्क डे।

सुनिधि चौहान और अरिजीत सिंह की आवाजों में हेलीकॉप्टर इला फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। इसे स्वानंद किरकिरे ने लिखा था और अमित त्रिवेदी का संगीत था। इसी गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, सविता सिंह को नमस्कार।

सही पहचाना आपने। आज के फनकार हैं सुमन कल्याणपुर। सुमन कल्याणपुर की ये विशेषता भी है और अभिशाप भी कि उनकी आवाज लता मंगेशकर से मिलती जुलती है। कई बार बड़े बड़े दिग्गज भी धोखा खा जाते हैं सुमन कल्याणपुर और लता मंगेशकर की आवाज में फर्क करने में। झांकती है।

सरगम के अथाह सागर में डूबकर गीतों के सच्चे मोती तलाशने की धुन जिन्हें रही है, वे सुमन कल्याणपुर के गीतों के शौकीन जरूर रहे हैं। सुमन कल्याणपुर की आवाज में एक अल्हड़पन है, शोखी है और चंचलता है, और है देसीपन जो हर श्रोता को अपनी ओर आकृष्ट करती है।

गीत के बोल में चाहे प्यार की गहराई हो या पश्चिमी धुन पर थिरकता शरारती गीत या फिर शास्त्रीय संगीत का लोच हो, हर तरह से खरी उतरती है उनकी आवाज और यही उनके गायन की विशेषता है।

कल्याणपुर के हिंदी फिल्मी गायन का सफर शुरू हुआ फिल्म मंगू से। बोल थे कोई पुकारे धीरे, जिसके संगीतकार थे मोहम्मद शफी। इसके पहले उन्होंने बहुत सारे मराठी गीत गाए थे। फिल्म मंगू से जब सुमन कल्याणपुर ने फिल्मी गीतों के विशाल आंगन में कदम रखा तो छत की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए उन्हें बहुत सारी सीढ़ियां तलाशनी पड़ी, काफी संघर्ष करना पड़ा। लेकिन आज उनकी आवाज को पसंद करने वाले लोगों की संख्या अनगिनत है। अपने

सुमन कल्याणपुर अपने विवाह के पूर्व सुमन हेमाड़ी के नाम से गाती थीं। उनका जन्म 28 जनवरी सन 1937 को बंगाल के ढाका में हुआ था, लेकिन संगीत की विधिवत शिक्षा उन्होंने मुंबई में हासिल की। आइए सुने सुमन कल्याणपुर की गाई इकलौरी, जिसमें माँ की ममता है, दुलार है, स्नेह है और है सूरज की रश्मियों की तरह फैल जाने वाली रोशनी।

सुमन कल्याणपुर के गाए गीतों की ये खासियत है कि उनके गीत हर उम्र के लोग, हर वर्ग के लोगों के जुबां पर गुनगुनाए जाते हैं। प्रेम की गहराई में डूबा मन हो या किसी के विछोह में आकुल मन, किसी का इंतजार हो या किसी से मिलन की घड़ी, हर ऐसे वक्त में सुमन कल्याणपुर के गाए गीत उनका साथ निभाते हैं। हर ऐसे वक्त में उनकी जिंदगी से जुड़ जाते हैं सुमन कल्याणपुर के गाए गीत।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। सुबह के 10 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में सुनते हैं जिले की चिट्ठी। आकाश
1: विशेष कार्यक्रम जिले की चिट्ठी, ये वह चिट्ठी है जिसमें दर्ज होते हैं जिले की धड़कनों के सुर, विकास की आहट, जनजीवन की हलचल और बदलते समय की तस्वीर। आज हम लेकर आए हैं इंदौर जिले की चिट्ठी, जिसे भेजा है हमारे संवाददाता मनीन्द्र कुमार दुबे ने और वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। पिछले एक महीने में जिले में क्या क्या खास हुआ, किन उपलब्धियों ने सुर्खियां बटोरी, किन अभियानों ने लोगों का ध्यान खींचा और प्रशासन से लेकर आमजन तक किन मुद्दों पर सक्रियता दिखाई गई, इन सब का लेखा जोखा हम आपके सामने रखेंगे। साथ ही जानेंगे आने वाले दिनों में जिले के लिए क्या कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बात सबसे पहले इंदौर में 9 से 13 जून तक होने वाले ब्रिक्स कृषि कार्य समूह के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की। इस बड़े आयोजन में 21 देशों के कृषि मंत्री, वैज्ञानिक और नीति विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में कृषि और खाद्य सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। विदेशी मेहमानों के लिए प्रदेश की संस्कृति, कृषि उपलब्धियों और पर्यटन की झलक भी खास तौर पर दिखाई जाएगी। खेती की बात चली है तो किसानों के लिए भी एक उत्साहजनक खबर है। जिले में उन्नत तकनीक अपनाकर बेहतर उत्पादन और आय बढ़ाने वाले किसानों को सम्मानित किया जाएगा। कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन और कृषि अभियांत्रिकी से जुड़े चयनित किसानों को जिला स्तर पर 25,000 और विकासखंड स्तर पर 10,000 रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। युवा शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए जिला रोजगार कार्यालय में बीते दिनों युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 91 युवाओं को प्रतिष्ठित कंपनियों में रोजगार मिला। वहीं आज आयोजित होने वाले रोजगार मेले में 300 से अधिक पदों पर प्रारंभिक चयन की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। रोजगार के साथ साथ युवाओं को सुरक्षा सेवाओं में अवसर दिलाने की दिशा में भी कदम बढ़ाए गए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए शुरू की गई शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना के तहत इंदौर में 200 चयनित विद्यार्थियों को सैन्य बल, पुलिस और होमगार्ड जैसी सेवाओं की भर्ती के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। युवाओं की प्रतिभा को खेलों में निखारने की तैयारी भी शुरू हो गई है। छोटी बेटमा स्थित शासकीय राजा शंकर शाह विशिष्ट बालक क्रीड़ा परिसर में एथलेटिक्स, हैंडबॉल और कुश्ती के लिए 200 सीटों पर चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 15 जून तक चलने वाली इस प्रक्रिया में 11 से 14 वर्ष तक के विद्यार्थियों का चयन

किया जाएगा। अब बात करते हैं शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र की। शासकीय स्वशासी अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय में नए शैक्षणिक सत्र से तीन विषयों क्रिया शरीर, रचना शरीर और शालाक्य तंत्र में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। इससे आयुर्वेद शिक्षा को नई मजबूती मिलेगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें तो टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जिले में अब तक 15,000 से अधिक एक्सरे किए जा चुके हैं। टीबी की रोकथाम के लिए प्रिवेंटिव उपचार में इंदौर जिला पूरे प्रदेश में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। विकास और पर्यावरण संरक्षण को साथ लेकर चलने की एक मिसाल महू तहसील के आशापुरा गांव में देखने को मिल रही है। यहां 60 एकड़ से अधिक क्षेत्र में आधुनिक और विशाल गौशाला विकसित की जा रही है। इस गौशाला में करीब 10,000 गायों के संरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। पर्यावरण संरक्षण ही नहीं बल्कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी इंदौर की चर्चा हो रही है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रदेश के 15 जिलों में 48,000 से अधिक घरों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाए जा चुके हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 28,000 संयंत्र सिर्फ इंदौर महानगर क्षेत्र में ही स्थापित हुए हैं। आध्यात्म और पर्यटन के विकास के क्षेत्र में भी एक बड़ी घोषणा हुई है। भगवान परशुराम की जन्मस्थली जानापाव में 17,41,00,000 रुपये की लागत से श्री परशुराम श्रीकृष्ण लोक विकसित किया जाएगा। यह स्थान आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनेगा। इसके साथ ही गंभीर और अजनार नदियों के पुनर्जीवन की योजना भी तैयार की जाएगी। न्याय व्यवस्था को लोगों के और करीब लाने की दिशा में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन भी सफल रहा। बीते दिनों मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में 107 प्रकरणों का निराकरण किया गया और 47,00,000 रुपये से अधिक के अवार्ड पारित किए गए। वहीं जिला उपभोक्ता आयोग में भी 57 मामलों का निपटारा कर 2,20,00,000 रुपये से अधिक के अवार्ड पारित किए गए। और अंत में बात करते हैं उस संस्था की जो दशकों से देश दुनिया की खबरें आप तक पहुंचाती रही है। आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष और आकाशवाणी इंदौर के 71वें स्थापना दिवस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन बीते दिनों किया गया। देश विदेश के श्रोताओं ने इस लाइव कार्यक्रम में अपनी शुभकामनाएं और यादें साझा की। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ इस गरिमामय समारोह का समापन हुआ। इंदौर जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। सुबह के 10:05 हुए हैं। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। आज के इस कार्यक्रम को लेकर मैं हूं आज आपके साथ वैशाली नागतोड़े। श्रोताओं, सबसे पहले आज हम नमन करते हैं हमारे भारतीय संगीत सिनेमा की एक दिग्गज पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर जी का। आज 31 मई 2026 को 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। 1960 और 1970 के दशक के हिंदी, मराठी और अन्य भाषाओं को संगीत में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। उनकी आवाज़ की मधुरता और स्पष्टता के लिए उन्हें हमेशा हम याद किया जाएगा। उनके कुछ लोकप्रिय गीत आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, नाना करते प्यार और तुमने पुकारा हम चले आए आदि शामिल थे। तो श्रोताओं, उनकी आवाज़, उनके सुरीले योगदान और सदाबहार गीतों को पूरा देश और संगीत जगत हमेशा याद रखेगा। उनको श्रद्धांजलि देते हैं और सुनते हैं एक ये गीत।

0: बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: श्रोताओं, आज है नरगिस दत्ता की जयंती। भारतीय सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री और राजनेता नरगिस दत्ता का जन्म कोलकाता में 1 जून 1929 को हुआ था। उनका मूल नाम फातिमा राशिद था। उनकी माँ जदनबाई एक प्रसिद्ध गायिका और अभिनेत्री थी। उन्होंने महज 14 साल की उम्र में फिल्म तमन्ना से बतौर मुख्य अभिनेत्री के रूप में शुरुआत की। राज कपूर के साथ कई सफल फिल्मों में भी काम किया।

श्रोताओं, हम बात कर रहे थे नरगिस दत्ता की। 1957 की ब्लॉकबस्टर फिल्म मदर इंडिया में राधा की उनकी भूमिका को आज भी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसी फिल्म के सेट पर लगी आग में अभिनेता सुनील दत्त ने उनकी जान बचाई थी, जिसके बाद 1958 में दोनों ने शादी कर ली। शादी से पहले नरगिस ने अपना नाम बदलकर निर्मला दत्त रख लिया।

तीन दशकों तक फैले अपने करियर में नरगिस ने 6 साल की उम्र में तलाश-ए-हक में एक छोटी सी भूमिका से अपने अभिनय करियर की शुरुआत।

की। लेकिन उनके अभिनय करियर की असल शुरुआत फिल्म तमन्ना से हुई थी। उनकी पहली फिल्म, उनको पहली मुख्य भूमिका मिली तकदीर फिल्म से। नरगिस जी सबसे प्रतिष्ठित फिल्मों में से एक अंदाज एक शानदार म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। इस क्लासिकल फिल्म का निर्देशन महबूब खान द्वारा किया गया था और इसमें नरगिस, दिलीप कुमार, राज कपूर ने मुख्य भूमिका निभाई थी। अंदाज फिल्म के गाने बेहद लोकप्रिय हुए थे और आज भी सदाबहार माने जाते हैं। नौशाद के बेहतरीन संगीत और मजरू सुल्तानपुरी के लिखे गीतों को लता मंगेशकर, मुकेश मोहम्मद रफ़ी और शमशाद बेगम जैसे दिग्गज गायकों ने अपनी आवाज़ से इसे सदाबहार बना दिया।

हिंदी सिनेमा के इतिहास की एक मील का पत्थर साबित हुई रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म बरसात, जिसमें दिग्गज अभिनेत्री नरगिस और राज कपूर ने मुख्य भूमिका निभाई थी। राज कपूर द्वारा निर्देशित इस फिल्म की कहानी उनके और नरगिस के बीच गहरे प्रेम को दर्शाती है, जिसे शंकर जयकिशन के सदाबहार संगीत ने अमर बना दिया।

उन्हें मदर इंडिया के लिए फिल्म फेयर और उनकी आखिरी फिल्म रात और दिन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया। उन्होंने कैंसर पीड़ितों के लिए भी काम किया और बाद में राज्यसभा सांसद भी चुनी गई। 3 मई 1981 को कैंसर के कारण इस महान हस्ती ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके सम्मान में नरगिस दत्त मेमोरियल फाउंडेशन की स्थापना की गई। आज उनकी जयंती पर हम उन्हें याद करते हुए उन्हें भावभीनी देते हैं श्रद्धांजलि।

0: निशुल्क कानूनी सहायता टेलीलॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। सुबह के 10:30 हुए हैं। लीजिए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का उमंग।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। साथ ही साथ नए महीने जून की आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे आपके सबके चहेते कार्यक्रम उमंग में। आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: मौसम चाहे जैसा हो, मन में उम्मीद की धूप हमेशा खिली रहनी चाहिए। बहुत खूबसूरत विचार है, आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से धन्यवाद।
3: और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास, कोटकुटिया नायक, पद्मलोचन मोहंती, अभिराम साहू, सत्यजीत नायक और साई प्रसाद नायक जी का।
2: रिंग रोड नर्मदा नगर से सूरज वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा।
3: और ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, निकेश, धर्मेंद्र और ममता बाई वर्मा जी ने लिखा है। बड़ा खूबसूरत लिखा है,
2: प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं जी? आशा करते हैं आप सकुशल होंगे। आज बहुत दिनों बाद आपके उमंग कार्यक्रम में पत्र भेज रहे हैं। काम की कुछ व्यस्तताओं के कारण आपके उमंग कार्यक्रम में पत्र नहीं भेज पा रहे थे, लेकिन हम लोग नियमित रूप से आपका उमंग कार्यक्रम सुन रहे थे। उमंग कार्यक्रम में इन दिनों राग रस बरसे कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है। धन्यवाद इस कार्यक्रम को उमंग कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। आपने संगीत प्रेमियों की खुशी को दोगुना बढ़ा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है जेल रोड कानपुर से फातिमा वली बेलदार, सरफुद्दीन वली बेलदार, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम बेलदार जी का।
2: खेरागढ़ राजलालपुर छत्तीसगढ़ से मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे।
3: और हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोर्डखे, नंदा बोर्डखे, हनुमान बोर्डखे और उत्तम जामदाड़े जी।
2: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों के लिए।
3: और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ है?
2: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों। दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है अंटार्कटिका का शीत मरुस्थल।
3: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
2: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में सकुरा कहते हैं।
3: और

0: हमारा पूछा गया अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न था मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है।
1: ट्यूलिप फूल मूल रूप से कजाकिस्तान का है, यहाँ से ये तुर्की पहुँचा और धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गया।
0: और फिर हमने आपसे पूछा था श्रोताओं, रजनीगंधा फूल रात में ही अधिक खुशबू क्यों देता है।
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। प्रकृति ने रजनीगंधा फूलों को रात्रि परागण या नाइट पॉलिनेशन के लिए बनाया है। रात को इस फूल के अंदर का सुगंधित तेल बहुत अधिक सक्रिय हो जाता है, जिसके कारण रात्रि बेला के कीट पतंगे इस फूल की ओर आकृष्ट होते हैं।
0: हमारा अंतिम प्रश्न था, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं?
1: इसका उत्तर है, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग 100 प्रजातियां पाई जाती हैं।
0: तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का क्या नाम था। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का क्या नाम था।
0: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आज का हमारा पहला कार्यक्रम है श्रोता संवाद। चर्चा का विषय है समावेशी शिक्षा।
0: यह कार्यक्रम उमंग प्रसारण का मासिक संस्करण है, जिसे हम CIET NCERT और शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से की जाने वाली डिजिटल व अन्य पहलों के बारे में जानकारी देते हैं। आज की चर्चा की विषय विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर भारती कौशिक। श्रोता संवाद।
1: उमंग कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि हर महीने हमारा विशेष मासिक रेडियो संस्करण श्रोता संवाद प्रसारित होता है, जिसमें हम जानकारी देते हैं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और CIET NCERT द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही विभिन्न पहलों पर। इस क्रम में आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर भारती कौशिक। आप CIET के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्ष हैं। तो प्रोफेसर कौशिक, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: हमारे श्रोता ये जानने के लिए हमेशा बहुत उत्सुक रहते हैं कि श्रोता संवाद में हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा। तो आज हम किस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं?
2: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो अक्सर आपको और मुझको छूता तो है, हम देखते तो हैं
1: जी,
2: लेकिन कहीं ना कहीं हम झिझक जाते हैं इस पर बातचीत करने में
1: जी।
2: आज हम बातचीत करेंगे समावेशी कक्षाओं की, समावेशी शिक्षा की।
1: क्या बात है। तो मेरा पहला प्रश्न श्रोताओं की ओर से ये है कि समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है? क्या इसे हम समता मूलक शिक्षा भी कह सकते हैं?
2: इसको हम समता मूलक शिक्षा तो शायद नहीं कह पाएंगे। क्यों? क्योंकि समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी को सम दृष्टि से देखना
1: जी,
2: तभी तो वो समावेशी शिक्षा है, सबको साथ लेकर के चलना। लेकिन जहां हम बात करते हैं समता मूलक, मतलब हर एक की विशिष्टता को, हर एक की आवश्यकता को पहचान देना, हर एक की आवश्यकता को समझना और उसके अनुरूप उसकी पूर्ति करना
1: जी।
2: अब ये विद्यालयों में, हमारे कक्षा कक्ष में कैसे हो सकती है, इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं
1: जी।
2: आप ये समझिए कि समावेशी कक्षा के या समावेशी शिक्षा के प्रावधानों में आता है कि सबको समान तरह की पुस्तकें देना, सबको समान तरह का खाना देना मिड डे मील के अंतर्गत, या सबको समान तरह की आप यूनिफॉर्म देते हैं, ठीक है
1: जी।
2: अब अगर कोई विद्यार्थी मेरी कक्षा में ऐसा है जो देख नहीं सकता या जिसको देखने में दिक्कत है, तो क्या होगा? लेकिन मैं तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत काम कर रही हूँ, तो मुझे तो उसको मुद्रित या प्रकाशित या छपी हुई किताबें ही देनी है
1: जी।
2: लेकिन वो विद्यार्थी जो नहीं देख पा रहा, उसका क्या? उसके लिए तो वो किताबें किसी काम की नहीं है। यहाँ पर मुझे क्या करना है? यहाँ मुझे समतामूलक शिक्षा के सिद्धांतों का पालन करते हुए मैं उनके लिए ऐसी किताबें दूं जो या तो वो सुन लें, यानी ध्वनि के रूप में हो किताबें, रिकॉर्डेड हो
1: जी,
2: या मैं उन्हें ऐसी किताबें दूं जो ब्रेल में हो, जिनको वो छू करके पढ़ सकें, या एक तीसरा स्वरूप हो सकता है कि मैं उन्हें डेजी में भी किताबें दूं, जो भी ध्वनि आधारित किताबें होती
1: जी।
2: समतामूलक शिक्षा में हम क्या करते हैं, हम प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकता को ध्यान में रख करके हम तब उसको पूर्ति करते हैं। और समावेशी शिक्षा में हम क्या करते हैं, सबको सम दृष्टि, एक समान दृष्टि से देखते हैं। यानी अगर हम एक को अगर हम मुद्रित किताबें दे रहे हैं तो पूरी कक्षा को हम मुद्रित किताब

0: दे रहे हैं, तो वहाँ व्यक्तिगत आवश्यकताओं का उतना ज्यादा ध्यान हम नहीं दे पाते हैं।
1: जी, आपने बहुत ही विस्तार से हमें बताया कि समावेशी शिक्षा और समता मूलक शिक्षा में क्या अंतर है। आप थोड़ी सी बात करते हैं इसके इतिहास की। प्रोफेसर भारती, हमें अब ये बताएं कि भारत में समावेशी शिक्षा की शुरुआत कब हुई?
0: सबसे पहला जिक्र विकलांग विद्यार्थियों की शिक्षा का आता है हमारे कोठारी कमीशन में, जो 1964 का जो शिक्षा आयोग है, जिसको हम कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं।
1: जी,
0: इस कमीशन में बातचीत तो की गई थी कि हमें दिव्यांगजन विकलांगजनों को हमें शिक्षा देनी है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि इनकी शिक्षा दीक्षा कैसे होगी।
1: जी,
0: क्या इन्हें सामान्य विद्यालयों में, मुख्य धारा विद्यालयों में बिठा करके पढ़ाना है, या इनके लिए अलग से कुछ हमें एक विद्यालय खोलने होंगे। लेकिन हाँ, जिक्र जरूर किया गया था। तो शुरुआत हमने किया कि ठीक है, इनके लिए हम कुछ अलग से विद्यालय बनाते हैं, वहां हम इनको पढ़ाएंगे। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि ये विद्यार्थी भी अंततः हिस्सा तो हमारे ही समाज का बनेंगे। तो एक पहल छोटी सी ये की गई कि इन विद्यार्थियों को विशेष विद्यालयों से निकाल करके कुछ समय के लिए मुख्य धारा विद्यालयों में लाया गया, ताकि दोनों तरह के विद्यालयों के बच्चे आपस में बातचीत कर सकें और घुल मिल सकें और एक दूसरे को अजूबा न समझें। विशेष विद्यालयों में पाठ्यचर्या भी विशेष थी, शिक्षक भी विशेष थे, और बच्चे भी हमारे विशेष आवश्यकता वाले थे। तो जब ये हम मुख्य धारा में इनको कुछ समय के लिए लेके आए, तो ये हमारा एक प्रयोग कुछ आंशिक रूप से सफल हुआ।
1: जी,
0: उसके बाद धीरे धीरे हमने क्या किया, कुछ विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को हमने विद्यालय से पूर्व उनकी पूर्ति करने की कोशिश की, और फिर उन्हें मुख्य धारा विद्यालयों में प्रारंभिक कक्षाओं से समावेश करना उनका शुरू किया। इसमें भी कुछ सफलताएं मिली, कुछ विफलताएं मिली, लेकिन सफलताओं से सीख करके आगे बढ़े, और आज हम एक ऐसी स्थिति में हैं जहां हम कहते हैं कि हर बच्चे को मुख्य धारा विद्यालय में दाखिला दे। इसीलिए हम जीरो रिजेक्शन पॉलिसी अपनाते हैं कि एडमिशन में हमें सभी को दाखिला देना ही है। इसीलिए आज हमारा हर एक विद्यालय समावेशी विद्यालय है।
1: जी प्रोफेसर भारती, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि दिव्यांगजनों को मुख्य धारा में पढ़ाने की बात की है। जैसा कि हम सभी ये जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने देश की शिक्षा के पूरे परिदृश्य को बदल दिया है।
0: बिल्कुल।
1: आज हम विशेष रूप से आपसे ये जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समावेशी शिक्षा के मौलिक सिद्धांत क्या क्या हैं?
0: हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमारे शिक्षा के परिदृश्य को बहुत अच्छी तरह से परिवर्तित किया है।
1: जी,
0: ठीक है। इसने मुख्य धारा की शिक्षा व्यवस्था में तो बहुत परिवर्तन किए ही हैं, साथ ही साथ जो समावेशी शिक्षा की हमारी परिकल्पना है
1: जी,
0: उसमें भी बहुत बदलाव किए हैं। जैसे अभी तक हम समझते थे कि समावेशी शिक्षा का मतलब एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो सिर्फ और सिर्फ दिव्यांगजन या विकलांग शिक्षार्थियों से जुड़ी हुई है, या उन विद्यार्थियों से जुड़ी हुई है जो अलाभान्वित वर्गों या क्षेत्रों से आते हैं।
1: जी,
0: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमारी इस अवधारणा को और व्यापक और विस्तृत स्वरूप दिया है।
1: जी,
0: इसने सामाजिक आर्थिक रूप से अलाभान्वित समूहों की पहचान की है, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। तो इसमें 5 उपसमूह आते हैं।
1: जी,
0: सबसे पहला उपसमूह इसमें लिंग के आधार पर है, जिसमें हम जेंडर आधारित आवश्यकताओं को पहचानते हैं और उनकी पूर्ति विद्यालयों में कैसे की जाए, इस पर सोच विचार करते हैं।
1: जी,
0: दूसरा जो हमारा उपसमूह है वो ऐसा उपसमूह है जो विषम भौगोलिक परिस्थितियों से आता है या वहां से संबंधित रखता है। विषम भौगोलिक परिस्थितियां जैसे पहाड़ी क्षेत्रों से आता है, मरुभूमि से आता है, या ऐसी जगहों से आता है जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है। विद्यार्थियों को अपने विद्यालयों तक पहुंचने में अतिरिक्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
1: जी,
0: तो वहां पर विद्यालय कैसे सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं, ये हमारा दूसरा उपसमूह है।
1: जी,
0: तीसरा उपसमूह हमारा सांस्कृतिक परिवेश को लेकर के है।
1: जी,
0: सांस्कृतिक परिवेश कैसे, इसमें हमारे ऐसे उपसमूह में लोग आते हैं जो जनजातीय क्षेत्रों से हैं, आदिवासी क्षेत्रों से हैं, या अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित हैं।
1: जी,
0: इन उपसमूहों के छात्रों को भी विशेष आवश्यकताएं हैं, उनकी पाठ्यचर्या से संबंधित, उनके दिनों दिन की आवश्यकताओं और रहन सहन से संबंधित, जिनका पाठ्यचर्या से जुड़ाव होना बहुत जरूरी है, तो इन पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक चौथा उपसमूह है जो है हमारा आर्थिक रूप से कमजोर समूह,

0: हमें दोनों ही जगहों पे मिलता है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी मिलता है और शहरी क्षेत्रों में भी मिलता है, तो इस पर भी विशेष रूप से ध्यान देना जरूरी है। पांचवा उपसमूह इसमें आता है जो है विकलांगताओं का या विशेष आवश्यकताओं का, जिनको हम पहले से भी पहचानते हैं। इसमें NEP 2020 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति विकलांग जन अधिकार अधिनियम 2016 को पूर्ण रूप से अपना समर्थन देती है और इस 2016 के अधिनियम में 21 तरह की विकलांगताओं या दिव्यांगताओं को पहचाना जाता है। तो हम इन पूरी 21 तरह की दिव्यांगताओं के सकारात्मक शैक्षिक समावेशन पे हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में।
1: जी,
0: इसके अलावा राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 2020 ने जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है वो है भारतीय सांकेतिक भाषा।
1: जी,
0: पहली बार एक सरकारी दस्तावेज में भारतीय सांकेतिक भाषा को भाषा का एक औपचारिक दर्जा दिया गया और ये भी कहा गया कि जो भी हमारे शिक्षण अधिगम सामग्री है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या राजकीय स्तर पर हो, दोनों ही स्तरों पर यह सामग्री सांकेतिक भाषा में भी उपलब्ध कराई जाए। तो ये बहुत दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने समावेशी शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में हमारी दृष्टि को बहुत व्यापक किया है।
1: जी, आपने अभी सांकेतिक भाषा की बात की तो हमारे श्रोता जरूर ये जानना चाहेंगे कि सांकेतिक भाषा क्या है और समावेशी शिक्षा में इसकी क्या भूमिका है।
0: सांकेतिक भाषा एक ऐसी भाषा जहां आप बोल करके नहीं बातचीत करते हैं, एक ऐसी भाषा जहां आप देख करके हाव भावों से संकेतों से पहचानते हैं। जैसे आपको प्यास लगी है लेकिन आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां बहुत शोर शराबा हो रहा है, आप चाहे जितना मर्जी चिल्ला करके बोले क्या होगा, कोई आपकी बात नहीं समझ पाएगा। लेकिन अगर आपने पानी पीने का इशारा किया
1: जी,
0: तो जो देख रहा है वो समझ जाएगा ना कि भाई आपको पानी पीना है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन ये तो बात हुई एक विशेष स्थिति की।
1: जी,
0: आप सोचिए आपके हमारे बीच में ऐसे लोग भी तो हैं जिनको सुनाई कम देता है
1: जी,
0: या जिनको बिल्कुल ही सुनाई नहीं देता और ये स्थिति शायद उनकी जन्म से है।
1: जी,
0: अच्छा अब ये लोग क्या करेंगे, ऐसा तो नहीं है कि सुनाई नहीं देता तो वो बात नहीं करना चाहते, अपने विचार नहीं रखना चाहते, उनको समझ नहीं आ रहा है, तो उनके लिए जो भाषा है वो है संकेतों की भाषा।
1: जी,
0: अब ये संकेत हर जगह के अलग हो सकते हैं। भारत में अगर सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो है भारतीय सांकेतिक भाषा।
1: जी,
0: अगर आप अमेरिका में जाकर के कुछ सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो अमेरिकन सांकेतिक भाषा हो जाती है।
1: जी,
0: दोनों भाषाओं में अंतर है और ये अंतर उस तरीके से है जिस तरीके से आप अपने हाथों का, अपनी उंगलियों का या अपने हाव भावों का इस्तेमाल करते हैं। तो हर देश की अपनी एक सांकेतिक भाषा है और आपको यहाँ ये जानकर आश्चर्य होगा, जैसे संज्ञा शब्द होते हैं हमारी बोलचाल की भाषा में, मौखिक भाषा में, बिल्कुल उसी तरह से उदाहरण के लिए लेते हैं गणपति का संकेत।
1: जी,
0: गणपति का संकेत मंगलवार को दर्शाता है महाराष्ट्र में।
1: जी,
0: ठीक है, लेकिन मंगलवार को दर्शाएगा हनुमान जी की गदा का संकेत कहां, उत्तरी भारत में।
1: बिल्कुल।
0: तो ये संकेत भी हमारे अलग अलग जगह पे अलग अलग आते हैं।
1: जी,
0: तो इसीलिए भारतीय सांकेतिक भाषा की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी उतनी ही विविधता है जितनी की किसी और मौखिक भाषा में है।
1: जी, ये तो हुई हमारी सांकेतिक भाषा के बारे में जानकारी और समावेशी शिक्षा के बारे में जानकारी। तो अब हमारे श्रोता विशेष रूप से ये जानना चाहेंगे कि समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमारी यानी CIET NCERT द्वारा क्या क्या पहलें की गई हैं।
0: जी, देखो सांकेतिक भाषा में भी हम बहुत काम कर रहे हैं। जैसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अधिगम सामग्री बनेगी, तो हमारी जितनी भी पाठ्य पुस्तकें हैं उनको हम सांकेतिक भाषा के वीडियोज में हम परिवर्तित कर रहे हैं।
1: जी,
0: लेकिन इन वीडियोस में ऑडियो भी है।
1: जी,
0: और इन वीडियोस में सांकेतिक भाषा तो है ही है, साथ के साथ आपकी पाठ्य पुस्तक का पेज भी है।
1: जी,
0: ताकि कोई भी छात्र चाहे उसे सांकेतिक भाषा आती हो या नहीं आती हो, अपने साथी के साथ बैठ करके वो वीडियो देख सके। इसके अलावा CIET NCERT सभी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूप भी बना रही है, जो बहुत सरलता से CIT की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
1: जी,
0: इसके अलावा समावेशी कक्षाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हर रोज दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे तक हमारा एक विशेष लाइव सत्र हर DTH चैनल पर प्रसारित होता है। इस लाइव सत्र में हम क्या करते हैं, इस

0: लाइव सत्र में हम एक कक्षा, एक विषय, एक पाठ्य पुस्तक और एक पाठ लेकर के हम विशेषज्ञों को आमंत्रित करते हैं कि आप आइए, इस पाठ की सहायता से आप ये बताइए कि आप कैसे इस पाठ को समावेशी कक्षाओं में सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए
1: जी
0: आप पढ़ा सकते हैं। और जब आप आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे तो समावेशी कक्षा है, लेकिन सिद्धांत आपको समतामूलक अपनाना है, यानी प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता को आपको ध्यान में रखना है। तो एक हमारी ये जाती है सीरीज
1: जी।
0: इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपने विद्यालयों को किस तरह से अवरोध मुक्त बना सकते हैं
1: जी,
0: उसके लिए हमारे पास है प्रिया सुगम्यता योद्धा। अब ये प्रिया सुगम्यता योद्धा क्या है, ये एक छोटी सी कॉमिक बुक है जो बहुत सरलता से समझाती है कि सुगम्यता का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि आप सीढ़ियां हटा करके रैंप बना लें
1: जी।
0: सुगम्यता का मतलब यह भी है कि आपकी जो कक्षा है उसका दरवाजा थोड़ा सा बड़ा हो
1: जी,
0: आपका जो सभागार है उसके मंच तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों के साथ रैंप हो, व्हीलचेयर आसानी से पहुंच जाए
1: जी।
0: आपके विद्यालय में कौन सी कक्षा कहाँ है, कौन सी प्रयोगशाला कहाँ है, उसका एक मानचित्र भी कहीं उपलब्ध हो
1: जी।
0: आपकी विद्यालय में टेक्टाइल पाथ हो। टेक्टाइल पाथ क्या, आपने मेट्रो में सफर तो किया ही होगा
1: जी जी।
0: जब आप मेट्रो स्टेशन पर होते हैं तो आपने देखा होगा वो पीली टाइलें।
1: बिल्कुल।
0: पीली टाइलें कैसी हैं, उनकी विशेषता यह है कि आप अपने जूते पहने हुए भी उनको महसूस कर सकते हैं
1: जी,
0: उनके उभारों को महसूस कर सकते हैं, मतलब वो स्पर्शनीय टाइल हैं
1: जी।
0: ये स्पर्शनीय टाइल बताती हैं कि कहाँ रास्ता है, कहाँ इकट्ठा होना है हमें
1: जी।
0: तो उस तरह की टाइलें हमारे विद्यालयों की संरचना को भी बहुत सुगम्य बनाती हैं
1: जी।
0: इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण पहल हमारी CIT NCERT की है, वो है दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 में पहचानी गई सभी 21 तरह की दिव्यांगताओं को विद्यालयी स्तर पर पहचानने के लिए एक जांच सूची बनाना, जिसको हम कहते हैं प्रशस्त। प्रशस्त हिंदुस्तान की पहली स्टैटिस्टिकली स्टैंडर्डाइज्ड मानकीकृत जांच सूची है जो 21 तरह की सभी दिव्यांगताओं को शिक्षकों, विशेष शिक्षकों की मदद से पहचानती है। और इसके लिए शिक्षकों का दिव्यांगताओं के बारे में विशेषज्ञ होना भी जरूरी नहीं है
1: जी।
0: तो ये भी एक हमारी पहल है
1: जी। प्रोफेसर भारती, अभी आपने ये जानकारी दी कि NCERT की बुक्स ऑडियो बुक्स के रूप में उपलब्ध हैं, तो ये किताबें हमें कहाँ से मिल सकती हैं?
0: ये किताबें आपको बहुत सरलता से CIET के वेब पेज से मिल सकती हैं। आप CIET के वेब पेज पे जाइए, वहां पे ऑडियो बुक्स लिखिए तो आपको वो मिल जाएंगी
1: जी।
0: और एक और सरल उपाय है
1: जी,
0: आजकल तो गूगल हम सब की मदद के लिए है ही है, गूगल पर जाइए, लिखिए ऑडियो बुक CIET NCERT, आपको सीधा वहां उसी पेज पे ले जाएगा
1: जी।
0: और आप वहां से ले सकते हैं
1: जी।
0: एक चीज और भी, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये किताबों के लिए आपको कुछ शुल्क देना पड़ेगा, तो ये बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध है और CIT वेब पेज के साथ साथ आपको ये दीक्षा पर भी आराम से मिल सकती हैं
1: जी।
0: और यह किताबें आपको NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी आपको मिल जाएंगी। तो सरलता से आप हमारी ऑडियो बुक्स को CIT की वेबसाइट से, NCERT ऑफिशियल YouTube से और साथ ही साथ दीक्षा से बिल्कुल निःशुल्क, बिना किसी शुल्क के प्राप्त कर सकते हैं
1: जी। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब मेरा अगला प्रश्न ये है कि समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया में आदिवासी समूहों और समाज के अन्य पिछड़े समूहों को भी शामिल करने की दिशा में NCERT की क्या पहल है?
0: बिल्कुल, आदिवासी जाति या अन्य पिछड़े समूहों को शिक्षा से जोड़ने के लिए NCERT की पहलों में सबसे मुख्य जो है वो यह है कि हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं
1: जी,
0: अगर आप ध्यान से देखें तो वो पाठ्य पुस्तकें पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं
1: जी।
0: उनकी कहानियां, उनके पाठों की विषय वस्तु जनजाति समूहों, हमारे आदिवासी समूहों और अन्य पिछड़े वर्गों के परिवेश को भी दर्शाती हैं
1: जी,
0: जिससे ये पाठ्य पुस्तकें हर बच्चे को अपनी सी लगती हैं, उससे उनमें कोई अलगाव की भावना विकसित नहीं होती
1: जी।
0: तो सबसे बड़ी बात तो यही है। और जब आप पाठ्य पुस्तकों से जुड़ते हैं तो फिर आप अपने विद्यालयों से भी जुड़ते हैं
1: जी।
0: ये पहल हमारी यहाँ से शुरू होती है, लेकिन

0: अंत यहाँ पर नहीं है।
1: जी बिल्कुल। तो अब आज का अंतिम प्रश्न, ये भी प्रश्न मेरा दिव्यांगों से ही जुड़ा हुआ है। मेरा प्रश्न है, दिव्यांगों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या कुछ विशेष प्रयास किए जा रहे हैं?
0: दिव्यांगों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए, जैसा हमने बीच में भी बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने तो बहुत सारे प्रावधानों की बात की है। उसके दो प्रावधानों पर हमने चर्चा की कि सामाजिक आर्थिक रूप से अलाभान्वित समूह कौन से हैं, उसमें कौन से बच्चे आते हैं, और भारतीय सांकेतिक भाषा की। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है कि प्रत्येक बच्चे की भागीदारी और उसको अपनापन या जुड़ाव महसूस हो, इस पर बहुत ज्यादा काम करना जरूरी है। दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये भी कहती है कि व्यक्तिगत सहयोग और समर्थन दिया जाए प्रत्येक बच्चे को, तभी हम समतामूलक शिक्षा की बात करते हैं, समावेशी कक्षाओं या शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत। तीसरी चीज, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि आपको तकनीक और सहायक उपकरणों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। इसका अर्थ यह भी है, बहुत सरल से शब्दों में, कि आप दीक्षा प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए, आप ध्वनि पुस्तकों का इस्तेमाल कीजिए। साथ ही साथ अगर कोई बच्चा आकर के शिक्षक को कहता है कि जी मुझे आज की कक्षा रिकॉर्ड करनी है क्योंकि मैं सही से लिख नहीं पाता हूँ या समझ नहीं पाता हूँ या ज्यादा देर तक याद नहीं रख पाता हूँ, तो शिक्षकों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह भी समावेशी कक्षा प्रणाली का ही एक भाग है और सहायक उपकरणों का प्रयोग है। एक और चीज भी है, इसी कड़ी में जुड़ता है, शिक्षकों का संवेदीकरण और उनकी तैयारी। मतलब शिक्षकों को आपको सेंसिटाइज करना भी जरूरी है विशेष आवश्यकताओं के प्रति, ताकि वो अपनी कक्षाओं को समतामूलक और समावेशी कक्षाओं में परिवर्तित कर सके। यह काम लेकिन सिर्फ और सिर्फ शिक्षा, शिक्षक और विद्यालय नहीं कर पाएगा, इस काम के लिए आपको परिवार और समुदाय का सहयोग भी लेना होगा। जब परिवार और समुदाय शिक्षा व्यवस्था प्रणाली से जुड़ते हैं, तभी तो विद्यार्थियों का समग्र विकास हो पाएगा। तो बहुत सारी चीजें हम एक साथ शुरू कर रहे हैं।
1: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर भारती इस उपयोगी जानकारी के लिए। इस आशा के साथ कि देश की शिक्षा व्यवस्था में समावेशी शिक्षा का भविष्य दिन प्रतिदिन उज्ज्वल होता जाएगा, हम आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। आप हमारे श्रोताओं को कोई विशेष संदेश देना चाहेंगी?
0: मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आप विशेष आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील रहिए, ये आपके और हमारे आसपास ही हैं। कई बार हम इन्हें देख करके भी अनदेखा कर देते हैं, तो ऐसा ना करें। याद रखिए, बूंद बूंद से ही सागर भरता है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अभी आपने सुना कार्यक्रम श्रोता संवाद। हमें इस कार्यक्रम पर आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा।

0: तो हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है, इसलिए मुझे यानी अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। सुबह के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में सुनते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

रंग तरंग कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है।

फिल्म सावी का ये गाना आप सुन रहे थे। जुबिन नौटियाल और श्रेया घोषाल की आवाजों में रश्मि विराग के बोल थे और जावेद मोहसिन का संगीत था। और अब सुनवाते हैं मिताली सिंह का गाया हुआ ये गाना माधोलाल की वॉकिंग फिल्म से। सानिया असलम के बोल हैं और नायाब राजा का संगीत।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: रंग तरंग कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं डॉक्टर बशीर बद्र का कलाम राजकुमार रिजवी की आवाज में। बेनी सतमकर का संगीत है।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

मिताली सिंह की आवाज़ में आप सुन रहे थे कतील राजस्थानी का कलाम, और अब आपको सुनवा रहे हैं ये गज़ल राजकुमार रिज़वी की आवाज़ में।

0: राजकुमार रिजवी की आवाज में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर बशीर बद्र का कलाम।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों लोग मुहब्बत करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आइए अब आपको सुनवाते हैं श्रेया घोषाल और जावेद अली का गाया हुआ ये गाना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हो रही है। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए ये चर्चा हो रही है। म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर बातचीत की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति का काफी व्यस्त कार्यक्रम है।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने मंत्रिपरिषद के 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह का आयोजन कोलकाता के लोक भवन में हुआ। समारोह में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभागों का आवंटन बाद में घोषित किए जाने की संभावना है। सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन आज से 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। इस महीने की 18 तारीख को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के व्यवसायिक LPG सिलेंडर की कीमतों में 4 प्रमुख शहरों में 42 रुपए से लेकर 53 रुपए 50 पैसे तक की वृद्धि की गई है। घरेलू उपयोग में आने वाली गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने JEE एडवांस्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 56,880 उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। इनमें से 10,107 छात्राएं हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। पिछले 6 वर्षों में इस योजना से लाखों रेहड़ी पटरी वालों को आसान ऋण मिला है। इसके माध्यम से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण वितरित किए गए। शहरों और कस्बों में इस पहल के माध्यम से 75,00,000 से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। योजना के अंतर्गत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण प्रदान किए जा चुके हैं। अफ्रीकी संघ ने इबोला से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आपातकालीन निदान, उपचार और चिकित्सा

0: सामग्री का स्वागत किया है। संघ की स्वास्थ्य एजेंसी अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि ये सामान युगांडा में पूर्वी क्षेत्रीय समन्वय केंद्र के माध्यम से भेजा गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज कोई बदलाव दर्ज नहीं किया गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 41 अंक बढ़कर 74,816 पर था, जबकि निफ्टी में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अब से थोड़ी देर पहले ये 23,551 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। यादों की महफिल, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

यादों के महफिल कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं गायिका, मशहूर गायिका सुमन कल्याणपुर को। सुनते हैं आधी रात के बाद फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर के स्वरों में। प्रेम धवन की रचना को संगीत से संवारा है चित्रगुप्त ने।

दिलाया मैं बचा के पंजाब से, कितना प्यार देखो मुझको जना।

0: आंधी और तूफान, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। फारूक कैसर के बोल थे और रॉबिन बैनर्जी का संगीत था। और अब ये संदेश और उसके बाद एक और गीत।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा,

0: मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा। सखी सहेली?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखिया ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे।
2: सखी सहेली।
3: यादों के महफिल प्रोग्राम में अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आपस की बात का गाना। सुमन कल्याणपुर के स्वर में अनजान के बोलों को संगीत से सवारा है अनु मलिक ने।
4: कहिए, क्या सेवा कर सकता हूँ?
5: सेवा के बारे में बाद में सोचेंगे, फिलहाल मुझे एक बहुत स्पेशल किस्म का बुके चाहिए।
4: स्पेशल बुके? लड़के के लिए चाहिए या लड़की के लिए?
5: इससे आपको मतलब?
4: जी मुझसे तो नहीं, लेकिन फूलों का फूलों से मतलब है। आई मीन हर फूल हर जगह नहीं भेजा जा सकता।
5: जी
4: जी हाँ, रंग और खुशबू का अपना एक मिजाज होता है, उसका एक करेक्टर होता है। फूलों में भी सनाना और मर्दाना फूल हुआ करते हैं। अब देखिए ना, मर्दों को सनाना और औरतों को मर्दाना फूल भेज जाते।
5: समझ गए, ये बुके एक लड़के के लिए है।
4: ओह दैट्स फाइन। अच्छा ये बताइए कि वो लड़का आपको क्या लगता है? देखते बुरा मत मानिए, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि अगर वो भाई है तो फूल अलग होंगे और वो फ्रेंड है तो फूल दूसरे होंगे। कहिए क्या सेवा कर सकता हूँ?
5: सेवा के बारे में बात।

0: अनजान का लिखा और अनु मलिक का संगीतबद्ध किया हुआ फिल्म आपस की बात का ये गाना आपने सुना, आवाज सुमन कल्याणपुर की थी।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: यह फिल्म अली बाबा और 40 चोर का गाना मुकेश और सुमन कल्याणपुर का गाया हुआ।

अंदाज फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी, सुमन कल्याणपुर, सुषमा श्रेष्ठ और प्रतिभा का गाया हुआ। हसरत जयपुरी का लिखा ये गीत था, जिसे संगीत से सवारा था शंकर जयकिशन ने। और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म चालाक का ये गाना सुमन कल्याणपुर की आवाज में। बोल हसरत जयपुरी के हैं और संगीत है गणेश का।

फिल्म अनजाना का ये गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में, आनंद बख्शी के बोल थे। और आइए अब आपको सुनवाते हैं हसरत जयपुरी का लिखा हुआ गीत। मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ें हैं, फिल्म का नाम है ब्रह्मचारी।

देखा देख रहा था पपीहा पपीहा देखो देख रहा था पपीहा पपीहा जाके सबसे कहेगा पपीहा पपीहा भला चुप क्यों रहेगा पपीहा।

0: पपीहा पपीहा जाके सबसे कहेगा पपीहा पपीहा भला चुप क्यों रहेगा पपीहा पपीहा देखो देख।
1: सुमन कल्याणपुर और महेंद्र कपूर का गाया हुआ ये गाना आपने सुना फिल्म फरियाद से, बोल केदार शर्मा के थे और संगीत था स्नेहल भाटकर का। और अब आपको सुनवा रहे हैं अप्रैल फूल फिल्म का ये गाना, मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ें हैं। हसरत जयपुरी के लिखे गीत को संगीत से सवारा है शंकर जयकिशन ने।

अब आपको सुनवा रहे हैं मेरी सूरत तेरी आंखें, फिल्म का गाना सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाजों में, शैलेंद्र की शब्द रचना है और संगीत है सचिन देव परमन का।

यादों के महफिल कार्यक्रम के अंत में सुनवा रहे हैं नूर महल फिल्म का गाना सुमन कल्याणपुर की आवाज में। बोल सबा अफगानी के हैं और संगीत है जानी बाबू कव्वाल का।

सुरीला सफर कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम की बात और इस कार्यक्रम के गीत होते हैं बहुत खास, और आज भी कुछ ऐसी ही बात है, ऐसा ही कार्यक्रम है। तो चलिए ना एक सुरीले सफर पर हमारे साथ। इस सुरीले सफर में आज की जो इबारत है वो हम बता देते हैं, खासतौर से उन श्रोताओं के लिए जिन्होंने अभी नहीं देखा है फेसबुक पर इस इबारत को। इबारत कुछ इस तरह से है, उनका प्यार नहीं बढ़ता चाहे दुनिया एक बटा दो हो जाए। वो सिखाते हैं गगन में उड़ते मस्त पंछी की तरह जीना, रोते रोते हंसना, दिल की गिरह खोल कर बाहर से अंदर तक दुनिया को समझना। उनके होठों पर बड़ा नाम करेगा या राज करेगी जैसी दुआएं रहती हैं। मुड़ के ना देखो या चुनरी संभालो जैसी उनकी हिदायतें जिंदगी भर साथ रहती हैं, याद रहती हैं। याद आती हैं उनकी सुनाई हंसों की कहानी, और गुजरते जाते हैं दिन महीने साल, हम सीख जाते हैं साथी का साथ देना। खुश रंग हिना की खुशबू लेकर डोलती पवनिया से दिल का संदेश कहना, उनका हाथ लगते ही बिगड़ता काम बन गया है। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है? वैसे आखिरी लाइन तो एक हिंट थी आपको ये जानने के लिए कि देखिए आज आपने इस कार्यक्रम की क्या बातें होने वाली हैं उन्हें समझा है या नहीं, या ये इबारत की सोर इशारा कर रही है। और बेहद खुशी की बात है कि हमारे सभी श्रोताओं ने जल्दी से जल्दी इस थीम को पहचान लिया। हाँ, आज विश्व अभिभावक दिवस है और इसीलिए बातें हो रही हैं उन अभिभावकों की, माता पिता की, जो हमारी सबसे बड़ी ताकत होते हैं। ऐसा हमारे एक साथी कह रही हैं, सच कहूँ तो माँ पापा का प्यार ऐसा खजाना है जिसकी कीमत कभी नहीं लगाई जाती। जब पूरी दुनिया साथ छोड़ दे तब भी माँ पापा का प्यार हमारे साथ खड़ा रहता है। उनकी दुआओं में इतनी ताकत होती है कि जीवन की बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आसान लगने लगती है। उनके जैसा चाहने वाला इस दुनिया में कोई नहीं होता। माँ पापा का प्यार शब्दों में नहीं बल्कि उनके हर चिंता, हर दुआ और हर त्याग में दिखाई देता है। क्या बात है। इन्होंने ये भी लिखा है कि आज के कई गाने हम समझ गए हैं और वो गीत हम विविध भारती पर सुनते भी रहते हैं, पर बताएंगे नहीं। जो गीत सही होगा उस समय बता देंगे, सच ही कहेंगे, आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप हमारी प्यारी सी उद्घोषिका के साथ एक सखी भी हैं। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अनमोल दोस्ती होती है ये, जब इस तरह से हम बात शुरू करते हैं और हम जो कहते हैं वो आप झट से समझ लेते हैं। हमारे साथियों ने बताया है कि वो तमाम गाने बताए हैं जिन पर आज की ये इबारत रची गई है, और कुछ साथियों ने ये भी कहा है कि

सारे गाने तो इबारत में ही छुपे हैं, और एक एक गाना उनको समझ में आ गया है। क्या बात है। तो भाई ये गाना आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आज आपकी पसंद के सारे गाने आ रहे हैं। और एक और श्रोता ने लिखा है कि आज गद्यांश को बहुत ही सुंदर भावों से सजाया है, और शब्दों के चित्रण में माता पिता के ममत्व की सुमधुर खुशबू को पसारा है। माता पिता का प्यार इस दुनिया का सबसे निस्वार्थ, पवित्र और अनमोल एहसास है। ये वो पूंजी है जो हमें जीवन के हर कदम पर हिम्मत, सुरक्षा और सही संस्कार देती है। प्यार, ममता और अपनत्व का पूरा संसार आज रच दिया है। दो पंक्तियां साझा करूंगा, तुम्हारा जिक्र भी कितना अजीब है मेरे चेहरे पर, तुम्हारा जिक्र भी कितना अजीब है मेरे चेहरे पर, आते ही लबों पर मुस्कान और आंखों में नमी छा जाती है। वाह क्या बात। एक और श्रोता कह रही है कि कहीं पढ़ा था बच्चे को मां 9 महीने तक गर्भ में रखती है, अपनी बाहों में 3 साल और अपने हृदय में तब तक जब तक कि खुद उसकी मृत्यु ना हो जाए। पिता के बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते क्योंकि बचपन से पिता से एक अव्यक्त दूरी अपने आप बन जाती है, मगर पिता का हृदय बच्चे के लिए एक पाठशाला की तरह है। बच्चा समुद्र की गहराई में ना डूबने पाए, इसके लिए पिता तमाम जतन जीवन भर करते रहते हैं, और उनकी छवि एक कड़क पिता के रूप में बच्चों के हृदय में दर्ज हो जाती है। मगर पिता के सीने में भी एक नाजुक दिल धड़कता है। मंगल नसीम की लिखी कुछ पंक्तियां यहाँ साझा कर रही हूँ। क्या सीरत क्या सूरत थी, माँ ममता की मूरत थी, पांव छुए और काम हुए, अम्मा एक मुहूर्त थी। बहुत सुंदर। एक और संदेश है कि आज की भारत में माता पिता के प्यार की खुशबू महक रही है। वात्सल्य और सुसंस्कारों का संतुलित जीवन रस लेकर उनके बच्चे खुशी से फूले फले, ऐसी उनकी मनोकामना होती है। निस्वार्थ भाव से वो अपनी संतान को आधार और सुरक्षितता देते रहते हैं। उनके प्रेम की गहराई कभी मापी नहीं जाती। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, और इन्होंने बहुत सारे गाने लिखे हैं, और मुझे लग रहा है कि आज इनकी पसंद बिल्कुल हमसे ही मिलने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता कह रहे हैं कि आज वैश्विक अभिभावक दिवस पर ये इबारत माता पिता और अभिभावकों के निस्वार्थ प्रेम, त्याग और मार्गदर्शन को सुंदरता से व्यक्त करती है। उनका प्यार कभी बढ़ता नहीं बल्कि हर परिस्थिति में संतान के साथ खड़ा रहता है। वे हमें जीवन की कठिनाइयों में मुस्कुराना और सही राह पर चलना सिखाते हैं। उनकी दुआएं, सीख और हिदायतें उम्र भर हमारा संबल बनी रहती हैं। उनके स्नेहिल स्पर्श में ऐसा विश्वास होता है कि बिगड़े काम भी बन जाते हैं। अभिभावक हमारे जीवन की वो अनमोल छाया है जिनकी याद, सीख और प्रेम हर दिन हमारा मार्ग रोशन करते हैं। बहुत सुंदर लिखा आपने। और अब हम सुनवा रहे हैं ये गाना, सुनिए और बताइए फिल्म का नाम, और हाँ आवाजें किनकी हैं।

बिल्कुल सही जवाब आ गया। फिल्म कालीचरण का गाना अनुराधा पौडवाल, कंचन और साथियों की आवाजें, और ये भी बता दिया हमारे श्रोताओं ने, रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा का नाम भी लिया है, प्रेमनाथ जी का नाम भी लिया है। और एक श्रोता कह रहे हैं कि त्याग और समर्पण की सराहना, माता पिता अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए अपनी खुशियों का त्याग करते हैं, ये दिन उनके इसी निस्वार्थ भाव को मान्यता देने के लिए है। प्रथम गुरु माता पिता बच्चे के पहले शिक्षक होते हैं, वे ही बच्चे को संस्कार और जीवन जीने के सही मूल्य सिखाते हैं। बिल्कुल सही बात है। और हमारे एक और श्रोता कह रहे हैं, काफ़ी बड़ा सा लंबा सा मैसेज है, हम छोटा करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। अभिभावक हमारे जीवन की वो अमूल्य छाया हैं जिनके स्नेह, त्याग और आशीर्वाद से हमारा जीवन संवरता है। उनका प्यार कभी नहीं बटता, उनकी दुआएं हमारी सबसे बड़ी पूंजी होती हैं। उनका स्नेह किसी नदी की तरह होता है जो बिना किसी भेदभाव के निरंतर बहता रहता है। उनकी बातें, हिदायतें और स्नेह समय के साथ और भी अनमोल लगने लगते हैं। संसार में यदि निस्वार्थ प्रेम का सबसे सुंदर रूप है तो वो माता पिता का प्रेम है। और आगे लिखते हैं कि आज वैश्विक अभिभावक दिवस पर ये इबारत माता पिता और अभिभावकों के निस्वार्थ प्रेम, त्याग और मार्गदर्शन को सुंदरता से व्यक्त करती है। उनका प्यार कभी नहीं बटता। वाकई एक संदेश है, आज का सुरीला सफर शुरू करने से पहले दो घटनाओं का जिक्र करना है। महान ज्येष्ठ गायिका सुमन कल्याणपुर का देहांत, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, होम शांति। महानायक शोमैन राज कपूर का आज स्मृति दिन है। उस आवारा छलिया अनाड़ी दीवाना कलाकार को अभिवादन। इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए आज का सुरीला सफर पूरा करना है। इनके लिए हमारा प्यार कम नहीं होगा, बटेगा नहीं। और फिर आगे इन्होंने गाने लिखे हैं, लेकिन हम बता दें कि आज जो जन्म तिथि है, आज है अभिनेत्री नरगिस की, और हम उन्हें याद भी करेंगे। सुमन कल्याणपुर जी की आवाज़ में आपने यादों की महफिल कार्यक्रम में कई गाने सुने, और सदाबहार नगमे भी आप सुनेंगे। आज का आज के फनकार भी आपने सुना था सुबह 9:30 पर, जो आधारित था सुमन कल्याणपुर पर। और अब कार्यक्रम का अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं। ये गाना सुनिए और बताइए कि जो नायक है उनके हाथ में क्या है, ये आपको बताना है। और एक सवाल और है, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने माता पिता के प्यार की बात की है। भाई कभी डांट भी तो पड़ी होगी या कभी अच्छी तरह से धुलाई भी हुई होगी, अगर याद हो, जिसे जिसके बाद आपने अपनी वो बात छोड़ दी जिसके लिए धुलाई या पिटाई हुई थी, तो वो भी हमें बताएं।

बहुत से कयामत तक फिल्म का ये गाना उदित नारायण की आवाज में, और हमारे श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने तुरंत बताया कि फिल्म में आमिर खान इलेक्ट्रिक गिटार लिए हुए हैं। बिल्कुल सही जवाब, और इस सही जवाब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही बहुत सारे प्यारे प्यारे संदेश भी हैं। एक श्रोता ने बताया है कि मेरी धुलाई 8वीं तक बहुत हुई है, खासकर तब जब गणित के सवाल नहीं बनते थे, पर जब 9वीं कक्षा में आई तो पापा ने एक दिन मेरे दोनों भाइयों और माँ को खास तौर पर बोला था, अब इस पर कोई भी हाथ नहीं उठाएगा। हाँ, बहुत अच्छा लगता ना जब ऐसे कहा जाता है, लगता सच में हम बड़े हो गए, है ना। एक श्रोता कह रहे हैं, माता पिता ही तो हर एक जीवन के मूल में हुआ करते हैं, और वे अपने वैश्विक परिवार को वट वृक्ष की तरह न केवल पालते पोसते हैं, उनके पालन पोषण से अभिषिक्त हृदय ही तो भली भांति ही नहीं अपितु सुरहृद के साथ गाया करते हैं कि धरती मेरी, माता पिता आसमान, मुझको तो अपना सा लागे सारा जहान। वह अपने गीत की पंक्ति जो है बड़ी सुंदरता से पिरो दी। हमारे एक और श्रोता कह रहे हैं कि भाई चाचा चाची भाई भाभी भी तो हो

सकते हैं अभिभावक। बिल्कुल सही, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही कहने वाली थी कि बहुत बार बड़े भाई या बड़ी बहन बिल्कुल अभिभावक बनकर पालते पोसते हैं और बहुत सारी बातें उनसे साझा करते हैं और माता पिता से ज़्यादा करीब उनके हो जाते हैं। तो अगर कुछ ऐसा हो तो उनके बारे में भी बताइए, और साथ ही ये भी बताइए कि जो हमने पहले पूछा था ना कि किस बात के लिए धुलाई हुई थी, एक श्रोता ने बताया, अगर आपको याद आ रहा हो तो ज़रूर बताइए, क्योंकि मम्मी पापा की तो

श्रोता का कह रहे हैं कि जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, मिल गए विविध भारती पर, तुम तो सहारा मिला, आ गए एक नए रास्ते पर कदम, जब सुरीला सफर का नजारा देखने मिला, तब से पंछी बनू उड़ता फिरूं विविध भारती के मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूं प्रसारण तरंगों पर, दिल की गिरह खोलकर चुप ना बैठूंगा मैं, क्योंकि यहाँ कोई नहीं है अजनबी, मुड़ मुड़ के ना देखो मुझे, तुम मेरे पास आओ, VBS के साथ साथ गुजर जाए हर दिन, दिन हर पल गिन गिन साथिया साथ निभाना, साथी मेरे विविध भारती के राह में छोड़ ना जाना। बहुत सुंदर। आज की इबारत यही इंगित कर रही है कि जिंदगी का सब कुछ सीखने व सिखाने वाले हमारे अभिभावक हमारे माता पिता होते हैं। बेहद खूबसूरत इबारत है। आज विश्व अभिभावक दिवस पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे जीवन के सभी प्रियजनों को माता पिता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। माता पिता एक बेहतर कल के निर्माता है। इस दुनिया का भविष्य उनके द्वारा प्रतिदिन हर पल निभाए जाने वाले कर्तव्यों पर बहुत हद तक निर्भर करता है। हम सभी पर अपने माता पिता की शुभकामनाएं आशीर्वाद सदैव बना रहे। पर अब एक गाना गाना सुनिए, बताइए फिल्म का नाम क्या है और ये कौन सी अभिनेत्री गा रही हैं।

0: 2 जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: तो भाई, माँ बाप की, माता पिता की जो डांट होती है वो भी बड़ी मीठी होती है, और उस मीठी डांट को याद करते करते और ये संदेश लिखते हुए जरूर हमारे जो साथी हैं, श्रोता हैं, वो मुस्कुरा रहे होंगे। लिखते हैं, हम 6 भाई 3 बहनों का लंबा परिवार है, मैं 7वीं नंबर पर हूँ, अतः बचपन में डांट मार आम बात थी, चाहे बड़े भाई से हो या माँ से। हाँ, पिताजी ने कभी नहीं मारा। क्या बात है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि बात बचपन की है, पिताजी ने गणित में भाग के कुछ सवाल स्लेट पट्टी पर लिखकर हल करने को दिए। उस समय गणित कमजोर था, 2 झपटे ऐसे पड़े कि सारे सवाल मैंने हल कर दिए। तब से लेकर आज तक कभी भी गणित में फेल नहीं हुए। वाह, क्या बात है। एक और श्रोता बता रही है कि बचपन में माँ की साड़ी पहन के खूब खेल कूद कर गंदी करके रख दी, और जब माँ ने 3-4 तमाचे लगाए तो साड़ी पहनने का सारा भूत उतर गया। ओहो। एक और श्रोता ने बताया है, माँ तो खैर बहुत जल्दी चली गई थी, हम भाई बहनों को तो हमारे पापा ने ही बड़ा किया है और उन्होंने कभी भी हमें नहीं डांटा। आज भी वो हम भाई बहनों के साथ ही सबसे ज्यादा खुश रहते हैं, उनकी जरा भी तबीयत खराब होती है तो हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। सच ऐसा ही होता है। एक और श्रोता ने बताया है कि शैतानियां तो बहुत होती थी, पर इन शैतानियों का सरताज भैया रहता था, बेचारा भैया को ही पड़ जाता था। माँ कभी किसी को नहीं मारती थी, माँ इमोशनल ब्लैकमेल करती थी, उसके उस इमोशनल ब्लैकमेल के डर के मारे हम अपनी गलतियां स्वीकार कर लेते थे। बोलती थी कि अगर तुमने झूठ बोला तो मेरे मुँह से खून निकल आएगा। पता नहीं कैसे माँ समझ जाती थी कि हम झूठ बोल रहे हैं, और वो मुंह में कुछ लाल रंग का चीज डालकर दिखा देती थी कि मेरे मुंह से लाल खून जैसा कुछ है, और हम भाई बहन डर के मारे उसे पकड़ के रोने लगते थे और अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेते थे। पिताजी गुस्सैल थे पर हम लड़कियों को कभी नहीं मारते थे। इसी जून में 2 साल पहले माँ भी चली गई। इन सब बातों को याद करके मन थोड़ा भावुक भी हो रहा है। बिल्कुल हो जाता है। एक और साथी बता रहे हैं कि हम लोग अपने पिताजी से बहुत डरते थे, उनका रौब घर में था, हमारी बुआ चाचा भी उनसे डरते थे, डांटने पर कभी भी उलटकर जवाब नहीं देते थे, माँ से हर तरह से बात कर लेते थे। हम लोगों की बहुत सी गलतियों के कारण हमारी माँ भी डांट खा जाती थी। अब माता पिता कोई नहीं है, अब कोई डांटने वाला नहीं है। सच ये बात बहुत कसकती है। एक श्रोता ने कहा है कि इबारत भावनापूर्ण पारिवारिक रिश्तों को चित्रित करती है और हमें बचपन के गलियारों की सैर कराती है। सही है, माता पिता और पारिवारिक संरक्षण ही शैशव काल से उत्तरार्ध तक बौद्धिक शारीरिक नैतिक विकास में सहायक होता है। पुराने काल के संयुक्त परिवार बहुमुखी विकास का मुख्य कारक होता था, जहां चाचा चाची ताऊ ताई बुआ सभी के सानिध्य में बचपन गुजरता था। अब एकाकी परिवार का चलन और 1 या 2 बच्चों में सीमित परिवार रह गया है। भविष्य में मौसा मौसी बुआ शब्द शब्दकोश से लुप्त हो जाए तो आश्चर्य नहीं। बहुत भावुक विषय पर इबारत है। हाँ है, तो बहुत दिल को छूने वाली बात। तो चलिए अब ये गाना सुनते हैं। बताइए कि आवाज किनकी है और संगीतकार कौन है।

0: हमारे साथियों ने बता दिया, जाहिदा हुसैन अभिनेत्री नरगिस की भांजी थी। अनोखी रात फिल्म का ये गाना। बहुत बहुत शुक्रिया सही जवाब के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए। शैतानियों की भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली।

जवाब आया हमारे श्रोताओं ने बताया। अंधा कानून फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का है। बहुत बहुत शुक्रिया। और संदेश जब आए हैं तो पिटाई की बातें भी आई हैं। हमारे एक श्रोता ने कह रही हैं कि आजकल माता पिता अपने बच्चों को मारते नहीं, प्यार से समझाते हैं। भाई हम लोग तो बिना मार खाए समझते ही नहीं थे। नई पीढ़ी को ये बात संभवतः अजीब भी लगे, पर इतनी मार डांट के बाद भी प्यार भी तो सबसे अधिक करते हैं। माँ पिता जैसा और कोई नहीं होता। बहुत सुंदर बात कही आपने। एक और श्रोता कह रही है कि शादी के बाद माता पिता के साथ सास ससुर भी हमारे अभिभावक होते हैं, लेकिन उनके लिए बहुत कम बोला जाता है। तो आप बताइए ना, कुछ अगर आपके पास कोई अनुभव हो या उनसे जुड़ी कोई बात हो, उनके प्यार का कोई खास पल आपने अगर जिया हो तो उसे हमारे साथ भी साझा करिए। एक संदेश में कहा है कि 5वीं कक्षा में एक बार स्कूल से छुट्टी होते ही सहेली के घर चले गए थे। उस समय इस बात का अनुमान नहीं था कि घर पे सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। चिंता बढ़ने पर पापा जी स्कूल पहुंचे तो पता चला सब बच्चे चले गए हैं। 2 घंटे बाद जब घर पहुंचे तो माँ का गुस्सा पिटाई के रूप में मिला। थोड़ी देर बाद पापा जी भी घर आए। उन्होंने प्यार से समझाया कि पहले घर आओ फिर बता कर जाओ। ऐसा खट्टा मीठा अनुभव रहा जो अब तक याद है। सच में वो जो धक धक धक धक होती है जब पिटाई होने वाली होती है, वो बड़ी खतरनाक होती है। और पिटने के बाद जब प्यार मिलता है और जो

चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, वो बड़ी ही प्यारी होती है। एक श्रोता कह रही है कि हमारी पिटाई तो नहीं हुई क्योंकि हम तो दूसरों को मारते या डांटते देखकर ही रो देते थे। जब कभी पापा हमारे छोटे भाई को उसकी गलती के लिए मारते थे, हम रो देते थे। तब बहुत छोटे थे तो पापा कहते थे अब तुम्हारी वजह से इसे डांट भी नहीं सकते। और कभी कभी जब हम शिकायत करते कि इसने रेडियो फेंक दिया, वो खराब हो गया, तो पापा कहते तुम बताओ हम क्या करें। श्रोता ने लिखा है कि मायके में माता पिता का साथ एक बेटी के लिए सबसे बड़ा भावनात्मक संबल और सुरक्षा कवच होता है। ये वो सुरक्षित कोना है जहां बिना किसी शर्त के प्रेम, निस्वार्थ सहयोग और बचपन जैसी बेफिक्री मिलती है। मायके में माता पिता के सानिध्य के मुख्य पहलू, विवाह के बाद जीवन के हर उतार चढ़ाव में माता पिता की मौजूदगी एक ढाल की तरह काम करती है। सही बात है, उनके पास बिताया गया समय मानसिक शांति और ऊर्जा देता है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक श्रोता ने कहा है कि इंसान को पक्षियों की तरह उन्मुक्त होकर जीने, वर्तमान में रहने और प्रकृति के करीब रहने का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। पक्षी कल की चिंता में नहीं जीते, वे आज के हर पल का आनंद लेते हैं। इसलिए इंसान भी भविष्य के तनाव को कम करने के लिए वर्तमान में जीना सीख सकते हैं। पक्षियों ने कभी अपने बच्चों को घोंसला बनाकर नहीं दिया, वो तो सिर्फ अपने बच्चों को उड़ने की कला सिखाते हैं। तनाव मुक्त रहने और छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढने का नजरिया पक्षियों की तरह ही होना चाहिए। बहुत सुंदर बात कही आपने। तो अब अगले गाने की तरफ बढ़ रहे हैं। गाने को सुनिए और बताइए कि इस फिल्म में अभिनेता कौन है।

0: फिल्म रात और दिन का गाना लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजें, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, और बिल्कुल सही जवाब के लिए बेहद बेहद ढेर सारा शुक्रिया। हमारे एक श्रोता ने बता दिया, तमाम श्रोताओं ने बताया कि प्रदीप कुमार और फिरोज खान इस फिल्म में अभिनेता के रूप में नजर आए थे। और अब संदेशों की बात हम करें, लेकिन उससे पहले एक सवाल और। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें मम्मी पापा घर में छुपा कर रख देते हैं, बाद में देते हैं, हमारे ही लिए रखते हैं, लेकिन वो छुपा हुआ खजाना ढूंढना उस समय बहुत एडवेंचरस लगता है, बड़ा रोमांचकारी लगता है, और कई बार वो ढूंढ भी लिया जाता है, और ढूंढने के बाद जब पता लगता है तो क्या होता है? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो हमें ज़रूर बताएं। एक श्रोता लिखते हैं कि जरूरी नहीं कि मार के डर से ही डरें, हमारे मम्मी पापा आंखों से डरा देते थे। जी हाँ, ये आंखों का अनुशासन भी गजब का होता था। एक और श्रोता कह रहे हैं कि बाबूजी हम लोगों को जूते डंडा से पीट देते यदि उनके सामने आवाज वाला खेलते थे, पर माँ गलतियों पर झाड़ू से मारती थी, पढ़ने को हमेशा बोलती थी, इसलिए आज हम भी अच्छे जॉब में हैं। बाबूजी किताब के लिए हमेशा आगे रहते थे, कलाकार हैं, बाबूजी दोनों हाथों से लिखते हैं, चित्र बनाते हैं। वाह, बहुत अच्छी बात है। एक और संदेश में बताया है कि बचपन में माँ बड़े भाई मास्टर जी से मार खाने और उससे बचने के लिए दूर दौड़ कर भागने का आनंद ही अलग था। और एक संदेश है कि हमारी पीढ़ी वो थी, माता पिता की मार खाकर रोते थे, इतना रोते थे कि चुप कराने के लिए भी मार खाने के बाद चुप होते थे। क्या बात है। इन बातों के साथ चेहरे पर आप सभी के मुस्कान भी आती जा रही है। और एक संदेश में कहा है कि माता पिता बच्चे को प्यार, संस्कार और सुरक्षा देकर पालते हैं, जबकि सास ससुर का रिश्ता हमें परिस्थितियों का सामना करना, समझौता करना और एक नई सामाजिक दुनिया में अपनी पहचान बनाना सिखाता है। हर परिवार और परिस्थिति अलग होती है, कई बार सास ससुर का अनुभव और सीख जीवन में मजबूती लाते हैं, तो कभी उनके साथ का संघर्ष व्यक्ति को आत्मनिर्भर और साहसी बना देता है। एक श्रोता ने बताया है कि हम जब मुंबई में रहते थे, फोर्थ क्लास में था, तो एक दिन मैं स्कूल से घर वापस आ रहा था, मेन रोड क्रॉस कर रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया और कार टैक्सी ने मुझे टक्कर मार दी, मैं बेहोश हो गया था। जब मुझे होश आया तो टैक्सी ड्राइवर अंकल जी बहुत डरे हुए थे, वैसे गलती मेरी थी, दूसरे लोगों ने मुझसे पूछा कि घर कहाँ है, हम छोड़ दें, मैं कहने लगा अंकल मुझे छोड़ने मत चलो प्लीज़, मम्मी बहुत डांटेगी और पिटाई होगी, मैं चला जाऊँगा। फिर भी ड्राइवर अंकल छोड़ने चले, परंतु पूज्य माता जी को घटना का पता चला तो उन्होंने मुझे गले लगा लिया और खुद ही रोने लगी, कहीं मुझे ज्यादा चोटें तो नहीं आई हैं। ये होता है मां का प्यार, और मैं डर रहा था। तो अब वो खजाने वाली बात अगर याद आ रही हो तो जरूर बताएं, और बताएं कि इस फिल्म के गीतकार संगीतकार कौन हैं।
1: मुड़ मुड़

फिल्म श्री 420 के इस गाने के लिए सही जवाब आ गया। शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा था, शंकर जयकिशन का संगीत था इस फिल्म में। आशा भोसले और मन्ना डे के साथ साथियों की आवाजों में आपने ये गाना सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। रात और दिन फिल्म का जो गाना आपने इससे पहले सुना था उसके बारे में हमारे एक श्रोता ने बताया कि वोल्स धुन पर विशेष आधारित नरगिस जी और फिरोज खान, रात और दिन शंकर जयकिशन जी का संगीत, अकॉर्डियन खूबसूरत और तबले का खास चलन। और बहुत सारे श्रोता बहुत खुशी व्यक्त कर रहे हैं कि आज तो मेरे में भेजे हुए बहुत सारे गीत कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, है ना, खुशी की बात। एक श्रोता ने बताया कि मेरे बेटे का विवाह 9 साल पहले हुआ है, कभी सास और बहू में कंकस नहीं होता, माँ बेटी की तरह सहृदय भाव से रहते हैं। ये भी जीवन का आनंद है, छोटी बातों पर कभी छोटा मन नहीं करना चाहिए, झगड़े का कारण एक दूसरे के प्रति कटु वचन से अभाव बढ़ता है। एक संदेश में कहा गया है कि बच्चों के जीवन के पहले गुरु माता पिता होते हैं जो अच्छे बुरे की परख से अवगत कराते हैं। बच्चों पर अपने माता पिता के आचरण का गहरा प्रभाव पड़ता है। बच्चों को स्कूल में सिर्फ किताबी ज्ञान मिलता है लेकिन सामाजिक तौर तरीके सीखने की शुरुआत अपने परिवार से ही होती है, जहां माँ के आंचल की छांव और पिता के प्यार से बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो जाता है।

आज की एक और संदेश में कहा है कि आज की इबारत की खास बात यह है कि गीतों को लेकर इसमें कुछ भी दबा छुपा सस्पेंस नहीं है। इबारत पढ़कर साफ साफ पता लग रहा है कौन कौन से सदाबहार सुपरहिट गीत बजने वाले हैं। कुल मिलाकर बहुत सरल और आसान समझ में आने वाली इबारत है। वैसे कुछ सस्पेंस हो तो और मजा है। तो चलिए, आप सबको माता पिता दिवस की बहुत शुभकामनाएं और ढेरों बधाइयाँ। तो अब अगला गाना गाना सुनिए और बताइए कि इस फिल्म में प्रमुख भूमिकाएं किन कलाकारों ने निभाई थीं।

फिल्म बहारों के सपने का गाना लता मंगेशकर और मन्ना डे के स्वरों में आपने सुना। राहुल देव बर्मन का संगीत, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और सही जवाब आ गया। आशा पारेख और राजेश खन्ना ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। संदेश मिला है कि हमारी श्रोता ने बताया है कि माँ से तो नहीं डर लगता था, पिता से बहुत डरते थे। कड़क स्वभाव वाले और शिष्ट पालन के आग्रही थे। सत्य की राह पर खुद चलते थे, हमें भी सत्य की राह पर चलने के लिए प्रेरित करते थे। आज माता पिता दोनों नहीं हैं, लेकिन उनके आशीर्वाद से हम सुखी हैं। और बचपन की यादें ताजा हुई मुड़ मुड़ के न देख गाना सुनकर। हमारी एक श्रोता की क्या बात है। एक और श्रोता बता रहे हैं कि हमारे दादाजी स्वतंत्र

सेनानी थे, उनका पूरे घर में रुतबा चलता था। हम बच्चों को भी बहुत डर लगता था, लेकिन थे वो बहुत विकासवादी। आज से 70 साल पहले उन्होंने हमारी बुआ जी को स्कूल भेजा था, वो गांव से इकलौती थी स्कूल जाने वाली। क्या बात है, नतमस्तक हो जाते हैं हम ऐसे बुजुर्गों के सामने जो हमें विकासवादी सोच की तरफ के अपना दिखाते हैं कि विकासवादी सोच से क्या क्या बदलाव आ सकता है। और अब अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं, गाने को सुनिए और प्रमुख कलाकारों के नाम आपको बताने हैं, साथ ही बताइए गीतकार और संगीतकार कौन है।

खजाना ढूंढने की बात को लेकर हमारे एक श्रोता ने बताया कि एक बार हमारे नाना जी जब घर आए तो हम बच्चों के लिए टॉफी का पैक लेकर आए, माँ ने उसको छुपा कर रख दिया। हम सबका ध्यान उस पर लगा था, बहुत जतन किए गए पर सफलता हाथ नहीं लगी, लेकिन माँ हर बच्चे को उनके अच्छे काम के लिए जब उपहार स्वरूप टॉफी देती तो मन प्रसन्न हो जाता था।

फिल्म अवतार का गाना राजेश खन्ना, शबाना आजमी प्रमुख भूमिकाओं में थे। आनंद बख्शी ने गीत लिखे थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत तैयार किया था, ऐसा हमारे एक श्रोता ने लिखकर भेजा है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब कार्यक्रम समाप्ति की ओर है तो कुछ संदेश जल्दी से। ना कोई दौलत ना कोई खजाना चाहिए, बस माता पिता का प्यार पुराना चाहिए। सारी खुशियां मिल जाती हैं जीवन में जब उनका आशीर्वाद सिरहाना चाहिए। क्या बात है। दूध दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय दूध दिवस की शुभकामनाएं देते हुए एक साथी कह रहे हैं कि रोज सुबह आधा लीटर दूध केसर डालकर पीजिए और 5 किलोमीटर लंबी यात्रा कीजिए। ओहो। एक और श्रोता ने कहा है कि हमारा पहला विद्यालय होते हैं जहां हमारे संस्कारों की नींव गढ़ी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया इतने सुंदर संदेशों के लिए। हाँ, समय की कमी के चलते हम बहुत से संदेश नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन बहुत सुंदर संदेश हैं और इन्हीं संदेशों के बीच में हमने ढूंढ लिया है प्यार और माता पिता का वो समर्पण और त्याग। तो अब इसी नोट पर इस कार्यक्रम को समाप्त कर रहे हैं। डीजे राजू को इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

आज है विश्व दूध दिवस। दूध की उपयोगिता और महत्व को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये दिन दुनिया भर के 40 से अधिक देशों में मनाया जाता है। दूध के विषय पर सोचना शुरू करते ही यकायक मैथिली शरण गुप्त की रचना याद आती है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, है आंचल में दूध और आंखों में पानी। भले ही साथियों आज नारी अबला नहीं बल्कि सबला है, लेकिन ये भी तो सच है कि नारी हर दुख हर दर्द को पीकर पूरे घर को समृद्ध करती है। अपने रक्त को दूध में परिवर्तित कर एक माँ अपने संतान को पिलाती है, उसे जीवन दान देती है।

हालांकि 1 जून यानी कि आज के दिन विश्व दूध दिवस मनाया जाता है, पर भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर को डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। हाँ, वही कुरियन साहब जिन्होंने भारत में सफेद क्रांति ला दी थी अपने ऑपरेशन फ्लड के नाम से, यानी कि दुग्ध विकास मिशन के माध्यम से। इस क्रांति ने केवल देश भर में दूध की उपलब्धता को आशातीत रूप से बढ़ावा ही नहीं, बल्कि बच्चों में कुपोषण को भी कम कर दिया और साथ ही साथ लाखों बेरोजगार लोगों को रोजगार भी दिया।

और लीजिए एक बार फिर से सुमन कल्याणपुर के साथ मोहम्मद रफी को सुनवा रहे हैं ब्रह्मचारी फिल्म से। हसरत जयपुरी ने गीत को लिखा है और शंकर जयकिशन ने संगीत दिया है।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। कुछ और गाने आप सुनेंगे 2:30 बजे आपकी फरमाइश में। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज रायसेन जिले के रामसिया से देशव्यापी खेत बचाओ अभियान की शुरुआत की। 30 जून तक चलने वाले इस अभियान के माध्यम से किसानों को प्राकृतिक खेती, नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे में जागरूक किया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट।
1: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के राम

0: गांव में राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। एक महीने तक चलने वाला यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा,
1: ये खेत बचाओ कार्यक्रम इसलिए कि हमारी माटी बर्बाद ना हो जाए, हमारे खेत बर्बाद ना हो जाए, हमारी धरती बर्बाद ना हो जाए। आज ये धरती माँ पुकार पुकार के कह रही है, धरती कहे पुकार के कि इतना खाद मत डालो, इतना कीटनाशक मत डालो कि जो मुझे ही मार दे, मेरे अंदर जो अरबों जीव है उन सबको खत्म कर दे।
0: इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि मिलकर भाग ले रहे हैं। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोइल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे भी किसानों को सजग किया जाएगा। अभियान के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ भी किसानों तक पहुंचाया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
2: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। उन्होंने लाभार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनका दृढ़ संकल्प और उद्यमशीलता देश की अर्थव्यवस्था को लगातार मजबूत कर रही है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को नया कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मिल गया है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार वर्तमान न्यायाधीश विवेक रुसिया को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये बदलाव मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा की उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति होने के कारण हुआ है। नवनियुक्त कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रुसिया मूल रूप से जबलपुर के ही रहने वाले हैं। और अब खबर मौसम की। नौतपा के 7वें दिन कल प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं का असर बना रहा। इससे तापमान में भी कमी आई है। ज्यादातर जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। शाजापुर प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 41.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पचमढ़ी में सबसे कम 34.4 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। पन्ना से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में कल तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई, जिससे भीषण गर्मी और तपती धूप से लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने आज धार, खरगोन जिलों में ओलावृष्टि और तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा और पांडुना में आंधी, गरज चमक के साथ बारिश और ओली गिरने का ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता यूसीसी के संबंध में अध्ययनरत और परीक्षण हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की कल आगरमालवा में बैठक आयोजित की गई। प्रशासन आपके द्वार अभियान के अंतर्गत नर्मदापुरम जिले के दूरस्थ ग्राम कामती में आयोजित रात्रि चौपाल के दौरान कलेक्टर ने जनसंवाद के दौरान ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। शिवपुरी में पेयजल व्यवस्था की निगरानी के लिए वार्डों में निरीक्षण के लिए अधिकारी पहुंचे। शहर में टैंकरों से पानी सप्लाई किया जा रहा है। खंडवा पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 290 लीटर शराब और बियर जब्त की है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ। नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। मई महीने में सकल जीएसटी संग्रह बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हुआ। पीएम स्वनिधि

0: योजना के 6 साल पूरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। पश्चिम एशिया में तनाव फिर तेज, अमेरिका ने ईरान में रडार और ड्रोन प्रणालियों पर हमले किए और हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण सहित 19 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए वार्ता हुई। बातचीत के दौरान म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे।
1: सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित होंगे।
2: ये मंत्रिमंडल विस्तार राज्य सरकार की प्रशासनिक संरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नए मंत्री राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनमें अनुभवी विधायकों के साथ साथ पहली बार विधायक बने सदस्य भी शामिल है। समारोह में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ वरिष्ठ राजनीतिक नेताएं, सरकारी अधिकारियों और आमंत्रित अतिथियों उपस्थित थे। नवनियुक्त मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन बाद में घोषित किया जाएगा। आज शपथ लेने वाले मंत्रियों में स्वपन दास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस राय, शंकर घोष और अन्य शामिल है। काश्मीर नाहर, आकाशवाणी समाचार, कलकत्ता।
0: 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 18 जून को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री गोयल ने कहा कि यह समझौता नए बाजार खोलेगा, इससे निर्यात में वृद्धि होगी तथा निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री गोयल ने कहा कि व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातक को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि इससे रोजगार बढ़ेगा और विद्यार्थियों, कामगारों, महिलाओं, किसानों, मछुआरों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को महत्वपूर्ण रूप से लाभ होगा। वस्तु और सेवा कर GST का सकल संग्रह पिछले महीने 3.2% बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। पिछले वर्ष मई में ये 1,88,000 करोड़ रुपए था। पिछले महीने केंद्रीय GST का सकल संग्रह 37,397 करोड़, राज्य GST का 45,143 करोड़ और एकीकृत GST का 51,990 करोड़ रुपए रहा। इस अवधि के दौरान वस्तुओं की कर योग्य आपूर्ति में 26.9% की वृद्धि हुई। सेवा क्षेत्र में इसमें 22.2% की बढ़त दर्ज की गई। GST रिफंड में 2.6% की वृद्धि हुई और यह आंकड़ा 27,281 करोड़ रुपए रहा।

0: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्ष 2020 में योजना शुरू होने के बाद से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण दिए गए हैं।
1: देश के लाखों रेहड़ी पटरी वालों को पिछले 6 साल से पीएम स्वनिधि स्कीम के जरिए आसानी से कर्ज मिल रहा है। इससे उनके लिए अस्थायी आजीविका सुनिश्चित हो पाई है। इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी के 3 चरणों में क्रमशः 15,000, 25,000 और 50,000 रुपए तक के कर्ज उपलब्ध कराए जाते हैं। इन कर्जों पर ब्याज सब्सिडी तथा ऋण गारंटी सहायता भी प्रदान की जाती है। इस पहल से देश भर के शहरों और कस्बों में 75,00,000 से अधिक लाभार्थियों को फायदा हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 55,00,000 से अधिक लाभार्थियों को इस स्कीम से डिजिटल

0: में क्रमशः 15,000, 25,000 और 50,000 रुपए तक के कर्ज उपलब्ध कराए जाते हैं। इन कर्जों पर ब्याज सब्सिडी तथा ऋण गारंटी सहायता भी प्रदान की जाती है। इस पहल से देश भर के शहरों और कस्बों में 75 लाख से अधिक लाभार्थियों को फायदा हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 55 लाख से अधिक लाभार्थियों को इस स्कीम से डिजिटल रूप से जोड़ा गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये अभियान 1 महीने तक चलेगा।
2: 1 महीने तक चलने वाला यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा,
3: ये खेत बचाओ कार्यक्रम इसलिए कि हमारी माटी बर्बाद ना हो जाए, हमारे खेत बर्बाद ना हो जाए। धरती कहे पुकार के इतना खाद मत डालो, इतना कीटनाशक मत डालो।
2: इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि मिलकर भाग ले रहे हैं। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोइल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। अभियान के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ भी किसानों तक पहुँचाया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की।
4: विधि मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को पदोन्नत किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकिता सुब्रमणि मोहना को भी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने पिछले महीने एक अध्यादेश जारी कर कानून में संशोधन किया था। इसके अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश के अलावा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़कर 37 कर दी गई थी। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची बाजपेयी।
1: होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में देश भर में वृद्धि की गई है। हालांकि घरों में उपयोग होने वाली घरेलू खाना पकाने की गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 42 रुपये की वृद्धि हुई है और अब इसकी कीमत 3,113 रुपये 50 पैसे होगी। मुंबई में 43 रुपये 50 पैसे की वृद्धि के साथ नई कीमत 3,067 रुपये 50 पैसे होगी। कोलकाता में 53 रुपये 50 पैसे की वृद्धि के साथ व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत अब 3,255 रुपये 50 पैसे होगी। चेन्नई में कीमतों में 42 रुपये की वृद्धि हुई है और अब नई कीमत 3,283 रुपये होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने अमेरिका के एक ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिका के ईरान में रडार और ड्रोन नियंत्रण स्थलों पर हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ईरान ने जवाबी हमले की बात स्वीकार की, जबकि कुवैत ने कहा कि वो आने वाले ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोक रहा है। कुवैत की सेना ने कहा है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर रही है। इसराइल द्वारा लिटानी नदी के पार लेबनान पर अपना कब्जा बढ़ाने के कारण तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट।
5: सैन्य टकरावों के बीच राजनयिक बातचीत जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे ईरान के साथ एक अच्छे समझौते के करीब हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्जी ने पुष्टि की है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि औपचारिक रूप से समझौता होने तक किसी भी निर्णय को अंतिम नहीं माना जा सकता। दूसरी ओर लेबनान पर इसराइल के बढ़ते जमीनी हमलों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना हो रही है। फ्रांस ने स्थिति पर विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।

0: भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों की दूसरी संवाद बैठक नई दिल्ली में हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक के दौरान श्री सिंह ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा संबंध काफी मजबूत हुए हैं।
1: मैं आपकी सरकार को 2026 की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति और एकीकृत निवेश कार्यक्रम की पहल के लिए बधाई देना चाहता हूं। चर्चा के दौरान मैं इन नीतिगत दस्तावेजों और भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंधों में विकास के संभावित अवसरों पर आपके विचारों को सुनने के लिए उत्सुक हूं।
0: श्री माल्स ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत ने अपनी रक्षा साझेदारी को और मजबूत किया है और दोनों पक्ष समुद्री क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। वार्ता में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा और सहयोग के नए रास्ते तलाशे जाएंगे। म्यांमार के नामकाम शहर में भीषण विस्फोट में 55 लोगों की मौत हो गई है। कल हुए इस विस्फोट में 70 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ये घटना खनन के लिए रखे गए सामान में हुए विस्फोट के कारण हुई। स्थानीय अधिकारी प्रभावित निवासियों को राहत, चिकित्सा देखभाल और पुनर्वास सहायता प्रदान कर रहे हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार विस्फोट में 100 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने वाले नियमों को आज से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत कम से कम 80 लाख उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी। नियमों का पालन न करने वाली कंपनियों पर 100 लाख रिंगिट तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार ने कहा कि इन उपायों का उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और जैसी चीजों से बचाना है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और इंडोनेशिया सहित अन्य देशों ने भी बच्चों के सोशल मीडिया तक पहुंच पर आयु आधारित प्रतिबंधों की घोषणा की है। हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित 19 पदक जीते हैं। पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर रहा। घरेलू मोगली वेंकटराम ने कल पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

अपनी सुरीली आवाज की खुशबू से तमाम यादगार गीतों को महकाने वाली सुमन कल्याणपुर की आवाज, साथ में मोहम्मद रफी, बेटी बेटे फिल्म का ये गाना आपने अभी सुना। शैलेंद्र के बोल थे और शंकर जयकिशन का संगीत था। और अब आपको सुनवा रहे हैं बूंद जो बन गई मोती फिल्म का गाना। मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाजें हैं, भरत व्यास की रचना है और सतीश भाटिया का संगीत।

कपूर और मोहम्मद रफी के स्वरों में शैलेंद्र की रचना थी और सल चौधरी का संगीत। इन सुंदर गीतों के साथ मन का जला दीप सदैव प्रकाश बिखेरता रहता है। फिल्म संगीत के स्वर्ण युग का आखिरी सुमन भी कल मुरझा गया, लेकिन उनकी आवाज की कशिश हमेशा दिलो दिमाग पर छाई रहेगी। आइए सुनते हैं दिल ही तो है फिल्म का गाना, सुमन कल्याणपुर की आवाज में, साहिल लुधियानवी के बोल हैं और रोशन की तर्ज।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में सरती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: सदाबहार नगमे प्रोग्राम में अब आपको सुनवा रहे हैं जब से तुम्हें देखा है फिल्म का गाना, मन्ना डे और सुमन कल्याणपुर का गाया हुआ। शैलेंद्र के लिखे गीत को संगीत से संवारा है दत्ताराम ने।

सदाबहार नगमे प्रोग्राम में अब आपको सुनवा रहे हैं मासूम फिल्म का गाना। राजा मेहंदी अली खान के बोल हैं, रॉबिन बनर्जी का संगीत है, आवाज है सुमन कल्याणपुर की।

0: क्या हुआ ये गाना आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में। फिल्म का नाम था जी चाहता है। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत, मोहब्बत इसको कहते हैं। यह है फिल्म का नाम। आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की हैं। गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और धुन बनाई है खयाम ने।
1: कह दिए हो शुम यार।

0: आँखों की बुझा लूं तो चले जाएगा ठहरिए हो।
1: इस दो गाने के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सखी सहेली। बस कुछ ही पलों में

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और
2: मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
1: कहिए कैसी हैं मंजरी जी आप?
2: बस यही कहेंगे ना कि हमेशा की तरह बिल्कुल मस्त अच्छी सी हूँ।
1: हाँ, जी वो तो आपको देखकर ही लग रहा है कि बिल्कुल जो है आप खुश लग रही हैं, बहुत ज्यादा फ्रेश लग रही हैं।
2: जी धन्यवाद।
1: और मुझे लगता है कि जब से मैं सुबह से आपको देख रही हूँ आप तरह तरह के गीत निकाल रही हैं, कभी किसी गाने को पसंद कर रही हैं, कभी नहीं कर रही हैं, तो संगीत के बीच में रहकर भी आदमी जो है एकदम अपने आप को फ्रेश पाता है, ताजा महसूस करता है।
2: गीत संगीत की दुनिया ऐसी है कि आप कितने भी उदास हो आप गीत सुन लीजिए आप एकदम फ्रेश हो जाएंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि आपकी उदासी आपके पास से कब कहां किधर चली गई अगर आप बिल्कुल दिल से सुनते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा मंजरी। हाँ लेकिन एक उदासी का सबब आज तो हमारे मन में है।
2: बिल्कुल
1: है ना।
2: बिल्कुल भाई, हम कहने वाले थे कि जब हमारे बीच से कोई चला जाता है और जब अच्छी अच्छे गायक गायिका चले जाते हैं तो उनके ना चाहिए उनके गाने हम सुनकर ही बड़े हुए हैं।
1: बिल्कुल।
2: तो वो गाने हमेशा कानों में दस्तक देते रहते हैं और जब वो व्यक्ति चला जाता है तो बहुत दुख होता है, आंखें भर आती, दिल भर आता है।
1: बिल्कुल। कल मैं एक कार्यक्रम दे रही थी मंजरी, उसमें मैंने कहा कि किसी का जाना कैसा महसूस होता है हमें जब हमारी जिंदगी से, विचारों से, हमारे दिल से, हमारे घर से कोई चला जाता है या दुनिया से चला जाता है तो हम क्या महसूस करते हैं। और हमारे श्रोताओं ने इतने अच्छे विचार हम तक पहुंचाए थे कि मेरा गला भर आया था और आंखें नम हो गई थी।
2: नहीं, वो बात ही ऐसी है कि हम पढ़ते पढ़ते आज भी आंखें नम हो जाती जब हम उन चीजों को याद करते हैं और जो हमारे बीच से अब चले गए हैं और हम सब उनके परिवार के ही सदस्य कहना चाहिए। वो गाने गाते हैं और हम लोग सुनते हैं ध्यान से तो हम कहीं ना कहीं उनके साथ एकदम जुड़े होते हैं।
1: और इस कार्यक्रम या इस नौकरी में हमने न जाने कितनी बार इन गायक और गायिकाओं को बजाया और खुद गुना उनके गानों को गुनगुनाया, उनके गानों को जिया हमने। मुझे याद है रफी साहब के इतने सारे गाने हैं जो हमारी जिंदगी से जुड़े हुए लगते हैं, लता जी के, आशा जी के, और आज जो सुमन कल्याणपुर को हमने खो दिया है उनके गाए गीत जब हम सुनते हैं तो लगता है कि हमारे ही गले का कोई सुर जैसे चला गया है।
2: बिल्कुल
1: ऐसा महसूस होता है,
2: है
1: ना। इतनी महान गायिका, इतनी शानदार गायिका जिन्होंने बहुत सादगी से अपनी आवाज को पेश किया, आप तक पहुंचाया और हर गीत को उतनी ही कोमलता के साथ, सादगी के साथ, उतार चढ़ाव के साथ गाया
2: और उतनी ही उनका स्वभाव भी सादगी भरा था। बहुत ही सरल स्वभाव की महिला हैं वो थी और जो आज हमारे बीच नहीं है तो उनको हम सभी लोग और सभी विद भारती परिवार की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।
1: बिल्कुल।
2: और हमारी सखी ने भी एक
1: कुछ लिखा है, बताइए हमारी सखी ने क्या लिखा है।
2: इन्होंने गाने की एक लाइन लिखी है कि यूं ही दिल ने चाहा था रोना रुलाना, तेरी याद तो बन गई एक बहाना। दुखद समाचार, दिग्गज गायिका सुमन कल्याणपुर अब इस दुनिया में नहीं है। आज 89 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। अपनी आवाज का जादू बिखेरने वाली दिग्गज प्लेबैक सिंगर सुमन कल्याणपुर का आज निधन हो गया है। और उन्होंने इतने साल उम्र मुंबई में स्थित अपने घर में उन्होंने अंतिम सांस ली है। और उन्होंने पहले सुमन हेमदी नाम से गाने गाए थे, हालांकि शादी के बाद उन्होंने सुमन कल्याणपुर के नाम से अपनी पहचान बनाई और गीतों को आवाज दी।
1: आवाज दी, बिल्कुल। और उनकी आवाज हमने जन जन तक पहुंचाई रेडियो के माध्यम से, तो विविध भारती परिवार की ओर से हम उन्हें सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और सखी सहेली के इस मंच से, इस परिवार से उन्हें बहुत बहुत श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं।

0: हाँ तो मंजरी, आज हम किन विषयों पर बात करने वाले हैं, हमारी सखियां और सखा जानना भी चाहते होंगे।
1: बिल्कुल, तो आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश के व्यंजन बनारस का, मंगौड़ी वाला मटर का निमोना और धनिया की मट्ठी, इसके बारे में बात करेंगे। और वैश्विक अभिभावक दिवस है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और विश्व दुग्ध दिवस भी आज है, तो दूध तो सभी जानते हैं कितना अच्छा होता है सभी के लिए पीना, बच्चों के लिए खासकर बहुत जरूरी है, तो इस पर चर्चा करेंगे। और कथा सुधा के अंतर्गत आभूषण भाग एक, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी ये आज सुनाई जाएगी और इसका भाग एक है, तो हम लोग इस कहानी का आनंद लेते हैं।
0: चलिए तो पहले ही कहानी सुन लेते हैं।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी दुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा में सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण। आज सुनते हैं इस कहानी की पहली कड़ी।

आभूषणों की निंदा करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम असहयोग का उत्पीड़न सह सकते हैं, पर ललनाओं के निर्दय घातक वाकवाणों को नहीं ओढ़ सकते। तो भी इतना अवश्य कहेंगे कि इस तृष्णा की पूर्ति के लिए जितना त्याग किया जाता है, उसका सदुपयोग करने से महान पद प्राप्त हो सकता है। यद्यपि हमने किसी रूपहीना महिला को आभूषणों की सजावट से रूपवती होते नहीं देखा।

0: तथापि हम ये भी मान लेते हैं कि रूप के लिए आभूषणों की उतनी ही जरूरत है जितनी घर के लिए दीपक की, किंतु शारीरिक शोभा के लिए हम तन को कितना मलिन, चित्त को कितना अशांत और आत्मा को कितना कलुषित बना लेते हैं, इसका हमें कदाचित ज्ञान ही नहीं होता। इस दीपक की ज्योति में आंखें धुंधली हो जाती हैं। ये चमक दमक, कितनी ईर्ष्या, कितने द्वेष, कितनी प्रतिस्पर्धा, कितनी दुश्चिंता और कितनी दुराशा का कारण है, इसकी केवल कल्पना से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन्हें भूषण नहीं, दूषण कहना अधिक उपयुक्त है। नहीं तो ये कब हो सकता था कि कोई नववधू पति के घर आने के तीसरे दिन अपने पति से कहती,
1: मेरे पिता ने तुम्हारे पल्ले बांधकर मुझे तो कुएं में ढकेल दिया है।
0: शीतला आज अपने गांव के तालुकेदार कुंवर सुरेश सिंह की नवविवाहिता वधु को देखने गई थी। उसके सामने ही वो मंत्रमुग्ध सी हो गई। बहू के रूप लावण्य पर नहीं, उसके आभूषणों की जगमगाहट पर उसकी टकटकी लगी रही, और वो जब से लौट कर घर आई, उसकी छाती पर सांप लौटता रहा। अंत को ज्यों ही उसका पति आया, वो उस पर बरस पड़ी और दिल में भरा हुआ गुबार पूर्वोक्त शब्दों में निकल पड़ा। शीतला के पति का नाम विमल सिंह था। उनके पुरखे किसी जमाने में इलाकेदार थे। इस गांव पर भी उन्हीं का सोलहों आने अधिकार था, लेकिन अब इस घर की दशा हीन हो गई है। सुरेश सिंह के पिता जमींदार के काम में दक्ष थे। विमल सिंह का सब इलाका किसी न किसी प्रकार से उनके हाथ आ गया। विमल के पास सवारी का टट्टू भी न था। उसे दिन में दो बार भोजन भी मुश्किल से मिलता था। उधर सुरेश के पास हाथी, मोटर और कई घोड़े थे। 10-5 बाहर के आदमी नित्य द्वार पर पड़े रहते थे, पर इतनी विषमता होने पर भी दोनों में भाईचारा निभाया जाता था। शादी ब्याह में, मुंडन छेदन में परस्पर आना जाना होता रहता था। सुरेश विद्या प्रेमी थे। हिंदुस्तान में ऊंची शिक्षा प्राप्त करके वो यूरोप चले गए और सब लोगों की शंकाओं के विपरीत वहां से आर्य सभ्यता के परम भक्त बनकर लौटे। वहां के जड़वाद, कृत्रिम भोगलिप्सा और अमानुषिक मदांधता ने उनकी आंखें खोल दी थीं। पहले वो घर वालों के बहुत जोर देने पर भी विवाह करने को राजी नहीं हुए थे। लड़की से पूर्व परिचय हुए बिना प्रणय नहीं कर सकते थे, पर यूरोप से लौटने पर उनके वैवाहिक विचारों में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। उन्होंने उसी पहले की कन्या से बिना उसके आचार विचार जाने हुए विवाह कर लिया। अब वो विवाह को प्रेम का बंधन नहीं, धर्म का बंधन समझते थे। उसी सौभाग्यवती वधू को देखने के लिए आज शीतला अपनी सास के साथ सुरेश के घर गई थी। उसी के आभूषणों की छटा देखकर वो मर्माहत सी हो गई। विमल सिंह ने व्यथित होकर कहा,
2: तो माता पिता से कहा होता सुरेश से ब्याह कर देते और वो तुम्हें गहनों से लाद सकते थे।
1: तो गाली क्यों देते हो?
2: गाली नहीं देता, बात कहता हूं। तुम जैसी सुंदरी को उन्होंने नाहक मेरे साथ ब्याह।
1: लजाते तो नहीं, उल्टे और ताने देते हो।
2: भाग्य मेरे वश में नहीं है और इतना पढ़ा भी नहीं हूं कि कोई बड़ी नौकरी करके रुपए कमाऊं।
1: ये क्यों नहीं कहते कि प्रेम ही नहीं है? प्रेम हो तो कंचन बरसने लगे।
2: तुम्हें गहनों से बहुत प्रेम है।
1: सभी को होता है, मुझे भी है।
2: अपने को अभागिनी समझती हो?
1: हूं ही, समझना कैसा, नहीं तो क्या दूसरे को देखकर तरसना पड़ता।
2: गहने बनवा दूं तो अपने को भाग्यवती समझने लगोगी?
1: तुम तो इस तरह पूछ रहे हो जैसे सुनार दरवाजे पर ही बैठा है।
2: नहीं, सच कहता हूं, बनवा दूंगा, बनवा दूंगा, लेकिन कुछ दिन सबर करना पड़ेगा।
0: समर्थ पुरुषों को बात लग जाती है तो प्राण ले लेते हैं, सामर्थ्यहीन पुरुष अपनी ही जान पर खेल जाता है। विमल सिंह ने घर से निकल जाने की ठानी। निश्चय किया, या तो इसे गहनों से ही लाद दूंगा या वैधव्य शोक से, या तो आभूषण ही पहनेगी।

0: या सिंदूर को भी तरसेगी। दिन भर वो चिंता में डूबा पड़ा रहा। शीतला को उसने प्रेम से संतुष्ट करना चाहा था। आज अनुभव हुआ कि नारी का हृदय प्रेम पाश से नहीं बंधता, कंचन के पाश ही से बंध सकता है। पहर रात जाते जाते वो घर से चल खड़ा हुआ, पीछे फिर कभी न देखा। ज्ञान से जागे हुए विराग में चाहे मोह का संस्कार हो, पर नैराश्य से जागा हुआ विराग अचल होता है। प्रकाश में इधर की वस्तुओं को देखकर मन विचलित हो सकता है, पर अंधकार में कितना साहस है जो लीक से जौबर हट सके। विमल के पास विद्या न थी, कला कौशल भी न था, उसे केवल अपने कठिन परिश्रम और कठिन आत्मत्याग ही का आधार था। वो पहले कलकत्ते गया, वहां कुछ दिन तक एक सेठ की अगवानी करता रहा। वहां जो सुन पाया कि रंगून में मजदूरी अच्छी मिलती है, तो वो रंगून जा पहुंचा और बंदर पर माल चढ़ाने उतारने का काम करने लगा। कुछ तो कठिन श्रम, कुछ खाने पीने के असंयम और कुछ जलवायु की खराबी के कारण वो बीमार हो गया। शरीर दुर्बल हो गया, मुख की कांति जाती रही, फिर भी उससे ज्यादा मेहनती मजदूर बंदर पर दूसरा न था। और मजदूर थे, पर ये मजदूर तपस्वी था। मन में जो कुछ ठान लिया था, उसे पूरा करना उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था। उसने घर को अपना कोई समाचार न भेजा, अपने मन से तर्क किया, घर में मेरा कौन हेतु है, गहनों के सामने मुझे कौन पूछता है। उसकी बुद्धि ये रहस्य समझने में असमर्थ थी कि आभूषणों की लालसा रहने पर भी प्रणय का पालन किया जा सकता है। और मजदूर प्रातः काल सेरों मिठाई खाकर जलपान करते थे, दिन भर दम भर पर गांजे चरस और तंबाकू के दम लगाते थे, अवकाश पाते तो बाजार की सैर करते थे। कितनों ही को शराब का भी शौक था, पैसों के बदले रुपए कमाते थे तो पैसों की जगह रुपए खर्च भी कर डालते थे। किसी के देह पर साबुत कपड़े न थे, पर विमल उन गिनती के दो चार मजदूरों में था जो संयम से रहते थे, जिनके जीवन का उद्देश्य खा पी कर मर जाने के सिवा कुछ और भी था। थोड़े ही दिनों में उसके पास थोड़ी सी संपत्ति हो गई, धन के साथ और मजदूरों पर दबाव भी बढ़ने लगा। ये प्रायः सभी जानते थे कि विमल जाति का कुलीन ठाकुर है, सब ठाकुर ही कहकर उसे पुकारते थे। संयम और आचार सम्मान सिद्धि के मंत्र हैं। विमल मजदूरों का नेता और महाजन हो गया। विमल को रंगून में काम करते हुए 3 वर्ष हो चुके थे। संध्या हो गई थी, वो कई मजदूरों के साथ समुद्र के किनारे बैठा बातें कर रहा था।
1: यहां की सभी स्त्रियां निष्ठुर होती हैं। बेचारा झिंगुर 10 बरस से उसी बर्मी स्त्री के साथ रहता था।
2: अच्छा,
1: कोई अपनी ब्याही जोरू से भी इतना प्रेम न करता होगा। उस पर इतना विश्वास करता था कि जो कुछ कमाता सो उसके हाथ में रख देता था। 3 लड़के थे, अभी कल तक दोनों साथ साथ खाकर लेटे थे। न कोई लड़ाई, न बात, न चीत। रात को औरत न जाने कहां चली गई, लड़कों को छोड़ गई। बेचारा झिंगुर रो रहा है। सबसे बड़ी मुश्किल तो छोटे बच्चे की है, अभी कुल 6 महीने का है, कैसे जिएगा भगवान ही जाने।
3: गहने बनवाता था कि नहीं?
1: रुपए पैसे तो औरत ही के हाथ में थे, गहने बनवाती उसका हाथ कौन पकड़ता। गहनों से तो लदी हुई थी, जिधर से निकल जाती थी छम छम छम की आवाज से कान भर जाते थे।
3: जब गहने बनवाने पर भी निठुराई की, तो यही कहना पड़ेगा कि नारी ही बेवफा होती है।
0: इतने में एक आदमी आकर विमल सिंह से बोला,
2: चौधरी, अभी मुझे एक सिपाही मिला था, वह तुम्हारा नाम, गांव का नाम और बाप का नाम पूछ रहा था। कोई बाबू सुरेश सिंह है।
3: हाँ है, तो मेरे गांव के इलाकेदार और बिरादरी के भाई हैं।
2: उन्होंने थाने में कोई नोटिस छपवाया है कि जो विमल सिंह का पता लगावेगा उसे 1,000 रुपए का इनाम मिलेगा।
3: तो तुमने सिपाही को सब ठीक ठीक बता दिया?
2: चौधरी, मैं कोई गवार हूं क्या? समझ गया, कुछ दाल में काला है, नहीं तो कोई इतने रुपए क्यों खर्च करता। मैंने कह दिया कि उनका नाम विमल सिंह नहीं।

0: जसोदा पांडे है, बाप का नाम सुखू बताया, और घर जिला झांसी में। पूछने लगा, यह कितने दिन से रहता है? मैंने कहा, कोई 10 साल से। तब कुछ सोचकर चला गया, मुझसे कहता था कि ठीक ठीक बता दो तो 50 रुपए मैं तुम्हें दिला दूं। मैंने सोचा, आप तो 1000 की गठरी मारेगा और मुझे 50 रुपए दिलाने को कहता है। फटकार बता दी।
1: मगर जो 200 रुपए देने को कहता तो तुम सब ठीक ठाक नाम ठिकाना बता देते, क्यों दत्तेरे लालची?

0: यूं वाद विवाद चलता रहा। विमल आकर अपनी कोठरी में लेट गया। वो सोचने लगा,
1: अब क्या करो, जब सुरेश जैसे सज्जन की नीयत बदल गई तो अब मैं किसका भरोसा करूं। नहीं, अब बिना घर गए काम नहीं चलेगा। कुछ दिन और ना गया तो फिर कहीं का ना होगा। 2 साल और रह जाता तो पास में पूरे 5,000 हो जाते और शीतला की इच्छा भी पूरी हो जाती। अभी तो सब मिलाकर 3,000 ही होंगे, इतने में उसकी अभिलाषा ना पूरी होगी। खैर, अभी चलो, 6 महीने में फिर लौट आऊंगा। अपनी जायदाद तो बच जाएगी। नहीं, 6 महीने तक रहने का क्या है, आने जाने का 1 महीना लग जाएगा। घर में 15 दिन से ज्यादा न रहूंगा। वहां कौन पूछता है, आऊं या रहूं, मरूं या जीऊं। वहां तो गहनों से प्रेम है।
0: इस तरह मन में निश्चय करके वो दूसरे दिन रंगून से चल पड़ा। संसार कहता है कि गुण के सामने रूप की कोई हस्ती नहीं। हमारे नीति शास्त्र के आचार्यों का भी यही कथन है, पर वास्तव में ये कितना भ्रम मूलक है। कुंवर सुरेश सिंह की नववधु मंगला कुमारी गृह कार्य में निपुण, पति के इशारे पर प्राण देने वाली अत्यंत विचारशीला, मधुरभाषिणी और धर्म भीरु स्त्री थी, पर सौंदर्य विहीन होने के कारण पति की आंखों में कांटे के समान खटकती थी। सुरेश सिंह बात बात पर उस पर झुंझलाते, पर घड़ी भर में पश्चाताप के वशीभूत होकर उससे क्षमा मांगते, किंतु दूसरे ही दिन वही कुत्सित व्यापार शुरू हो जाता। विपत्ति ये थी कि उनके आचरण अन्य रईसों की भांति भ्रष्ट न थे। वो दाम्पत्य जीवन ही में आनंद, सुख, शांति, विश्वास, प्रायः सभी ऐहिक और पारमार्थिक उद्देश्य पूरा करना चाहते थे, और दाम्पत्य सुख से वंचित होकर उन्हें अपना समस्त जीवन नीरस, स्वादहीन और कुंठित जान पड़ता था। फल ये हुआ कि मंगला को अपने ऊपर विश्वास न रहा। वो अपने मन से कोई काम करते हुए डरती कि स्वामी नाराज होंगे। स्वामी को खुश करने के लिए अपनी भूलों को छिपाती, बहाने करती, झूठ बोलती, नौकरों को अपराध लगाकर आत्मरक्षा करना चाहती। पति को प्रसन्न करने के लिए उसने अपने गुणों की, अपनी आत्मा की अवहेलना की, पर उठने के बदले वो पति की नजरों से गिरती ही गई। नित्य नए श्रृंगार करती, पर लक्ष्य से दूर होती जाती थी। पति की एक मधुर मुस्कान के लिए, उनके अधरों के एक मीठे शब्द के लिए उसका प्यासा हृदय तड़प तड़प कर रह जाता था। लावण्य विहीन स्त्री वो भिक्षुक नहीं है जो चंगुल भर आटे से संतुष्ट हो जाए। वो भी पति का संपूर्ण अखंड प्रेम चाहती है, और कदाचित सुंदरियों से अधिक, क्योंकि वो इसके लिए असाधारण प्रयत्न और अनुष्ठान करती है। मंगला इस प्रयत्न में निष्फल होकर और भी संतप्त होती थी। धीरे धीरे पति पर से उसकी श्रद्धा उठने लगी। उसने तर्क किया कि ऐसे क्रूर, हृदय शून्य, कल्पनाहीन मनुष्य से मैं भी उसी का सा व्यवहार करूंगी। जो पुरुष रूप का भक्त है वो प्रेम भक्ति के योग्य नहीं। इस प्रत्याघात ने समस्या और भी जटिल कर दी।
2: कथा सुधा में आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण का पहला भाग। इसमें भाग लेने वाले कलाकार हैं सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, विमल सिंह, जी श्याम, शीतला, पूनम त्रिपाठी, सुरेश सिंह, जयंत पात्रकर, मंगला, ममता सिंह, मजदूर राजेश झा और आदमी दीपक केसावलेकर। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। इस कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए सुनिए कहानी का दूसरा भाग अगले सोमवार कथा सुधा में।
3: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली।

0: 2 जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: हाँ तो मंजू जी, कल सखी सहेली का जन्मदिन है और लड्डू तो हमको कल मिलने ही वाले हैं।
4: बिल्कुल मिलने वाले हैं। हाँ,
3: और हिमानी शिवपुरी हमारी बतौर मेहमान कल आने वाली हैं और उनका सजीव प्रसारण कल
4: जी, और हम लोग मिलकर करेंगे उनका स्वागत और हमारे श्रोता साथ में मिलकर सुनेंगे प्रोग्राम और भेजेंगे बहुत सारी कमेंट्स, विचार,
3: शुभकामनाएं
4: भेजेंगे, तो बड़ा अच्छा लगेगा, सब मिलके एक समय पे इकट्ठे होंगे।
3: हाँ, तो ये कार्यक्रम जो है 3 से लेकर 4 बजे के बीच में होगा। हिमानी शिवपुरी हमारी कल की मेहमान है, लाइव ब्रॉडकास्ट होगा। फेसबुक पेज पर आप बराबर बने रहें और अपने विचारों से अवगत करते रहें और आपको कार्यक्रम कैसा लग रहा है इसके बारे में बताएं, और खासतौर से हमारे जो सखी से की कल वर्षगांठ है उनको शुभकामनाएं देने के लिए आप लगातार हमसे बने रहें, सभी सखी और सखा तैयार होकर,
4: क्योंकि हम लोग भी तैयार होकर कल आएंगे पर्दे बनाने।
3: बिल्कुल, तो हम उम्मीद करते हैं कि सभी लोग तैयार रहेंगे कल। और अब तो समय हो गया है एक अंतराल लेने का। मंजरी, पहले अंतराल लेते हैं और उसके बाद फिर मिलते हैं।

0: हाँ, तो मंजरी बहुत ही सुंदर गीत हमने सुना है,
1: जी
0: और जीवन में जब हम किसी सुंदर चीजों के
1: जी
0: आसपास होते हैं ना, तो जिंदगी थोड़ा आसान भी लगती है।
1: बिल्कुल। और बहुत ही खूबसूरत होते हैं हमारे वो रिश्ते भी जो हमें जन्म देते हैं, जिन्हें हम माता पिता के रूप में जानते हैं।
0: बिल्कुल
1: आँख खुलती है, वो उंगली हम उनकी पकड़ते हैं, उनका स्पर्श सुख पाते हैं
0: जी
1: माता पिता के रूप में, तो वो हमारे लिए बहुत ही अजीज होते हैं, बहुत ही प्यारे होते हैं। और इसीलिए उनको सम्मान देने के लिए वैश्विक अभिभावक दिवस ये जो है मनाया जा रहा है। 17 सितंबर 2012 को संयुक्त राष्ट्र ने 1 जून को वैश्विक अभिभावक दिवस के रूप में घोषित किया। इस दिवस का उद्देश्य माता पिता होने के महत्व और बच्चों के सकारात्मक विकास के लिए आवश्यक सुरक्षा और साधन प्रदान करने में उनकी भूमिका में प्रगति जागरूकता बढ़ाना है। तो कहना चाहिए मंदाकिनी जी, आज के दिन हम अपने माता पिता के लिए एक जश्न जैसा घर में कुछ सेलिब्रेशन करें,
0: करना चाहिए ना।
1: और
0: हाँ,
1: हाँ, उनका सम्मान करें, उनके चरण छुएं, और आप जो भी उनके लिए
0: कर
1: पसंद
0: सकते
1: का
0: हैं।
1: खाना बना
0: हाँ
1: सकते हैं वो बनाए, उपहार में उन्हें चीजें दें, तो देखिए कितना अच्छा लगेगा,
0: बिल्कुल
1: है ना?
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और जो माता पिता के सबसे करीब होते हैं वो हमारे माता पिता ही जो हमारे सबसे करीब
1: जी
0: होते हैं। और
1: जी
0: बच्चा जब घर से कई बातें सीखता है और जैसा अपने माता पिता को करते देखता है, वैसा ही व्यवहार उनकी उसकी आदत में भी आता है। और कहना चाहिए कि माता पिता हमारे पहले शिक्षक होते हैं,
1: जी
0: हमारी पहली पाठशाला होते
1: बिल्कुल
0: हैं, और इसलिए बच्चों के सामने हमेशा कहा जाता है कि अच्छा आचरण करें, ताकि आपके बच्चे भी जब आपको देखें तो वैसे ही बड़े होकर आगे अपना उदाहरण पेश करें।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और ये दिन माता पिता और अभिभावकों के प्रति सम्मान, प्रेम और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए समर्पित है। बच्चे के जीवन में अभिभावकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती, केवल पालन पोषण ही नहीं करते बल्कि उनके जीवन जीने की सही दिशा, संस्कार, अनुशासन और नैतिक मूल्य भी सिखाते हैं। और वो अपने बच्चों के सुख दुख के साथ मंदाकिनी जी हमेशा खड़े रहते हैं, और बच्चे की सफलता के पीछे उसके अभिभावकों का त्याग, मेहनत और समर्पण छिपा होता है। वे अपनी इच्छाओं को पीछे रखकर अपने बच्चों के सपने को पूरा करने का प्रयास करते हैं।
0: हाँ बिल्कुल। और आज की अगर हम बात करें मंजरी, तो आज के आधुनिक समय में बच्चों और अभिभावकों के बीच थोड़ा संवाद कम हो रहा
1: जी,
0: है ना।
1: और उसका कारण भी है मोबाइल।
0: मोबाइल और सोशल मीडिया, ये
1: जी
0: हमारी जिंदगी बन गए
1: जी
0: हैं, है ना। तो रिश्तों में दूरी बढ़ गई है। ऐसे में क्या है कि वैश्विक जो अभिभावक दिवस हमें ये याद दिलाता है कि हमें अपने माता पिता को समय देना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और उनकी भावनाओं को समझना बेहद जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: और ये दिन आज का केवल ये नहीं कि आपने हमें जन्म दिया धन्यवाद कहकर हमने इतिश्री कर दी,
1: नहीं नहीं
0: ये
1: नहीं
0: वो दिन नहीं है, बल्कि अपने रिश्तों को और मजबूत बनाने का ये दिन हमें
1: जी
0: संदेश देता है। और हमें ये समझना चाहिए कि जो हमारे पेरेंट्स हैं उनका प्यार तो निस्वार्थ होता है और उनका स्थान जीवन में सबसे ऊंचा होना चाहिए।
1: बिल्कुल। और मंदाकिनी जी, हम कह सकते हैं कि माता पिता वो छांव है जिसके रहते जीवन की हर धूप हल्की लगती है। उन्हें सुरक्षा, स्नेह और अपनापन में उनसे मिलता है। जैसे तेज धूप में पेड़ की छाया राहत देती, वैसे ही जीवन की कठिनाइयों में माता पिता अपने बच्चों को संभालते हैं। उन्हें उनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से ही बच्चे सही राह पर चलना सीखते हैं। और मंदाकिनी जी, जब पुराने समय की हम बात करें तो उस समय ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, तो घर में सभी सदस्य होते थे, तो माता पिता तो घर बच्चे की देखभाल करते थे, लेकिन दादा दादी हुए, नाना नानी या चाचा चाची, माँ

0: मामी, सब लोग परिवार के जितने भी लोग होते थे, बुआ हो चाहे कोई भी हो, सब लोग बच्चे का ख्याल रखते थे। तो बच्चे कैसे पल जाते थे
1: पता ही नहीं
0: पता ही नहीं चलता था।
1: लगता
0: और बच्चों के अंदर सबके गुण आते थे। कोई कहानी सुनाता था, कोई उनको अलग तरीके बातें सिखाता था, कोई कर्तव्य करना सिखा रहा है तो कोई व्यायाम सिखा रहा है, कोई कह रहा है सुबह जल्दी उठो। तो ये जो रोक टोक का टाकी बच्चों को होती थी सिखाने की, कहना चाहिए, और नियम अनुशासन सिखाने की,
1: बिल्कुल
0: तो उससे बच्चे सीखते थे। और सभी उनके माता पिता के ही समान थे उस समय।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जब हम ज्वाइंट फैमिली में रहते थे तो सभी लोग हम बच्चे की कद्र करते थे, बच्चे का लालन पालन कैसे होता था माता पिता तो को पता नहीं चलता था।
0: जी
1: लेकिन मंजरी आज स्थिति बिल्कुल अलग है, आज हम ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहते हैं,
0: जी
1: जहाँ तक है एकल परिवार हो गए हैं। और ऐसे में बच्चे को जो नौकरी करने वाले माता पिता हैं वो किसी केयर टेकर के उसमें
0: जी
1: छोड़ जाते हैं। और मुझे खुद भी याद है मेरे माता पिता दोनों सरकारी नौकर थे, सरकारी नौकरी करते थे और हमें किसी केयर टेकर के पास छोड़ जाते थे। वो किस तरह से हमारा लालन पालन करती थी ये तो भगवान ही जाने।
0: जी सही
1: और
0: बात है।
1: होता था कि जब माता पिता आते थे बड़े परेशान आते थे, क्योंकि जो केयर टेकर है वो उस तरह से तो नहीं पाल सकती
0: बिल्कुल
1: बच्चों
0: नहीं,
1: को
0: बिल्कुल नहीं,
1: जैसे माता पिता या परिवार के सदस्य
0: सदस्य
1: पालते
0: पालते। और
1: हैं।
0: देखिए हमारे बहुत सारे साथियों ने भी संदेश लिखकर भेजा है। एक लिखते हैं कि माता पिता सिर्फ एक रिश्ता नहीं होता, वो हमारा पहला विद्यालय होते हैं जहाँ से हमारे संस्कारों की नींव गढ़ी जाती है। माँ अगर उंगली पकड़कर चलना सिखाती है तो पिता उंगली छोड़कर संभलना। दुनिया का हर रिश्ता कुछ ना कुछ मांगता है, पर माता पिता वो होते हैं जो अपनी संतान के प्रति जीवन भर निस्वार्थ स्नेह रखते हैं। उनका प्रेम किसी पैमाने पर मापा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। बचपन में उंगली पकड़कर चलना सिखाना, जवानी में परछाई की तरह साथ रहना और वृद्धावस्था में भी संतान के प्रति चिंतित रहना ही उनके निस्वार्थ प्रेम को दिखाता है। बहुत प्यारी सी
1: बहुत
0: बात आपने
1: सुंदर
0: लिखकर
1: बात लिखी
0: भेजी।
1: है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सखी सहेली मंच संभाल रही दोनों बहनों को बहुत सबने नमस्कार लिखते हैं। आज अभिभावक दिवस है, इस दिन विशेष का बड़ा महत्व है। इस दिन का आज के दिन दुनिया के सभी माता पिता के साथ साथ सभी अभिभावकों को बच्चों के लालन पालन के साथ उनकी सुरक्षा और सर्वांगीण विकास के प्रति उनके निस्वार्थ समर्पण और बलिदान के लिए सम्मानित करना है। माता के लिए गुजराती मुहावरा है, माई माँ बाकी बगा वगड़ा नावा, मतलब माँ के बिना सब जग उजड़ा हुआ यानी वीराना सा लगता है।
0: बिल्कुल, बहुत सुंदर सी बात लिखी है। ऐसे ही हमारे साथी लिखते हैं कि आज अभिभावक दिवस पर विशेष बधाई। अभी तो कोई कलम नहीं बनी है जो माता पिता पर कुछ सर्वश्रेष्ठ लिख सके, ये तो ईश्वर के बस की भी बात नहीं। मेरी हर खुशी का रास्ता माँ से होकर जाता है और मुझे दुनियादारी का सबक मेरे माता पिता सिखाते हैं। माता पिता का प्यार इस दुनिया का सबसे निस्वार्थ, पवित्र और अनमोल एहसास है। ये वो पूंजी है जो हमें जीवन के हर कदम पर हिम्मत, सुरक्षा और सही संस्कार देती है। इसके बिना जीवन की कल्पना करना भी असंभव है।
1: वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि माता पिता का ही तो प्यार है जो कभी नहीं बढ़ता, जीवन रूपी खुले आकाश में उन्मुक्त पक्षियों के जैसे उड़ने की सीख और हौसला देने वाले वे ही हैं। रोते रोते हंसा देते हैं, दुनियादारी की बातें समझा देते हैं, उनकी ही दुआ से हम बड़ा नाम करते हैं और इस दुनिया पर राज करते हैं। असफलता में भी मुड़कर मत देखो पर अपनी गरिमा को भी संभाल कर रखो, ऐसी हिदायतें उनसे ही मिलती हैं, उनके आशीर्वाद से बिगड़े काम बन जाते हैं, उनकी सुनाई कहानियों की खुशबू पूरे जीवन भर महसूस करते हैं। और वैश्विक अभिभावक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं ये हमें देते हैं। तो अब एक गीत सुन ले
0: जी।

0: हाँ
1: तो
0: तो
1: देखिए अब हम अगले विषय की ओर बढ़ते हैं। विश्व दुग्ध दिवस है और हम सभी जानते हैं कि बच्चों से लेकर बड़ों तक, बुजुर्गों तक, सभी के लिए, महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए, सभी के लिए दूध बहुत आवश्यक है। और विश्व दुग्ध दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जिसका उद्देश्य वैश्विक खाद्य पदार्थ के रूप में दूध के महत्व को मान्यता देना है। ये दिवस 2001 से प्रत्येक वर्ष 1 जून को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य डेयरी क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों पर ध्यान आकर्षित करने का अवसर प्रदान करता है।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। और मंजरी, विश्व दुग्ध दिवस केवल हम इसे कोई उत्सव के रूप में नहीं मना रहे हैं बल्कि एक आंदोलन है जो दूध को एक महत्वपूर्ण और सुलभ खाद्य स्रोत के रूप में उजागर करता है जो अरबों लोगों का पोषण करता है। और यही दूध आवश्यक पोषक तत्व हमें प्रदान करता है जो हमारी हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए, विकास के लिए और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता भी है।
1: बिल्कुल। और विश्व दुग्ध दिवस की जो इस वर्ष की थीम है, महिला किसानों का सम्मान है। रोजाना दूध पीना स्वास्थ्य के लिए अत्यंत फायदेमंद होता है क्योंकि ये कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन डी और पोटेशियम जैसे आवश्यक पोषक तत्वों को एक बेहतरीन स्रोत है। और ये आपकी हड्डियों को भी मजबूत बनाता है, मांसपेशियों के विकास में मदद करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। कुछ मंदाकिनी जी, कुछ माता पिता ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कुछ बच्चे को परेशानी हुई तो तबीयत खराब हुई तो सीधे वो दूध को ही बोल देते हैं, दूध बंद कर दो, इसका दूध नहीं पिलाना है। तो बच्चों के मुख से दूध छीनना बहुत गलत बात होती है। आप पहले उसका चिकित्सीय इलाज कीजिए, डॉक्टरी इलाज कीजिए कि उसको क्या समस्या है, तब आप सोचिए कि दूध
0: नुकसान कर रहा है या नहीं कर रहा है।
1: कुछ समय तक तबियत खराब है तो दूध आप नहीं ना दें, लेकिन ये नहीं कि आप पूरा जीवन पर्यंत दूध बंद कर दें, ये गलत बात।
0: हाँ ये बिल्कुल गलत है। और हमें डॉक्टर खुद नहीं बनना है ना, चाहे कोई भी, अपना भी डॉक्टर हमें खुद नहीं बनना चाहिए। हमें चिकित्सक की सहायता लेनी चाहिए कि क्या दूध हमें नुकसान कर रहा है, दूध हमारे लिए, कई बार ऐसा हो सकता है कि
1: हाँ,
0: हमारे
1: सकता
0: लिए
1: है।
0: कुछ

0: वो
1: लेकिन
0: कोई दूध नहीं सूट करता तो वो नहीं पीते हैं। लेकिन उसके लिए साइंटिफिक कारण होने चाहिए,
1: बिल्कुल
0: केवल ये नहीं, वहम नहीं होना
1: वहम
0: चाहिए
1: नहीं
0: हमें।
1: होना चाहिए।
0: एक श्रोता लिखते हैं हमारे कि अभिभावक दिवस के साथ साथ आज विश्व दुग्ध दिवस हम मना रहे हैं। दूध एक ऐसी जरूरत है जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए जरूरी है। वैश्विक आहार में दुग्ध का बड़ा महत्व रहा है। इसे संपूर्ण आहार माना जाता है जिसमें कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन और पोटेशियम जैसे शरीर के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, और इसके बिना सुबह की चाय भी नहीं बनती है, आए हुए मेहमानों का स्वागत नहीं होता, और इसके विधिवत उत्पादन के लिए डेयरी उद्योग का एक बड़ा योगदान रहा है। अपनी हड्डियों के साथ साथ डेयरी उद्योग को भी हमें मजबूत बनाना चाहिए।
1: और एक साथी लिखते हैं, दूध भी हमारे जीवन का अभिन्न चीज है, खासकर के मेरे लिए तो है, क्योंकि दूध के बिना मेरी मन पसंद अदरक इलायची वाली चाय नहीं बनती है।
0: अरे
1: ये
0: हमारी तो ये
1: इन्होंने
0: भी चाय के शौकीन है
1: लिखा
0: मंजरी।
1: जी। और एक लिखते हैं, देश में दूध उत्पादन में गुजरात अग्रणी राज्य है, इन्होंने लिखा है। और एक लिखते हैं कि दूध को अक्सर प्रकृति का संपूर्ण भोजन माना जाता है, क्योंकि इसमें मानव के शरीर के लिए आवश्यक लगभग सभी प्रमुख पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और विटामिन का प्राकृतिक संतुलन होता है। दूध में मौजूद प्रमुख पोषक तत्व जो है प्रोटीन, शरीर की मांसपेशियों के निर्माण और मरम्मत के लिए, कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए, विटामिन ए, डी और B12, आंखों, त्वचा, तंत्रिका तंत्र और ऊर्जा स्तर को के लिए ये बेहतर है, वो
0: बिल्कुल
1: बेहतर रखता है कहना चाहिए।
0: बिल्कुल अच्छा लिखा है। और साथ ही एक श्रोता लिखते हैं कि जो दूध है वो भोजन में महत्वपूर्ण तो होता ही है, साथ ही हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि ये बात अलग है कि बहुत लोगों को दूध पसंद नहीं आता, लेकिन दूध को ठंडा पदार्थ के रूप में पीना बहुत लोगों को पसंद होता है, खासकर गर्मियों के दिनों में।
1: बिल्कुल। और मंदाकिनी जी, देखा जाए अगर बच्चे आपके सीधा डायरेक्ट दूध नहीं पी रहे हैं, तो आप सोचिए कि उसमें थोड़ी सी इलायची मिला के हम पिला दें, या फिर आप दूध को खीर में कन्वर्ट कर दें, या चावल की खीर या सूजी की खीर में भी आप कर सकते हैं, या ड्राई फ्रूट्स पीस करके मिला के कुछ चेंज कर करके, या ठंडे शरबत उसमें मिक्स करके भी, आप
0: हाँ
1: गुलाब का शरबत मिलाकर भी आप दूध किसी ना किसी रूप में आप बच्चों को दे
0: पिला
1: सकते
0: सकते हैं।
1: हैं।
0: खासतौर से छोटे बच्चे और किशोरावस्था वाले जो बच्चे हैं ना, ये थोड़ा परेशान करते हैं कि
1: जी
0: मम्मी दूध नहीं पीना है, तो उन्हें दूध को तरह तरीके से करके आप पिला सकते हैं, ताकि फाइनली दूध तो बच्चे के पेट में जाना
1: जाए।
0: ही चाहिए।

0: तो भाई मंजरी दूध की हम बात कर रहे थे और हमारे जो चाय वाले श्रोता हैं, जो हमारे ही जैसे हैं, चाय पसंद करते हैं, चाय मिल जाए और साथ में ये बनारस की मटर मुंगोड़ी वाला निमोना या नमकीन मिल जाए तो फिर कहने ही क्या होते हैं।
1: हमारी सखी ने ये रेसिपी लिखकर भेजी तो हम वही पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश का निमोना मुंगोड़ी या मूंग की बड़ी, उड़द की बड़ी, ताजी हरी मटर, पिसे हुए मसालों और मूंग दाल की मंगोड़ियों से बनने वाली एक बेहद स्वादिष्ट और पारंपरिक करी है। ये उत्तर प्रदेश के घरों में सर्दियों के मौसम में चावल के साथ बहुत चाव से खाई जाती है। इसकी सामग्री इन्होंने लिखी, हरी मटर 2 कप, मुंगौड़ी एक कप, आलू
0: चाहिए आधा कप
1: आलू, 2 लंबे पतले कटे हुए, मसाला पेस्ट इसका है, हरा धनिया, लहसुन की कलियां, अदरक और हरी मिर्च, मिक्सी में पिसा हुआ होना चाहिए ये। और तड़का के लिए आप जीरा, हींग और तेजपत्ता, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक स्वाद के अनुसार और सरसों का तेल लगेगा। और इसको बनाने की विधि है कि मंगौड़ी को और आलू को भून लें, एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम करें, मूंग की मंगौड़ियों को सुनहरा होने तक भूनें और निकाल कर रख लें। उसी तेल में कटे हुए आलू को भी फ्राई करें और अलग रखें, मटर भूनें, बचे हुए तेल में दरदरी पिसी हुई मटर डालें और मध्यम आंच पर 3 से 4 मिनट तक इसे भून लें ताकि मटर का कच्चापन दूर हो जाए। इसे एक प्लेट में निकाल कर लें, कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालें जिसमें हींग जीरा तड़का लगाएं। अब कटा बारीक प्याज, हरा धनिया, लहसुन वाला मसाला पेस्ट डालकर तब तक भूने जब तक तेल अलग ना होने लगे। भुनी हुई मटर, साबुत मटर, तले हुए आलू और मंगौड़ी डालें, सभी को अच्छी तरह मिला और इसमें आवश्यकता अनुसार गर्म पानी और नमक डालें। कढ़ाई को ढककर धीमी आंच पर 10 से 15 मिनट तक पकने दें जब तक कि मंगौड़ी और आलू पूरी तरह से नरम ना हो जाए। अंत में ऊपर से गर्म मसाला छिड़कें। आपकी गर्मा गर्म यूपी स्पेशल मंगौड़ी और निमोना तैयार है।
0: क्या बात है, बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने इसको तैयार किया है और मुझे लगता है कि बहुत ही स्वादिष्ट होता होगा मंजरी।
1: बिल्कुल, क्योंकि मटर और मंगौड़ी दोनों ही बहुत स्वाद से भरपूर होती है और मेरी तो बहुत फेवरेट है।
0: बिल्कुल, और मैं धनिया वाला जो मट्टी है ना, धनिया वाली मट्टी, उसके बारे में बताना चाहती हूँ। अगर हमारे श्रोता पसंद करती हैं सखियाँ, वैसे तो उन्हें बनाना आता होगा पर मैंने भी इसको बना के देखा था, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कैसे बनेगी ये। आप मैदा ले लें 2 कप, हरा धनिया ले लें, कटावा साबुत धनिया ले लें और 2 चम्मच कुटी हुई साबुत धनिया ले सकते हैं, घी ले सकते हैं तेल मोयन के लिए, जीरा ले लें, 1/6 चम्मच अजवाइन ले लें और काली मिर्च ले लें और दरदरी कुटी हुई नमक और तेल तलने के लिए और साथ में पानी। अब आप स्वादानुसार ये सब चीजें ले सकते हैं कम या ज्यादा, क्योंकि मैं आपको जो बताऊंगी हो सकता है आप उसे ज्यादा पसंद करते हो। फिर आटा को तैयार करें। एक बड़े बर्तन में मैदा ले लें, इसमें जीरा, अजवाइन, साबुत धनिया, कुटी हुई काली मिर्च, नमक और मोयन और पिघला हुआ घी 1/4 कप डाल सकते हैं या तेल डालें। सभी चीजों को हाथों से अच्छी तरह से मिला लें ताकि मैदा में मोयन अच्छे से रच बस जाए और उसके बाद बारीक कटी हुई हरी धनिया डालकर उसको मिला लें। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक सख्त आटा आप गूंथ लें। आटे को 15 से 20 मिनट के लिए गीले कपड़े से ढककर आप रख दें। फिर आटे को थोड़ा मसल लें और फिर उसमें से छोटी छोटी लोइयां तोड़ लें। अब एक लोई को हथेली से दबाकर चपटा करना है, इसे ज्यादा नहीं पतला करना है, ना बेलना नहीं है। एक फिर दबाकर कांटे की मदद से मट्टी के दोनों तरफ थोड़ा छेद कर लें 5-6 और इसको गर्म गर्म तेल में तलें और धीमी आंच में तलने के बाद जो कुरकुरी मटरी निकल के आएगी ना, वो गर्मा गर्म चाय के साथ तो
1: गीत सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल सुनते हैं।

0: और अब मंजरी सखी सहेली कार्यक्रम का वक्त तो खत्म हो चला है, इस कार्यक्रम से हम इजाजत लेते हैं। तो कार्यक्रम समाप्त करने की मंदाकिनी जोशी और
1: मंजरी वर्मा को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।
1: कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: विविध भारती के स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं।
1: जाओ जाओ जल्दी जाओ डॉक्टर को बुलाओ, नब्ज दिखाओ, मेरा हाल बताओ।
0: जाने माने डेंटिस्ट डॉक्टर जयेश खूखी।
2: दांतों का जमाना, प्यारे दांत बचाना, कोई तोड़ दे या टूटे तो पास हमारे आना।
0: इनसे बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने।
1: जाओ जाओ जाओ किसी वैद्य को बुलाओ।
0: सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। हाल ही में डेंटिस्ट डे मनाया गया और इस मौके पर आज हमारे साथ हैं मुंबई के डेंटिस्ट डॉक्टर जयेश घुगे। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब आपका।
3: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं अपनी तरफ से आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे यहाँ पे आज न्योता दिया गया। मुझे बहुत खुशी होगी कि आज मैं डेंटिस्ट्री के बारे में, दांतों के बारे में लोगों के साथ रूबरू हो पाऊंगा, बहुत सारी जो मिथ्स है उनके ऊपर से हम लोग पर्दा उठा पाएंगे।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, दांतों को लेकर बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारे लोगों के मन में खाम ख्यालियां हैं, गलत मान्यताएं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस बातचीत की शुरुआत हम करते हैं दूध के दांतों से।
3: ठीक है,
0: जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अपने दांत होते हैं जो बड़े मायने रखते हैं, लेकिन अमूमन परिवार में उनके टूटने का इंतजार किया जाता है कि ये दांत निकल जाएंगे।
3: हाँ जी,
0: तब जो दांत आएंगे वो असली दांत होंगे।

0: जरा इसके बारे में तफसील से बताइए।
1: जैसे आप जानते हैं कि बच्चा जब 2 साल का हो जाता है तब उसके दूध के दांत आने चालू हो जाते हैं। 2 से 2.5 साल तक दूध के दांतों की ग्रोथ पूरी हो जाती है, ठीक है। दूध के दांत होते हैं 20, टोटल मिला के 20 दांत होते हैं। दूध के दांतों का फंक्शन क्या होता है या फिर उनका काम क्या होता है? नॉर्मली लोगों का ये मानना होता है कि दूध के दांत हैं गिर जाएंगे तो वो सड़ जाए, गल जाए, और आजकल ये चीजें बहुत ज्यादा हो रही है क्योंकि जंक फूड बच्चों को इजीली अवेलेबल हो रहा है, प्लस बच्चों को पॉकेट मनी अच्छी मिलने लग गई है तो चॉकलेट्स वगैरह बच्चे इजीली खा लेते हैं, तो उनको सड़न वगैरह बाकी के इश्यूज दांतों के बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अभी दूध के दांतों का मेन फंक्शन क्या होता है कि अपने जबड़े की साइज मेंटेन रखना। जितना जबड़ा काम करेगा खाना चबाने के लिए उतने बाजू के मसल्स जो होते हैं वो काम करते हैं और उस तरीके से उसकी ग्रोथ होती है, जबड़े की हड्डी बढ़ती है, ताकि जो पक्के वाले दांत आएंगे तो वो बड़े साइज के होते हैं तो उनके लिए जगह बनाए, प्लस उनको डायरेक्शन दिखाए, जो दांत बनते हैं पक्के वाले नीचे वो एक सही तरीके से अपनी पोजीशन में आ जाए, उसको वो रास्ता दिखाने का काम जो है वो दूध के दांत करते हैं। तो इसके लिए दूध के दांत अगर खराब है आपके तो पक्के वाले दांत खराब होने की आपकी जो संभावना है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दूध के दांत अगर जल्दी गिर जाए, इवन लेट भी गिर जाए, अगर उसमें टाइम लग जाए गिरने में, तो भी जो पक्के वाले दांत आएंगे, परमानेंट दांत आएंगे, वो आड़े टेढ़े ही आएंगे। दूध के दांतों में सबसे बड़ी चीज है कि नेचुरली दूध के दांतों में एक स्पेसिंग होता है, जिसको टर्मिनोलॉजी, अगर मैं डेंटल टर्मिनोलॉजी बताऊं तो उसको फिजियोलॉजिकल स्पेसिंग कहा जाता है। तो वो जरूरी है। और वो क्यों होती है? क्योंकि आने वाले दांत, जो परमानेंट दांत आने वाले होते हैं, वो सारे डायमेंशन में, चौड़ाई में, लंबाई में बड़े होते हैं। तो वो जगह, जो फिजियोलॉजिकल स्पेसेस है, वो जगह उनकी चौड़ाई से भर दी जाती है।
0: अच्छा,
1: जिन बच्चों में या फिर जो दूध के दांत है उनके बीच में अगर उतनी जगह नहीं होगी, जबड़े की साइज अगर छोटी है पहले से ही, तो कुछ ट्रीटमेंट्स किए जा सकते हैं बचपन में ही, ताकि जबड़े की साइज नॉर्मली बढ़े। घरेलू तौर पे हम लोग अगर कुछ कर सकते हैं तो नॉर्मली कड़क चीजें आजकल जो अवेलेबल होती है वो होती है कड़क चकली, सूप स्टिक्स, या फिर कड़क बूंदी के लड्डू। वो कड़क चीजें मायने नहीं रखती है। जैसे गाजर, जो अपनी पारंपरिक चीजें हैं, गाजर हो गया, मूली हो गया, ककड़ी हो गया, उसको बिना उबाले कच्चा खाओ, ताकि जो नेचुरल एक्सरसाइज है जबड़े की होनी चाहिए वो होती है और नेचुरल ग्रोथ अपने आप नॉर्मल रहती है। ये एक चीज है।
0: लेकिन बच्चे तो ये चीजें खाते ही नहीं है।
1: बच्चे बच्चे हैं, वो तो जिद करेंगे। उनको खिलाना, उनको उन चीजों का महत्व समझाना, वो पेरेंट्स का काम है
0: जी,
1: ठीक है। इसके लिए पेरेंट्स को थोड़ा सतर्क होना जरूरी है कि बच्चा अपना क्या खा रहा है, क्योंकि उसकी बॉडी की पूरी डेवलपमेंट उसके न्यूट्रिशन पे डिपेंड करती है। एक चीज, अगर दांतों की बात करूं तो खाने की पाचन क्रिया जो है मुंह में चालू होती है। अगर मुंह में कैविटीज है, मतलब बैक्टीरियल ग्रोथ है, कीटाणु मुंह में है, तो वो खाने के साथ मिक्स होंगे और वो कहां जाएंगे?
0: पेट में।
1: पेट में जाएंगे तो पेट की बीमारियां, बार बार लूज मोशंस होना बच्चों को, कॉन्स्टिपेशन होना, डाइजेशन के प्रॉब्लम्स, ना सिर्फ बच्चों में, बड़ों में भी फ्रीक्वेंट एसिडिटी प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें हैं। इवन अगर जनरलाइज में बताऊं, ना सिर्फ बच्चों के केस में, लॉन्ग टर्म कैविटीज कैन कॉज यू हार्ट प्रॉब्लम्स ऑल्सो एंड ब्रेन प्रॉब्लम्स ऑल्सो। बैक्टीरियल डिसीजेस हार्ट के भी हो सकते हैं, क्योंकि वो जो बैक्टीरिया हम लोग खा रहे हैं वो अपने खून में मिक्स होने वाले हैं। वो खून में मिक्स होंगे, वो कहीं ना कहीं पे तो जाके लॉज करेंगे और उस जगह की वो बीमारियां फैलाएंगे।
0: अच्छा, ये जो दूध के दांतों की आपने बात की, तो जब बच्चे अपने तरीके से ब्रश करने लायक हो जाते हैं तब से माँ बाप को किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए और किस तरह की आदतें बच्चों में डालनी चाहिए?
1: सबसे पहली बात, ब्रशिंग कब चालू होना चाहिए ये लोगों को पता ही नहीं है। ब्रशिंग मुंह में जैसे ही पहला दांत दिखता है तब से चालू हो जानी चाहिए
0: जी।
1: उसके पहले, मतलब 6-8 महीने तक तो कोई दांत आते नहीं है, उसके बाद ही दांत आने चालू होते हैं। तो उसके पहले, मतलब दांत आने से पहले भी मसूड़े क्लीन करना जरूरी है, मसूड़ों की मसाज करना जरूरी है, ताकि आने वाले दांत जो है वो इजीली आए, बच्चों को तकलीफ ना हो। क्योंकि दांत जो आ रहा है हड्डी में से आ रहा है, वो हड्डी को सेपरेट कर रहा है, मसूड़ों को सेपरेट कर रहा है, तो वो सेपरेट करने के लिए मसूड़ों की अगर मसाज होती रही तो वो इजीली सेपरेट होंगे, और उसको मसाज करने के लिए एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। अपनी उंगली से आप मसाज कर सकते हो बच्चे के मुंह में, और वो भी ज्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट दिन में 1 या 2 बार, ये बहुत है। दूसरी बात, जब माँ दूध पिलाती है बच्चे को तो उसके बाद उनका मुंह क्लीन करना जरूरी है, क्योंकि दूध में जो शुगर्स होती है वो जो दांत आते हैं उनको खराब कर सकती है। अभी उस मुद्दे पे मैं आ रहा हूँ कि दांत आने के बाद कैसे ख्याल रखना है, कि जैसे ही पहला दांत मुंह में दिखना चालू हुआ, उंगली में पहनने वाले ब्रश आते हैं, आप वो यूज कर सकते हो, या फिर सिंपल एक गौज होता है, गौज पीस, कॉटन की तरह, जो हम लोग नॉर्मली जख्मों पे पट्टी लगाते हैं जो बांधी जाती है, गौज पीस बोला जाता है, वो स्टराइल गौज पीसेस मिलते हैं मेडिकल शॉप में। अगर बच्चे का मुंह उतना नहीं खुल रहा या फिर बच्चा ब्रश को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो आप वो सिंपल गौज पीस को पानी में डुबा के गीले गौज पीस से दांत को साफ कर सकते हो उंगली से।
0: छोटे बच्चों की,
1: छोटे बच्चों की, एकदम, हाँ एकदम छोटे बच्चों के लिए, जिनके 1 या 2 दांत या 4 दांत आए हुए हैं। फिर धीरे धीरे दांत जैसे बढ़ते जाएंगे

0: तो उंगली में ब्रश जो मैं बोल रहा हूँ वो आप यूज कर सकते हो। अभी उसमें 0 to 3 ईयर्स मतलब बचपन पैदा होने से लेके 3 साल तक एक अलग टूथपेस्ट आता है, जो बच्चे इंजेस्ट करे खा ले तो भी कोई उनको तकलीफ ना हो।
1: बिल्कुल
0: उसकी जो बनावट रहती है वो उस तरीके से की जाती है। 3 से 9 से 10 साल तक अलग टूथपेस्ट आती है जिसमें फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होती है। फ्लोराइड की मात्रा क्यों जरूरी है? क्योंकि दांतों में बनने वाली कैविटीज को रोकना, दांतों की बेसिकली इम्यूनिटी अच्छी रखना फ्लोराइड करता है, दांतों की ग्रोथ अच्छी रखना फ्लोराइड करता है। तो इसके लिए 3 से 10 साल की उम्र तक एक अलग टूथपेस्ट आता है। 10 साल के बाद वो जो स्टेज होता है उसको बोलते हैं मिक्स डेंटिशन, जहां पे आधे दांत दूध के होते हैं आधे होते हैं परमानेंट के, तो मिक्स डेंटिशन बोला जाता है। तो वो स्टेज चलती है और परमानेंट दांतों का डेवलपमेंट लगभग चलता है 16 साल तक। तो 10 से 16 तक एक अलग टूथपेस्ट यूज किया जा सकता है या फिर होता है, और 16 के बाद आप कोई भी टूथपेस्ट पे शिफ्ट कर सकते हो। तो बेसिकली बच्चों में 2 टाइम ब्रशिंग, जैसे आपने सवाल पूछा अभी कि बच्चों को कैसे समझाया जाए, पहले तो उनको बचपन से ही ये उंगली वाले ब्रश से अगर आप ट्रेनिंग लगाओगे तो उनको आदत पड़ेगी कि ब्रशिंग करना जरूरी होता है। वो साइकोलॉजिकली उनमें वो डेवलपमेंट होगी कि हाँ ब्रशिंग इज मैंडेटरी, 2 टाइम ब्रशिंग इज मैंडेटरी, ठीक है। उसके बाद समझ लीजिए 3 से 4 मिनट ब्रशिंग करना होता है, उससे ज्यादा ब्रशिंग की जरूरत नहीं होती है। हाँ अभी मुद्दा निकला ही है तो मैं यहाँ पे ये भी बात क्लियर करना चाहूंगा कि एक टूथब्रश कितने दिन यूज करे,
1: ये हम सभी के मामले में करें, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो।
0: बच्चे हो या बड़े हो, 1.5 से 2 महीने के बाद अपना टूथब्रश चेंज करना है, ठीक है। वो भले कितना भी अच्छा दिखे, नॉर्मली अपना इंडियन मेंटेलिटी है जब तक वो ब्रिसल्स है ब्रश के
1: टेढ़े मेढ़े ना हो जाए,
0: टेढ़े मेढ़े घस ना जाए या फिर वो अलग अलग आकार ना ले ले, तब तक हम लोग चेंज नहीं करते। बट ऐसा नहीं होता है, माइक्रो ब्रिसल्स रहते हैं वो, उनमें माइक्रो क्रैक्स आ जाते हैं, उनकी एक लाइफ होती है। मतलब आपने कुछ टूथब्रश ऐसे सुने भी होंगे या देखे भी होंगे, उनके ऊपर कलर इंडिकेटर दिया जाता है अभी ब्रिसल्स में कि वो फेड हो जाए या फिर इसका कलर चेंज हो जाए, तो आपने ब्रश को चेंज करना है। तो उसका भी टाइम फ्रेम उतना ही होता है कि 1.5 से 2 महीने तक आपका वो उसका कलर चेंज हो जाता है या फेड हो जाता है, जो कुछ भी है, तो तब आपको वो चेंज करना होता है। अभी वापस बच्चों की बात करें तो 2 टाइम ब्रशिंग मैंडेटरी होता है। अभी बच्चों को जैसे हमने बात की कि जंक फूड इजिली मिल रहा है, क्रेविंग करते हैं बच्चे, स्कूल्स भी अभी ज्यादा पार्टीज होती है, बर्थडे पार्टीज होती है, तो वो चीजें खिलाए नहीं खिलाए, बच्चे हैं उनका खाना हक बनता है, लेकिन उसको खाने का एक तरीका होना चाहिए। ये जो खाना मैं बात कर रहा हूँ वो सारा जंक फूड, स्टिकी फूड,
1: चॉकलेट,
0: चॉकलेट
1: आइटम,
0: स्वीट्स, तो उनके लिए अगर आपके बच्चों के केस में नॉर्मली कैविटीज नहीं है तो हफ्ते में 3 से 4 दिन आप उनको दे सकते हो, लेकिन उसका एक टाइम फ्रेम होना चाहिए, 15 मिनट का विंडो। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग की बात बता रहा हूँ। आपके घर में जितनी बड़ी थाली हो, परात बोलते हैं कोई लोग, बड़ी से बड़ी थाली हो, वो थाली पूरी भर के सजा दो उनके सामने जो चीजें उनको पसंद है। उसमें बिस्किट्स आ गए, चॉकलेट्स आ गए, वेफर्स आ गए, 10 पैकेट आपके चिप्स के आ गए, कुछ भी, सब उसके सामने रख दो बच्चों के सामने, और उनको बोलो कि ये 15 मिनट है आपके पास, जैसे खाना है वैसे खाओ, फिर दोनों हाथों से खाओ, दोनों पैरों से खाओ, थाली में बैठ के खाओ या थाली सर पे रख के खाओ, चलेगा। लेकिन 15 मिनट के बाद वो सब उठा के रखना है, 15 मिनट के बाद उनको इमीडिएटली ब्रश करवाना है।
1: ओके,
0: सो नॉर्मल 2 टाइम ब्रशिंग प्लस ये तीसरा वाला ब्रशिंग जंक फूड के बाद, इससे कैविटीज नहीं होते हैं, एक चीज। दूसरी चीज, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग बच्चों का ऐसे होता है कि हमें घर पे सारी चीजें मिल रही है
1: तो हमको कहीं बाहर
0: क्रेविंग
1: नहीं,
0: नहीं होता है। बाहर इजीली जो बच्चे अट्रैक्ट हो जाते हैं या फिर कोई देता है तो तुरंत खाने के लिए जिद करते हैं, तो वो क्रेविंग चली जाती है। हाँ, जब आप ये उठा के रख रहे हो तो ऐसी जगह पे रखना कि एक डब्बा रहे जो उनको दिखे, एक्सेसिबल ना हो, इजीली वो पहुंच ना पाए, नहीं तो आप सो जाओगे, वो वापस खाने बैठ जाएंगे।
1: बिल्कुल,
0: तो ये चीज अपने को ध्यान देनी है।
1: डॉक्टर साहब, यहाँ एक गाने की बारी है, फिर आगे की बातें करते हैं।
0: हाँ जी,
1: तो बताइए आपको कौन से गायक बहुत पसंद है?
0: मुझे पुराने गायक पसंद है, सबसे ज्यादा पसंद है मुझे किशोरदा जी, किशोर कुमार जी।
1: क्या बात है, तो पहला गाना कौन सा चुन रहे हैं आप?
0: पहला गाना मुझे अभी जो याद आ रहा है, ओ साथी रे, मुकद्दर का सिकंदर।
1: क्या बात है, सुनते हैं।

0: ये गाना हमने सुना, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, ऐसा लग रहा था जैसे ये दांतों के लिए कहा जा रहा हो, क्योंकि क्योंकि दांत अगर नहीं हो तो जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाए। दांतों की समस्या लोगों को तब समझ में आती है जब समस्या सामने आती है, यानी जब दर्द होता है तब डॉक्टर नजर आता है। यहाँ हम बात करेंगे कैविटी की,
1: हाँ जी,
0: कि कैसे कैविटी बनती है और व्यक्ति को सावधान कब हो जाना चाहिए, तब नहीं जब असह्य दर्द हुआ और डॉक्टर साहब के पास गए कि डॉक्टर साहब जल्दी से ठीक कर दो।
1: तो ये समझने से पहले मैं आपको दांत का नेचुरल स्ट्रक्चर कैसे होता है ये थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। कुदरती तौर पे वैसे तो पूरी बॉडी ही इतनी खूबसूरती से बनाई गई है, तो दांतों के स्ट्रक्चर के बारे में मैं अगर बताऊं तो दांत में एक नस होती है। नस के ऊपर एक पार्शियली मिनरलाइज्ड 60% मिनरलाइज्ड लेयर होता है, उसको बोलते हैं डेंटिन। सबका डेंटिन का कलर येलोइश टू ब्राउनिश होता है।
0: अच्छा,
1: उसके ऊपर कोटिंग आती है एनामल की।
0: हाँ।
1: डेंटिन की थिकनेस होती है 4 से 6 mm तक। उसके ऊपर रहती है 2 से 4-5 mm तक इनामल की थिकनेस।
0: ठीक है,
1: तो अभी जो नस है उसके जो सिरे हैं वो डेंटिन तक आए हुए रहते हैं, इनामल में कोई भी नस का सिरा नहीं आया है।
0: बिल्कुल।
1: इसके लिए कैविटी जब स्टार्ट होती है, बैक्टीरियल ग्रोथ जब स्टार्ट होती है, तब कभी दर्द नहीं होता है। दांतों में एक ब्राउनिश स्पॉट या फिर ब्लैक स्पॉट दिखाई देता है।
0: ओके।
1: कभी कभार खाना फंसता है तो हम लोग उसको निकाल देते हैं, टूथपिक से, पिन से, जो कुछ भी मिले उससे निकाल देते
0: लेकिन
1: हैं।
0: नस तक,
1: नस तक अभी तक पहुंचा नहीं है।
0: जी
1: लेकिन धीरे धीरे वो बैक्टीरिया अंदर बढ़ेंगे, जब डेंटिन तक पहुंचेंगे, नसों के एंड तक पहुंचेंगे, तब कभी कभार पानी पी लिया, ठंडे पानी पे झिंझिनाहट हो रही है, या फिर स्वीट खाया तो जब तक वो स्वीट का असर है तब तक झिंझिनाहट हुई, उसके बाद चला गया, तभी भी हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं,
0: बिल्कुल
1: नजरअंदाज करते हैं। लेकिन वही चीज जब आगे बढ़ के नस तक पहुंच जाती है, तो नस एक ऐसा एरिया होता है कि दांतों की संवेदनाएं ब्रेन तक पहुंचाता है, और दांतों को खून का सप्लाई रखना, दांतों को न्यूट्रिशन देना नसों से ही होता है। तो जब वो नस तक पहुंच जाता है तब जाके असहनीय दर्द जो

0: बोलते हैं वो तब होना चालू होता है.
1: जिसकी हमने चर्चा की,
0: एग्जैक्टली
1: डॉक्टर साहब मर गए बचा लो।
0: हाँ जी. उसमें भी कुछ लोग काउंटर सेल पे जो मेडिसिन मिलते हैं मेडिकल में जाके दर्द की दवाई ले लेते हैं, चला लेते हैं. अभी वो नस सड़ गई है.
1: हाँ
0: नस सड़ने के बाद नीचे हड्डी के नीचे सेप्टिक जमना चालू होता है, उसको
1: अरे
0: डेंटल
1: बाप रे,
0: एब्सेस बोलते हैं.
1: ये बहुत खतरनाक है।
0: यस. फिर कोई दवाई भी असर नहीं करती है, तब जाके डॉक्टर को याद किया जाता है और तब जाके लोगों की नींद खुलती है कि हमें दांतों की समस्या है या फिर दांतों का ध्यान हमें रखना चाहिए. यहाँ पे मैं और एक चीज कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों में ना एक मिथ है कि मुंह में जितना दांत दिखता है ना उतना ही दांत होता है, पर
1: अच्छा,
0: असलियत ऐसी नहीं है. असलियत जितना मुंह में दांत दिखता है उसका कम से कम 1.5 गुना दांत अंदर
1: नीचे की
0: होता
1: तरफ
0: हो,
1: होता है।
0: हड्डी में
1: हाँ
0: बैठा होता है, जबड़े की हड्डी में, तभी हम लोग सारी चीजें चबा पाते हैं. नहीं तो अगर सिर्फ इतना सा दांत होता तो हम लोग जितनी चीजें खा रहे हैं आज, जिस तरीके की चीजें खा पी रहे हैं, वो जरा भी पॉसिबल नहीं था, मुमकिन ही नहीं था. तो ये मिथ लोगों ने थोड़ा तोड़ लेंगे अपना तो ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे, कि दांत मुंह में दिखता है उतना नहीं होता है, उससे 1.5 गुना दांत अंदर होता है. मतलब सिंपली अगर इस चीज को मैं समझाऊं तो बिल्डिंग जितनी बाहर दिखती है उसका पाया उतना नीचे गहरा होता है,
1: बिल्कुल
0: तब
1: बिल्कुल,
0: जाके वो खड़ी रह पाती है.
1: सेम बात है।
0: सेम बात यहाँ पे है. फिजिक्स का बेसिक प्रिंसिपल है कि बेस अगर स्ट्रांग रहेगा तो ऊपर का स्ट्रक्चर काम करेगा, वही प्रिंसिपल यहाँ पे लागू होता है. तो ये चीज है. तो ये कैविटीज जब नस तक पहुंच गई है, नीचे एब्सेस बना रही है, तब जाके दवाई असर नहीं कर रही, तब लोग जाते हैं डॉक्टर के पास. अभी जैसे मैंने बोला कि कैविटी शुरुआत में स्टार्ट होती है, बैक्टीरियाज की वजह से होती है. ये बैक्टीरियाज कहाँ से आते हैं? तो बॉडी में बहुत तरीके के बैक्टीरियाज होते हैं, लेकिन अपने मुंह में और अतड़ियों में, इंटेस्टाइन्स में, बहुत सारे तरीके के, मतलब मैं तो ये बोलूंगा कि दुनिया में जितने अवेलेबल बैक्टीरियाज है उतने सारे तरीके के बैक्टीरियाज अपने इंटेस्टाइन में और मुंह में अवेलेबल है. लेकिन उसमें से कुछ बैक्टीरियाज बेनिफिशियल होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज हार्मफुल होते हैं, मतलब नुकसानदायी होते हैं. तो जब ये हार्मफुल बैक्टीरियाज बढ़ जाते हैं तब सड़न बढ़नी चालू होती है, क्योंकि वो सर्वाइव करते हैं कैल्शियम पे एंड हाइड्रोक्सीएपेटाइट क्रिस्टल्स, जो इनामल का स्ट्रक्चर है, फाउंडेशन स्ट्रक्चर इनामल का, उसको गला के वो अपना कैल्शियम की नीड पूरी करते हैं. और ये कब होता है? दांतों पे चिपका हुआ कोई भी खाना कैविटी बना सकता है लंबे समय तक. हम लोग स्वीट्स को या चॉकलेट्स को जल्दी दोष दे देते हैं. हाँ, उसका कारण भी है वैसे, क्योंकि स्वीट्स खाने के बाद में नॉर्मली जो अपनी थूक है, सलाइवा है, उसका पीएच वो होता है 7.2 to 7.4, लेकिन जब हम लोग स्वीट्स खाते हैं तो इट ड्रॉप्स, वो कम हो जाता है इमीडिएटली विद इन 5 मिनट्स, 5 मिनट के अंदर वो 4 से 5 के बीच में आ जाता है. मतलब न्यूट्रल रीडिंग होता है पीएच का 7, मतलब वो चीज ना एसिडिक है ना अल्कलाइन है. नॉर्मली सलाइवा अपना अल्कलाइन होता है, तो जब वो एसिडिक बन जाता है तो एसिडिक एटमोस्फियर में जो बैक्टीरियाज ग्रो होते हैं वो दांतों को गलाने के लिए, या फिर वो हार्मफुल बैक्टीरियाज है, वो खुद को सर्वाइव करने के लिए दांतों को गलाना चालू कर देते हैं.
1: और ये हम खुद इस तरह का माहौल बनाते हैं दांतों में।
0: एग्जैक्टली. नॉर्मली ये तभी होता है जब आप ब्रश नहीं कर रहे हो, या फिर स्वीट्स खाए हैं, टेस्ट अच्छा लग रहा है तो बहुत देर तक उसको मुंह में ऐसे ही घोलते
1: हाँ
0: बैठे हो.
1: जी,
0: रात में नॉर्मली जब हम लोग ब्रश नहीं करते हैं या फिर खाना खा के तुरंत सो जाते हैं, तो अपना जो थूक है, सलाइवरी सिक्रीशन है, वो भी कम हो जाता है. नहीं तो सुबह तक, वो भी कुदरती देन है, वो फंक्शन वैसा है, नहीं तो सुबह तक अपना तकिया पूरा सलाइवा से भर जाएगा.
1: बिल्कुल,
0: ठीक है, तो वो सिक्रीशन कम होता है, तो इसकी वजह से जो सलाइवरी एंजाइम्स रहते हैं जो इम्यूनिटी का काम करते हैं वो भी कम हो गए. सलाइवा का दूसरा काम होता है कि वॉश आउट करना, नेचुरल रिंसिंग देना दांतों को, तो वो भी नहीं हो पाता है. इसके लिए रात में जो लंबा समय, 8 से 10 घंटे हम लोग जब सोते हैं, तब ये बैक्टीरिया जल्दी ग्रो करते हैं. इसके लिए रात में ब्रश करके सोना जरूरी होता है.
1: हाँ, बिल्कुल, और सुबह उठते ही ब्रश
0: ब्रश
1: करना
0: करना
1: बहुत
0: जरूरी
1: जरूरी
0: होता
1: है.
0: है.
1: डॉक्टर साहब, बातें ओरल हाइजीन की चल रही हैं और आपने बहुत सारी बातें बताई कि किस तरह से कैविटी पैदा होती है और बाकी तमाम चीजें हैं. आज हम देख रहे हैं कि पुरानी पीढ़ी के दांत बड़े मजबूत देखे गए हैं. हमारी दादी नानियां कड़क से कड़क चीज, मतलब
0: सही,
1: आपने गाजर और ककड़ी को कड़क कहा, उससे कहीं ज्यादा कड़क चीजों को मजे
0: अखरोट
1: से,
0: जैसे.
1: अखरोट जैसी चीजों को, गन्ने को मजे से छील के खा ले रही.
0: हाँ जी,
1: आज के बच्चों में तो वो, उनके दांतों में वो दमखम दिख ही नहीं रहा है. तो मुद्दा ये है कि क्या आज का समाज दांतों को लेकर कम अवेयर है और हम कमजोर दांतों वाले जमाने में आ गए?
0: अभी इसका एक्सप्लेनेशन मैंने जैसे पहले भी बताया था वैसे ही आएगा यहाँ पे, कि प्रॉब्लम ये हो चुका है ना कि ज्यादा पका हुआ खाना खाने की आदत बन चुकी है, सॉफ्ट खाना खाने की आदत बन रही है लोगों की, जिसकी वजह से मसल्स और जॉ बोन, हड्डी जो होता है जबड़े का, उतना स्ट्रांग बन ही नहीं पा रहा
1: जैसे पहले के बुजुर्गों का है.
0: एग्जैक्टली. क्योंकि वो कच्चा खाना खाते थे, खेतों में चलते चलते उनका गन्ना चूसने का काम होता था, गन्ना दांतों से छील के खाने का काम होता था, उनका खाना उतना फाइबरस था, फाइबर्स बोलते खाने में, बेसिक है. मतलब जैसे जिम जाते हैं हम लोग मसल्स बढ़ाने के लिए, वहां क्या करते हैं हम लोग, मसल्स को एक्स्ट्रा ट्रेन करते हैं, एक्स्ट्रा उसकी काबिलियत से ज्यादा उसके ऊपर लोड डाला जाता है, तब जाके मसल एक्स्ट्रा बड़ा बनता है.

0: फेशियल मसल्स का होता है, जो चबाने वाले मसल्स हैं उनमें भी वही चीज है, जितना काम आप उनको दोगे उतना वो बनेंगी। और ये चीज अगर डेवलपमेंटल स्टेज में हो तो ज्यादा अच्छा है। बट हम लोग, मैं ये नहीं बोलूंगा कि लोगों का अवेयरनेस कम हो रहा है, पैम्परिंग ज्यादा बढ़ गया है, बच्चों का पैम्परिंग ज्यादा बढ़ गया है। मतलब अगर हमारे भी बचपन की बात करें तो पेरेंट्स ये बना है ये खाना पड़ेगा,
1: बिल्कुल
0: ये रूल होता था घर का। आज ऐसे होता है, मतलब मेरा बच्चा भी छोटा है अभी, तो हमारे घर पे भी ऐसा होता है बहुत बार, लेकिन मैं खुद वहां पे एक विलन का रोल ले लेता हूं कि नहीं ये नहीं होना चाहिए।
1: ये तो खाना ही पड़ेगा।
0: हाँ जी, तो नॉर्मली आजकल खाना

0: मुझे लग रहा है। भी इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, एक आध साल पहले की बात है या फिर बहुत बार हुआ है वैसे, लेकिन ये एक एपिक पेशेंट मेरे क्लिनिक में आए थे जो मैं कभी भूल ही नहीं सकता हूँ। 5 साल की बच्ची को लेके आए थे, दांतों में कैविटीज थे, मसूड़ों में सूजन थी, मतलब उसका एब्सेस बन गया था अंदर, इतना उसका इन्फेक्शन फैला हुआ था। उसके पिताजी उसको लेके आए थे, मैंने देखा, चेक किया, ट्रीटमेंट बताया, उन्होंने सुना, सुनने के बाद उन्होंने बच्ची को पूछा, बेटा आपको करवाना है? अभी 5 साल की बच्ची को क्या पता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है, जिसने पहली बार दांतों का दवाखाना देखा है। तो मैंने उनको पूछा कि आप उसे क्यों पूछ रहे हो, वो तो छोटी है, उसको क्या समझेगा क्या अच्छा क्या बुरा। लेकिन उनका जवाब बहुत यादगार था मेरे लिए कि नहीं, आजकल बच्चों को पूछना पड़ता है।
1: ओहो,
0: अभी इतना बच्चों को पूछ के अगर आप जियोगे, तो मैंने उनको भी ये चीज हंसते हुए बोल दी थी कि ये थोड़े दिनों बाद आपको नहीं पूछेगी।
1: बहुत सही है, बहुत सही है।
0: तो ये जो दुलार है ना,
1: ये बहुत नुकसानदेह है।
0: हाँ, मतलब एक लिमिट तक होना चाहिए। इसके लिए मैंने बोला ना कि पेरेंट्स को समझना चाहिए कि कहाँ प्यार करना है और कहाँ थोड़ा स्ट्रिक्ट होना है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, यहाँ एक गाने की बारी है, उसके बाद
0: अच्छा,
1: हम रूट कैनाल की बात करेंगे।
0: श्योरली। तो अभी किशोरदा का ही गाना सुनेंगे, मेरे नैना सावन भादो,
1: क्या बात है, महबूबा
0: क्योंकि
1: फिल्म
0: दांतों
1: का
0: में
1: गाना।
0: दर्द होता है तो नैनों से तो सावन
1: हाँ
0: बरसना
1: हाँ
0: ही है।
1: हाँ सुनते हैं।

0: नस अंदर होती है, उसके ऊपर डेंटिन होता है, उसके ऊपर इनामल होता है। तो जब सड़न नस तक पहुंची है तब जाके रूट कैनाल करना पड़ता है। रूट कैनाल में बेसिकली क्या किया जाता है कि जो आपकी नस सड़ रही है उसको साफ किया जाता है, और उसकी जगह पे नकली नस बोल सकते हो आप उसको, या फिर आर्टिफिशियल मटेरियल का फिलिंग किया जाता है,
1: यस
0: जिसकी वजह से दांतों का सेंसेशन तो चला ही जाता है बट उसका ब्लड सप्लाई भी काफी हद तक कम हो जाता है।
1: यस
0: इसके लिए रूट कैनाल करने के बाद कैप लगाना मैंडेटरी हो जाता है।
1: जी
0: क्यों? क्योंकि एक तो दांत का स्ट्रक्चर कमजोर हो रहा है, ब्लड सप्लाई कमजोर हो रहा है, मतलब जो न्यूट्रिशन मिल रहा है दांतों को वो भी कम हो रहा है, और तीसरी बात, जितना बड़ा गड्ढा होता है उतना बड़ा सीमेंट वहां पे टिके रहना मुश्किल होता है। चौथी बात यह है यहाँ पे कि नस तो चली गई,
1: बिल्कुल
0: सेंसेशन चली गई, तो जब वापस उसमें अगर कैविटी लगेगी तो पेशेंट को भी पता नहीं चलेगा और दांत टूट जाएगा। अभी दांतों के ट्रीटमेंट्स कैसे होते हैं और किस तरीके से किए जा सकते हैं, सबसे पहली बात तो होती है नॉर्मल सफाई करना। जब आपके दांतों में सड़न नहीं है लेकिन दांतों पे कुछ परत दिख रही है आपको, तो उसको साफ कर लो। उसके बाद आता है फिलिंग करना। जैसे मैंने बताया कि शुरुआती दौर में कैविटी दांतों में एक ब्राउन स्पॉट या काला स्पॉट की तरह दिखती है, या फिर कभी कभार थोड़ा बहुत खाना फंस रहा है, उसी वक्त अगर उसको ट्रीट किया जाए तो सिंपल ट्रीटमेंट होता है कि उसको साफ किया जाता है, फिर वो गड्ढा बनता है उसमें सीमेंट भरा जाता है। अभी ये दांतों के स्पेशल सीमेंट्स होते हैं, कुछ लोगों का मिथ यहाँ पे ये भी है, और ये मॉक डेंटिस्ट या फिर स्ट्रीट डेंटिस्ट जो होते हैं वो ये चीज करते भी है कि बहुत बार दांतों में एक्रेलिक भर के दे देते हैं।
1: अरे बाप रे,
0: एमसील भरे हुए दांत देखे हैं मैंने,
1: अरे बाप रे,
0: व्हाइट सीमेंट भरा हुआ देखा हुआ है, जिसकी वजह से फिर कुछ केसेस में ऐसा हुआ है कि वो दांत तो चला ही गया, जबड़े का हड्डी भी गल गया, और उसकी वजह से आजू बाजू के भी दो दो तीन तीन दांत निकालने पड़े।
1: ओहो
0: और ये होता है सस्ते के चक्कर में, जब लोग भागते हैं सस्ते में हमारा काम हो रहा है। सीधी सी बात है, दुनिया में आज हर कोई बिजनेस करने बैठा हुआ है। अगर कोई चीज 10 रुपए की बन रही है तो बनाने वाला उसको 15 रुपए की या 20 रुपए की बेचेगा,
1: बिल्कुल
0: वो डिस्ट्रीब्यूटर वहां से लेगा, वो अपना मार्जिन जोड़ेगा, और फिर उसके बाद वो डॉक्टर के पास आ रही है या फिर पेशेंट के पास जा रही है, तो हर एक का मार्जिन जुड़ के अगर वो 10 रुपए की चीज आपको कोई 9 रुपए में ऑफर करे तो सीधी सी बात है उसकी बनावट में कुछ खोट है, खामियां है, कुछ भी है, मतलब बनावट खराब है। डेंटिस्ट्री मतलब बहुत सारी फील्ड्स ऐसी है शरीर के मामले में कि जहां पे हम लोग शरीर में कुछ चीजें डाल रहे हैं जो एक्सटर्नल है, पर अगर वो शरीर से सुसंगत नहीं होंगी, शरीर के मुताबिक नहीं होंगी, तो शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा।
1: और लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि
0: एग्जैक्टली
1: दांतों में कितना ज्यादा प्रेशर पड़ता है, तो उस चीज का मजबूत होना कितना जरूरी है।
0: एग्जैक्टली मतलब अगर यहाँ पे नंबर वाइज मैं बताऊं
1: हाँ
0: तो
1: वही
0: वन
1: मैं जानना
0: ट्वेंटी
1: चाहता हूं।
0: दांतों का जो नॉर्मल हमारा बाइटिंग फोर्स रहता है इट इज
1: हाँ
0: रेंजिंग फ्रॉम 110 to 130 पास्कल, दैट इज न्यूटन सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर पे 130 न्यूटन का प्रेशर हम लोग डालते हैं। ये नंबर वाइज
1: ये बहुत ज्यादा
0: बहुत
1: है।
0: ज्यादा है। तो ट्रीटमेंट्स पे हम लोग थे, तो पहले तो फिलिंग हो गया, उसके बाद फिलिंग प्लस कैप होता है, ये बच्चों में भी होता है और बड़ों में भी होता है। ये कब किया जाता है? जब कैविटी से दांत का ऊपर का स्ट्रक्चर अच्छा खासा सड़ गया है लेकिन वो नस तक नहीं पहुंचा है, तो उतना बड़ा सीमेंट लोड नहीं ले पाएगा जितना हम लोग फोर्स की बात कर रहे थे अभी, तो वो सीमेंट को रिटेन करने के लिए, उसको एक स्ट्रक्चर रखने के लिए उसके ऊपर कैप लगाया जाता है।
1: यस
0: फिर तीसरा ट्रीटमेंट आता है रूट कैनाल। जब नस छू गई है, नस इन्फेक्ट हो गई है या फिर नस के नीचे इन्फेक्शन हुआ है, फिर उसमें दो तीन बार नस के एरिया की सफाई की जाती है, पूरी सड़न साफ करके नस तक एक्सेस लिया जाता है, नस के एरिया की सफाई की जाती है, दवाई डाली जाती है ताकि जो बैक्टीरियाज अंदर चले गए वो मर जाए, खत्म हो जाए, और वो पूरा एरिया असेप्टिक बने। फिर उसको पूरा स्टराइल करके, मतलब फिलिंग करने से पहले भी अलग अलग दवाइयां डालते हैं हम लोग उसमें ताकि वो पूरा एरिया स्टराइल हो जाए, डिसइन्फेक्ट हो जाए, और फिर हम लोग फिलिंग करते हैं। फिलिंग करते वक्त हम लोग इन चीजों का भी ध्यान रखते हैं कि जो पहले वाला फिलिंग या फिर सीमेंट निकाला हुआ है वो कहीं पे भी टच ना हो, या फिर थूक भी अपनी टच ना हो उसको, क्योंकि थूक में भी बैक्टीरियाज
1: बैक्टीरिया
0: होते
1: होता
0: हैं
1: है
0: जैसे हमने
1: जी।
0: बात की, तो वो भी वहां पे टच ना हो, ये ध्यान हम लोग रखते हैं। फिर उसके बाद फिलिंग करते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर कैप लगाई जाती है, और आखिरी ट्रीटमेंट होता है दांत निकालना, जबकि पूरा ही दांत टूट चुका है या फिर बहुत ज्यादा सड़न बढ़ चुकी है। जैसे बड़ी चौबर होती है पीछे वाली, उनकी दो या तीन जड़ें होती है, वो जड़ों के बीच में क्रैक आने लग गया है, उस सिचुएशन में रूट कैनाल भी असर नहीं करता है, तब दांत निकालना पड़ता है। अभी यहाँ पे एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा कि दांत निकालने के बाद बच्चों में भी एक चीज होती है जिसको बोला जाता है स्पेस मेंटेनर, और बड़ों में एक चीज की जा सकती है, दांत बिठाने की जरूरत होती है। मुंह में एक इकलौता दांत ऐसा है जिसको बोलते हैं अक्कल दांत, विजडम टूथ, वो अगर निकाल दिया जाए और ना बिठाया जाए तो चलता है, क्योंकि नेचुरली भी जब हम लोग मुंह बंद करते हैं तो विजडम टूथ बहुत सारे केसेस में, मतलब मैक्सिमम केसेस में वो टच होता ही नहीं ऊपर नीचे, तो खाना चबाने का एज सच कुछ फंक्शन नहीं होता उसका, ना दिखने में वो काम में आता है, तो इसके लिए वो दांत ना बिठाए तो चलता है। लेकिन उसे छोड़ के बाकी कोई भी दांत अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो उसे बिठाने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अभी ये क्यों

0: डॉक्टर साहब, रूट कनाल ट्रीटमेंट आजकल बहुत लोगों को कराना पड़ता है और दांतों को लेकर एक जरूरी ट्रीटमेंट है जब सड़न हो जाती है। क्या इससे बचा जा सकता है? किन मामलों में, किन सावधानियों के जरिए और कब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है?
1: जैसे मैंने आपको दांत का स्ट्रक्चर अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया कि

0: होती है।
1: बिल्कुल,
0: नॉर्मली लोगों का सवाल आता है कि क्यों बिठाना है, मैं तो खा
1: इसके
0: पा रहा
1: बिना भी
0: हूं,
1: चल सकता है।
0: इसके बिना भी मेरा चल रहा है, क्योंकि एक ही साइड का एक दांत निकाला हुआ, पीछे की चौबर तो है, आगे के दांत है, दूसरे साइड में मेरे सब फाइन है। सबसे पहली बात ये होती है कि नॉर्मली जब हम लोग दांतों पे प्रेशर देते हैं, तो जैसे हमने बोला कि उसकी 1.5 गुना जड़ें अंदर होती है, वो जड़ों के द्वारा हड्डी में फोर्स पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता है। जो दांत के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है वो पूरे जबड़े के हड्डी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये उसका फंक्शन है। बॉडी की एक जनरल टेंडेंसी होती है कि जो भाग हम लोग यूज नहीं करते हैं, बॉडी वहां पे न्यूट्रिशंस वेस्ट नहीं करती है। इसका एक क्लासिक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं यहाँ पे, तो किसी का हाथ अगर प्लास्टर में है, समझ लीजिए किसी वजह से फ्रैक्चर हुआ है प्लास्टर में, 1.5-2 महीने बाद जब प्लास्टर निकाला जाता है, तो आपने भी देखा होगा कि वो हाथ उतना मजबूत नहीं दिखता है जितना उसका पहले था। क्यों? क्योंकि उतना फंक्शन वो कर ही नहीं रहा था 1.5-2 महीने तक। वहां पे न्यूट्रिशंस की सिर्फ जरूरत थी उस घाव भरने के लिए, वो हड्डी भरने के लिए उतने ही न्यूट्रिशंस पहुंचाए जाते हैं। तो वही होता है जबड़े की हड्डी के मामले में,
1: अच्छा
0: जब दांत निकल गया वो हड्डी का फंक्शन खत्म हो गया, तो हड्डी गलना चालू हो जाता है।
1: हाँ
0: वो गलते गलते इतना गल जाता है कि आजू बाजू के दांतों का भी हड्डी गल जाता है। एक चीज ये होती है। दूसरी चीज, आगे का दांत पीछे झुक जाता है, पीछे का दांत आगे झुक जाता है, ऊपर वाला दांत नीचे आता है, या नीचे वाला दांत एंटी ग्रेविटी ऊपर चढ़ जाता है, क्योंकि बॉडी ट्राइज टू रेस्टोर इट्स फंक्शन।
1: ओके,
0: खाना खाना तो चालू ही है, बॉडी को सिग्नल्स मिल ही रहे कि यहाँ पे खाना चबाया जा रहा है,
1: तो वो
0: तो
1: बैलेंस
0: वो
1: करे।
0: बैलेंस करने के लिए जो दांत अवेलेबल है उनको वो एडजस्ट करने की कोशिश करती है।
1: ओके,
0: एक दो दिनों में ये चीज नहीं होती है, टाइम लगता है, लेकिन ये सब जब होता है और जब पेशेंट की नींद खुलती है, तब उनके आजू बाजू के दांत भी खराब हो चुके होते हैं।
1: इसलिए डॉक्टर के पास जितने जल्दी हो सके, डेंटिस्ट के पास समस्या से पहले पहुंचना चाहिए।
0: सही बात है। और इसके लिए सिर्फ ज्यादा कुछ नहीं करना है, डेली आप अगर ब्रश कर रहे हो ना, तो उसी टाइम पे ब्रश होने के बाद मुंह में सिर्फ अपने झांकना है 1 मिनट के लिए, कि कहीं कुछ गलत तो नहीं दिख रहा, कहीं कुछ और तो नहीं दिख रहा, और अगर दिख रहा है, नॉर्मल ब्रशिंग से नहीं निकल रहा है वो चीज, तो एक बार डेंटिस्ट का ओपिनियन लिया जाए।
1: ठीक बात है।
0: इतनी सी बात होती है, पर हमारा अभी लाइफस्टाइल इतना स्पीड वाला हो गया ना कि उतना भी वक्त हमारे पास नहीं है, और जब तक प्यास लगती नहीं है हम लोग कुएं के पास जाते नहीं
1: जाते
0: है।
1: नहीं है। डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि आप गुनगुनाते भी हैं और गाने का शौक रखते हैं।
0: हाँ जी, शौकिया तौर पे रखता हूँ, मैं खुद को गायक नहीं मानता हूँ,
1: जी
0: बट हाँ कभी कभार छोटे मोटे घरेलू जो गेट टुगेदर होते हैं वहां पे हम लोग गा लेते हैं।
1: तो हमारे लिए भी गाइए।
0: ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ।
1: जी
0: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
1: क्या बात है, सुनते हैं ये गाना।

0: डॉक्टर साहब,
1: जी
0: जिंदगी एक सफर तो है, लेकिन जब दांतों का दर्द होता है तो इंसान बहुत सफर करता है। ये
1: सही
0: दूसरा वाला सफर जो है ये बड़ा खतरनाक है। माँ बाप दो बातों से परेशान रहते हैं, एक बच्चों के टेढ़े मेढ़े दांत और दूसरे बाहर निकले हुए दांत। इन दोनों के लिए कुछ ना कुछ उपाय करने की कोशिश करते हैं। मैं देखता हूँ चारों तरफ ब्रेसेस लगे हुए बच्चे नजर
1: हाँ
0: आते
1: जी,
0: हैं,
1: हाँ
0: ये
1: जी।
0: सब क्या मामला है?
1: जैसे हमने बात की कि जब जबड़े की ग्रोथ बराबर नहीं होती है
0: हाँ,
1: तब दांतों को आने के लिए जगह नहीं होती है, परमानेंट दांत बड़े होते हैं तो वो जैसे जगह मिलती है वैसे अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, तब दांत आड़े टेढ़े हो जाते हैं।
0: अच्छा,
1: अभी आड़े टेढ़े दांत क्यों नहीं होने चाहिए? नॉर्मली लोग एक चीज समझते हैं कि एस्थेटिक वाइज दिखने के लिए वो ज्यादा अच्छा नहीं दिखता है, या फिर ज्यादा आगे है तो इसके लिए वो सोचते हैं कि हमें ट्रीटमेंट की जरूरत है। लेकिन इसका और एक प्रॉब्लम होता है आगे चल के, क्या होता है ना, दांतों के ऊपर ही नहीं दांतों के बीच में भी गैप्स होते हैं नॉर्मली। वो गैप्स में जब खाना फंसता है, और अगर आपके दांतों के अरेंजमेंट ठीक नहीं है तो आपको फंसा हुआ खाना समझ में भी नहीं आता है,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: उसकी वजह से कैविटीज ज्यादा बढ़ जाते हैं, इसकी वजह से दांतों के प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ते हैं और वो व्यक्ति परेशान रहता है जिंदगी भर कि मेरे दांतों में हमेशा प्रॉब्लम ही होती है। दूसरी बात, हाँ हमने ब्रशिंग की बात की, यहाँ पे एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि दांतों के बीच के एरिया को साफ करने के लिए कोई भी ब्रश आज तक बना नहीं है, उसके लिए बना है लेकिन जब गैप्स उतने बड़े हो, उसको प्रोक्सा ब्रशेस बोला जाता है, तो वो डिपेंड करता है कि गैप कितना है, बट नॉर्मली जो टचिंग होते हैं दांत या फिर जो नॉर्मल गैप्स होते हैं जहां पे खाना फंस रहा है वो नॉर्मल ब्रशिंग से नहीं निकलता है, तो उसके लिए करना पड़ता है फ्लॉस।
0: फ्लॉस के लिए वो
1: धागा आता है,
0: धागा
1: नाइलॉन का
0: आता है।
1: धागा रहता है, इसको फ्लॉस ही बोला जाता है, अलग अलग कंपनियां बनाती है उसको, उसमें भी दो तीन टाइप के आते हैं, आपके लिए कंफर्टेबल रहे वो आप कीजिए, ये मेरी सलाह रहेगी यहाँ पे। अभी आड़े टेढ़े दांतों की बात करेंगे, आगे आए हैं एस्थेटिकली अच्छे नहीं दिखते हैं, तो ब्रेसेस, यस इट इज द सोल्यूशन। अभी तो ब्रेसेस में बहुत सारे एडवांसमेंट्स आए हुए हैं, अलाइनर्स करके चीज आई हुई है जो पूरे ट्रांसपेरेंट ब्रेसेस होते हैं कि पहना है व्यक्ति ने कुछ समझ में नहीं आता है, जिसको अलाइनर्स बोला जाता है। तो अभी उसमें भी कैसा है कि बनाने वाली कंपनीज बहुत है लेकिन अच्छा प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनीज बहुत कम है, और प्रोडक्ट जब तक अच्छा नहीं है तब तक रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि ये पूरा डिजिटल प्रोग्रामिंग होता है, स्कैन किया जाता है आपके जबड़े का पूरा,
0: जी
1: और वो प्रोग्राम बताता है कि वो सेट्स कितने लगेंगे अलाइनर्स के, फिर हर सेट आपको 15 से 20 दिन पहनना होता है,
0: हाँ
1: तब जाके कुछ चेंज होता है दांतों में अरेंजमेंट में, तब दूसरा सेट पहनना होता है। अभी ये निकालने पहनने वाली चीज है, इसकी सबसे बड़ी खामी भी यही है और अच्छाई भी यही है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि खामी मैं इसके लिए बोल रहा हूं क्योंकि नॉर्मली लोग निकाल के भूल जाते हैं वापस पहनना, वो भले निकालने पहनने वाली चीज हो लेकिन उसको दिन में 20 से 22 घंटे पहनना जरूरी होता है, वो सिर्फ ब्रशिंग के टाइम पे या खाना खाने के टाइम पे आप निकाल सकते हो, बाकी टाइम आपको पहन के रखना है, पहन के बात करनी है, पहन के सोना है, वैसे भी वो दिखता नहीं है, तो मोस्ट कंफर्टेबल थिंग। पर अभी भी कुछ चीजें हैं जो अलाइनस से नहीं की जा सकती, जैसे ज्यादा ही कॉम्प्लिकेशंस है, तो उसके लिए फिर हम लोग हाफ ब्रेसेस से करते हैं और हाफ अलाइनस से ट्रीटमेंट कर देते हैं कि हाँ नॉर्मल पे आ गया फिर हम लोग अलाइनस पे शिफ्ट करेंगे। इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन योर बजट, बाकी फाइनल रिजल्ट जो आपको चाहिए होता है वो सब में आता है, सेम ही आता है, ये डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है, आपकी चॉइस क्या है। जितनी एस्थेटिक चीजें आप लोगे जो ना दिखे या फिर दिखने में ज्यादा खूबसूरत हो तो वो थोड़ी महंगी जाती है, और जितना सिंपल लुकिंग चीज रहेगा या फिर थोड़ा और दिखने के लिए होगा, जैसे नॉर्मली आप मेटल के ब्रेसेस देखते हो, स्टील के ब्रैकेट्स लगाए हुए होते हैं, वो एक सस्ता ऑप्शन है, क्योंकि मैं खुद पर्सनली पेशेंट्स को कभी सजेस्ट नहीं करता हूं कि महंगे वाली चीज के लिए जाइए आप, अनलेस एंड अनटिल उनका प्रोफेशन डिमांड ना कर रहा हो या फिर लेट वो ब्रेसेस कर रहे हैं, मतलब बड़े उम्र में कर रहे हैं, तब मैं सजेस्ट करता हूं कि आप इनविजिबल चीजों में जाइए। पर यंग बच्चा है जहां पे एस्थेटिक उसके कंसर्न नहीं है उतने, तब हम लोग नॉर्मली सस्ते वाले ब्रेसेस में भी जाने का ऑप्शन दे देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है दांतों की अरेंजमेंट ठीक हो जाती है, तो कहीं पे खाना फंस रहा है नहीं फंस रहा है वो सारी चीजें क्लीन रहती है और जबड़े की हड्डी की ग्रोथ अच्छी रहती है। लॉन्ग टर्म में अगर आपके दांत आड़े टेढ़े हैं, आड़ा टेढ़ा प्रेशर पड़ रहा है उनके ऊपर, भले आप नॉर्मल खाना पीना भी खा रहे हो और फिर भी आड़ा टेढ़ा प्रेशर पड़ रहा है, तो फिर भी आपका हड्डी कमजोर हो जाता है, हड्डी गल जाता है,

0: उसको ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन बोला जाता है, मतलब नॉर्मल बाइट की वजह से ट्रॉमा हो रहा है दांतों पे और वो हड्डी गल रही है।
1: ओके
0: तो ये सारी चीजें आप ब्रेसेस से ठीक कर सकते हो, ये चीज है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, कई लोग होते हैं जिनके मुंह से बहुत ज्यादा बदबू आती है, दांतों की बहुत सड़न होती है, पुराने जमाने से एक बहुत बड़ी समस्या पायरिया रही है,
0: हाँ जी
1: इसकी बात करते हैं और उसके बाद उन मरीजों की बातें करेंगे जिनको पूरा डेंचर बदलने की जरूरत पड़ती है, एक्सट्रीम केसेस की बात उसके बाद करेंगे।
0: चलेगा। तो आपका पहला सवाल है पायरिया के बारे
1: पायरिया
0: में।
1: का,
0: पायरिया जो चीज होती है, एक्चुअली ये बीमारी है जबड़े की हड्डी और मसूड़ों की,
1: अच्छा वो दांतों की बीमारी नहीं
0: दांतों
1: है।
0: की बीमारी नहीं है। ये
1: ओहो
0: पहले समझने वाली बात है। सबसे बुरी बात पायरिया की ये है, स्पेशली इंडियन पॉपुलेशन के लिए, कि इसमें मैक्सिमम लोगों को दर्द होता ही नहीं है। बहुत सारे केसेस में तो एक्सट्रीम बुरा हो जाता है, तभी भी दर्द नहीं होता है। लोग सिर्फ इतना बोलते कि दांत अपने आप हिलने लग गए और अपने आप गिर गए।
1: ओके
0: अपने आप कभी दांत नहीं हिलता है। आप खुद सोचिए कि जितना दांत मुंह में दिख रहा है उससे 1.5 गुना दांत अंदर हड्डी में बैठा हुआ है। वो हड्डी जब गलेगी तब
1: तब
0: उसका
1: तो
0: सपोर्ट
1: जाके
0: जाएगा,
1: यस
0: तब दांत हिलेगा।
1: ये
0: तो
1: लंबा
0: हड्डी
1: मामला है।
0: वो एक दिन में होता नहीं है। पायरिया का बीमारी एक दिन में होता नहीं, उसके भी 4 स्टेजेस है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 बोलते हैं हम लोग, उसमें टेक्निकल चीजें हैं। लेकिन ये क्यों होता है, तो दांतों के ऊपर जो परत जमती है, अभी इसमें जो काम करते हैं वो बैक्टीरियाज अलग है, दांतों को सड़ाने वाले बैक्टीरियाज अलग है, उसके डिटेलिंग्स में मैं नहीं जाऊंगा, कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी चीजें। पर ये जो परत जमती है दांतों के ऊपर, खाने की परत समझ लो या फिर कोई भी स्वीट की परत है, उसमें बैक्टीरियाज पनपने चालू हो जाते हैं, स्पेशली जहां पे आप ब्रश नहीं कर रहे हो। या फिर बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि नॉर्मल लोगों को एक ही साइड से खाना चबाने की आदत होती है, तो दूसरे साइड में सलाइवरी सिक्रेशन कम होता है, तो वहां पे भी ये परत जमना चालू हो जाता है। तो उस परत में जो बैक्टीरियाज जमते हैं उनका भी खाना होता है कैल्शियम, वो मसूड़ों में से अंदर जाके हड्डी से कैल्शियम लेना चालू करते हैं, तब जाके हड्डी गलती है। तो इसमें पायरिया जो बड़ा टर्म है उसको 2 टर्म्स में डिवाइड किया जाता है, एक जिंजिवाइटिस और फिर होता है पेरियोडोंटाइटिस। दांत और हड्डी इनके बीच में एक लिगामेंट होती है जिसको बोलते हैं पेरियोडोंटल लिगामेंट, वो लिगामेंट की बीमारी होती है पेरियोडोंटाइटिस। तो ये जो बैक्टीरियाज है वो कहां से जा रहे हैं, दांतों के ऊपर जमी हुई परत से ही जा रहे हैं। तो वही चीज यहां पे ध्यान रखनी जरूरी होती है, जैसे मैंने बोला कि जो चीज आपके ब्रश से साफ नहीं हो रही है तो उस चीज के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। उसको वक्त रहते ही आपने साफ कर लिया तो बहुत सारे केसेस में ग्रेड 1 वाली स्टेजेस पे हो तो सेल्फ रिपेयरिंग चीज है, उसके लिए कोई ज्यादा मेडिसिन भी नहीं देने पड़ते, सिर्फ साफ करना पड़ता है और अपने आप बॉडी ठीक कर लेती है उसको। अभी पायरिया जब होता है तो उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, एक मसूड़े में सूजन दिखना, अगर आप देखोगे तो समझ में आएगी, नॉर्मली लोगों के पास देखने के लिए वक्त है नहीं, वो आगे चल के मुंह से बदबू आना।
1: हाँ ये थोड़ा विजिबल साइन है एक तरह
0: एग्जैक्टली
1: से।
0: ये विजिबल साइन है, लेकिन इसको भी लोग नजरअंदाज करते हैं क्योंकि अपने मुंह की बदबू अपने आप को नहीं आती है,
1: लेकिन वो एक सोशल डिलेमा बन जाता है।
0: सोशल डिलेमा बन जाता है अगर खुद को आई तो, अगर आप उस बारे में अवेयर हो,
1: हाँ
0: नहीं
1: लोग
0: तो
1: आपसे दूर जाने लगते हैं।
0: हाँ नहीं तो आपको पता ही नहीं चलता। और नॉर्मली कोई आके खुल के आपसे ये बोलेगा नहीं कि भाई साहब आपके मुंह से बदबू आ रही है, इजीली बोलेगा नहीं, अनलेस एंड टिल आपका उस बंदे के साथ या बंदी के साथ उतना क्लोज रिलेशनशिप ना
1: कनेक्शन
0: हो,
1: हो जी।
0: ठीक है। फिर उसके बाद में आगे होता है कि कभी कभार ब्लीडिंग होना चालू होता है मसूड़ों में से,
1: हाँ जी
0: ब्रश करते वक्त खून आ गया, फिर उसके बाद चालू होता है दांत हिलना। ये एक स्लो पॉइजन है बॉडी में, मतलब ये बहुत कॉमन है। अभी कल की बात है, मेरे एक दोस्त के पिताजी के 4 दांत गिर गए, बोले शुक्रवार को गिरे हैं, मुझे कल फोन आया तो मैंने पूछा कैसे गिरे, अपने आप गिर गए।
1: कितना नॉर्मल है ना।
0: कितना नॉर्मल है। आपको अभी जो आगे की चीज है कि पूरा डेंचर वगैरह, उसमें जब हम लोग जाएंगे तो मैं आपको समझा दूंगा कि कितनी महंगे दांत हैं
1: बिल्कुल
0: जो हमें फ्री मिले हैं, इसके लिए हम लोग उसकी कदर नहीं कर रहे, ऐसा मुझे बहुत बार लगता है, जिसके लिए मुझे बुरा लगता है।
1: यस
0: या फिर पूरे शरीर की ही कीमत आप लगा लो, रिपेयरिंग की कीमत लगा लो, तो करोड़ों में जाती है, कई
1: बिल्कुल
0: 100 करोड़ों में जाती है,
1: यस
0: लेकिन हम लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि फ्री में मिला हुआ है,
1: बिल्कुल
0: उल्टा उसको बर्बाद करने वाली चीजों पे हम लोग खर्चा करते हैं। फिर उसमें वो सुपारी आ गई, पान आ गया, अभी मुंह के बारे में बात कर रहे तो
1: वो
0: एक
1: सारी
0: वो
1: चीजें
0: सारी
1: भी,
0: चीजें आई,
1: तंबाकू,
0: तंबाकू,
1: स्मोकिंग।
0: स्मोकिंग, और बहुत यंग एज में बहुत गंदी हालत देखी हुई है मैंने
1: दांतों की
0: दांतों की, ओवरऑल मुंह की, मसूड़ों की, जबड़ों की। मतलब बहुत बार मैंने जो पेशेंट को लाइन बोली है मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा, 25-30 साल की उम्र है लेकिन उनका दांत का कंडीशन होता है 60-65 साल की उम्र के बुड्ढों की तरह,
1: अरे अरे
0: तो उनको भी मैं ये समझा देता हूँ। और ये नॉर्मली हैबिट्स जब होती है तभी होता है,
1: बिल्कुल
0: और जब ये पेशेंट मेरे पास ट्रीटमेंट मांगते हैं तो मैं उनसे एक ही चीज मांगता हूँ कि आप अपनी हैबिट बंद कर दो, मैं बाकी की सारी चीजें रिपेयर करने की जिम्मेदारी ले लेता हूँ। लेकिन अगर आप अपनी हैबिट चालू रखोगे तो कुछ भी आप कर लो, आप पूरा पैसा डाल के आप अपना भी वक्त खर्चा करोगे, मेरा

0: भी करवाओगे, मेरी मेहनत भी लगवाओगे, लेकिन बाद में बर्बादी आप करोगे। तो इसके लिए जो फ्री मिला है उसकी थोड़ी वैल्यू कर लो,
1: बिल्कुल
0: ये
1: बिल्कुल।
0: सजेशन मैं यहां दूंगा।
1: इसी
0: हाँ
1: बात पर एक गाना सुनते हैं और उसके बाद वो डेंचर वाली बात करते हैं।
0: सही है। तो हम यहां पे सुनेंगे, यहां पे दाद बोलेंगे कि हम बेवफा हरगिज न थे
1: वाह, पर हम वफा कर न सके क्योंकि आप
0: क्योंकि
1: हमारी केयर
0: आपने
1: कर न सके।
0: एग्जैक्टली
1: क्या बात है, सुनते हैं।
2: हम

0: डॉक्टर साहब, बहुत एक्सट्रीम केसेस की अब हम बात करना चाहते हैं। जो आपने कहा कि इतने महंगे दांत हैं और फ्री में मिले हैं तो हम कदर नहीं करते, इसको जरा तफसील से बताइए कि कितने लाखों रुपए लोग खर्च करते हैं अपने दांतों को वापस लाने के लिए, जब पूरा डेंचर बदलना पड़ता है।
1: हाँ जी, अभी जैसे हमने बात की कि एक दांत भी अगर आपका निकला है तो उसको इमीडिएटली रिप्लेस करवाना चाहिए, क्योंकि उसका फंक्शन रेस्टोर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
0: बिल्कुल
1: ठीक है, तो वैसे ही ऑप्शंस क्या क्या है उसके, पहले तो ये बताऊंगा मैं कि वहां पे मुंह में दो ही कड़क स्ट्रक्चर है जिनके ऊपर हम लोग सपोर्ट लेके परमानेंट वाला फिक्स दांत दे सकते हैं। एक तो खुद दांत अपने, या फिर हड्डी जिसमें दांत बैठे हुए, जबड़े की हड्डी। तो दांतों के ऊपर सपोर्ट लेके जो चीज की जाती है उसको बोलते हैं ब्रिज। जैसे बीच में एक दांत नहीं है तो आगे के एक दांत को छोटा किया जाता है, पीछे के एक दांत को छोटा किया जाता है, और तीन दांत तीन
0: लेवल में लाए जाते हैं।
1: एग्जैक्टली, और तीन कैप एक साथ बिठाए जाते हैं, जिस चीज को बोलते हैं ब्रिज, क्योंकि जो बीच वाला है वो ब्रिज है।
0: करेक्ट,
1: दो दांतों के सपोर्ट पे। ये हो गया एक ऑप्शन। अभी उसमें भी अलग अलग टाइप के कैप्स आते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आपके दांत कैसे हैं, कौन से तरीके का कैप आपके केस में बेटर रहेगा, या आपके डेंटिस्ट आपको अच्छे से सलाह दे सकते हैं।
0: इसमें दांतों का प्रेशर भी काम करता है।
1: एग्जैक्टली, आपका बाइट फोर्स कितना है,
0: जी जी,
1: आपके फूड हैबिट्स कैसे हैं, दांतों का अरेंजमेंट कैसा है।
0: यस,
1: क्योंकि जैसे लंबे स्पैन वाले ब्रिज होते हैं, तो अगर आपके अपोजिट साइड के दांत नीचे के जबड़े का कर रहे, तो ऊपर साइड के दांत अगर आपके आड़े टेढ़े हैं तो ब्रिज के ऊपर सीधा फोर्स नहीं पड़ने वाला है, आड़ा टेढ़ा फोर्स पड़ेगा। तो उसके लिए कौन सा मटेरियल ज्यादा सूटेबल रहेगा,
0: yes,
1: वो डिपेंड करता है आपके अरेंजमेंट के ऊपर। क्योंकि वो फोर्स जहां पे पड़ेगा वहां पे अगर टूटते रहेगा तो क्या होता है ना, ये भी एक चीज है कि एक दो बार टूटता है तो पेशेंट खुद ही गिव अप कर देते हैं और नहीं करना है बोल के छोड़ देते हैं।
0: हाँ,
1: लेकिन यहां पे उनको ये चीज समझनी जरूरी है कि हर बार महंगी चीज ही अच्छी होगी जरूरी नहीं है, और हर बार सस्ती चीज ही आपके केस में काम करेगी वो भी जरूरी नहीं है। तो केस टू केस डिपेंड करता है कि क्या आपके केस में सबसे बेस्ट होगा, वो आपके डेंटिस्ट आपको बेस्ट तरीका बता सकते हैं। अभी दूसरा तरीका जो है रिप्लेसमेंट का, उसको बोलते हैं डेंटल इम्प्लांट्स, जहां पे हड्डी में एक इम्प्लांट डाला जाता है। एक स्क्रू जैसी चीज होती है, एक्चुअली उसका डिजाइन स्क्रू जैसा होता है, एक्चुअल में स्क्रू नहीं होता। वो डिजाइन स्क्रू की तरह देने का कारण ये होता है कि उतना ज्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल होता है हड्डी को उसके साथ पकड़ बनाने के लिए। तो इसके लिए

0: इम्प्लांट जाता है हड्डी के अंदर, उसके ऊपर एक अटैचमेंट लगती है जिसको अबटमेंट बोलते हैं, और उसके ऊपर कैप लगाई जाती है। ये सबसे बेस्ट तरीका है आज की तारीख में दांत बिठाने का, क्योंकि इस तरीके में नेचुरली जैसे दांत फंक्शन करता है वैसे ही दांत हम लोग रिस्टोर कर रहे हैं। और अभी टेक्नोलॉजीज इतनी आ चुकी है, ये तो एक इम्प्लांट की मैं बात कर रहा हूँ, अभी तो पूरे मुंह के इम्प्लांट्स 2 दिन में 3 दिन में हम लोग केसेस खत्म करते हैं। पूरे मुंह के दांत हम लोग इमीडिएट इम्प्लांट करके पेशेंट को 2 दिन में फाइनल दांत दे देते हैं।
1: बहुत जल्दी होने लगा ये।
0: बहुत जल्दी होने लगा है। हाँ, खर्चीली चीजें हैं। अभी इसका खर्चा अगर मैं बताऊं तो लाखों में जाता है,
1: बाकायदा,
0: क्योंकि जो हड्डी में स्क्रू जा रहा है वो बना होता है टाइटेनियम से।
1: और वो महंगी चीज है।
0: टाइटेनियम सोने से भी ज्यादा महंगा आता है, तो वो महंगी चीज है। प्लस उसके टेक्निकल चीजों में अगर मैं जाऊं तो जो कंपनीज उसको बनाती है तो उसके जो मशीन्स होते हैं, मतलब एक बार चालू कर दी मशीन तो बल्क प्रोडक्शन करेगी तभी वो रुका पाओगे आप, नहीं तो एक या दो सैंपल पीस बना के आप रोक नहीं सकते, वो हजारों में बनाने पड़ते हैं। ये कंपनी की मजबूरी है क्योंकि मशीन्स वैसे है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि उनको खर्चा ज्यादा करना पड़ता है उसके पीछे। ऑब्वियस सी बात है, वो बाहर भी अपना नफा जोड़ेंगे। तो अगर मैं आपको अंदाजा दूं तो कम से कम 20-25 हजार से लेके 70-80 हजार, 1 लाख रुपए तक का इम्प्लांट होता है एक दांत का।
1: एक दांत का
0: तो अगर हम लोग पूरे मुंह की बात करें तो कम से कम 4-5 लाख रुपए से लेके 20-25 लाख तक आपका खर्चा जा सकता है, सारे दांत अगर आपको फिक्स में बिठाने हैं। ये हो गए फिक्स दांतों की बात। अभी आते निकालने पहनने वाले दांतों पे, डेंचर्स, या फिर हमने बहुत अपने दादा दादी को वगैरह देखा होगा पहनते हुए, निकालते हुए, वो निकाल के डब्बे में रखते हैं दांत, तो वो चीज आज की तारीख में ज्यादातर आउटडेटेड हो चुकी है। वो चीज वही पुरानी जनरेशन ही पहनना चाहती है जो पहले से पहन रहे हैं, लेकिन वो चीज का ड्रॉबैक बहुत सारा है। एक, जैसे हमने दांतों के ऊपर फोर्स की बात की थी, 120 to 130 न्यूटन सेंटीमीटर का प्रेशर रहता है, डेंचर में आपको प्रेशर रेस्टोर होता है 5 से 15 का।
1: बहुत कम है।
0: बहुत कम है, वही हम लोग इम्प्लांट के साथ रेस्टोर कर पाते हैं 110 से 115 तक,
1: इक्विवेलेंट है,
0: ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट। तो इसके लिए डेंचर पे आप बहुत सारी चीजें नहीं खा पाते हो।
1: पर इम्प्लांट बहुत महंगा होता है।
0: इम्प्लांट बहुत महंगा होता है
1: जी,
0: डेंचर उसके मुकाबले काफी सस्ते होते हैं।
1: तो कुल मिलाकर डॉक्टर साहब, आज की इस पूरी बातचीत का जो सबक है वो ये है कि दांत बहुत बेशकीमती हैं, और जैसे कि आपने कहा कि चूंकि मुफ्त में मिले हैं तो लोग उनकी केयर, उनकी कदर नहीं करते।
0: एग्जैक्टली।
1: तो रोजमर्रा की स्थिति में इन दांतों को बचाकर रखना जरूरी है। अब अगर मैं आपको कहूं लास्ट में एक वन लाइनर दे दीजिए अपने मरीजों को, सुनने वालों को, तो आप वो दांतों की केयर के लिए क्या वन लाइनर देंगे?
0: स्माइल प्लीज, स्माइल प्लीज। क्यों? क्योंकि दांत अच्छे हैं तो आप खुल के स्माइल भी करोगे, खुल के स्माइल करोगे तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी।
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू सो मच सर।
2: ये थी जाने माने डेंटिस्ट डॉक्टर जयेश घुगे से यूनुस खान की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर मंगेश सांगले, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात।

0: तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती सेवा मुंबई के कार्यक्रम। शाम के ठीक 5 बजे हैं, हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

युववाणी कार्यक्रम सुनने वाले आप सभी श्रोताओं को मेरा यानी कि आपके रेडियो दोस्त अमिता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? मस्त है ना? मस्त होना जिंदगी में बहुत ज़रूरी है और यह तभी संभव है जब हम अपने विचारों को रखेंगे स्वस्थ और सकारात्मक। इसके साथ ही जिंदगी में मस्त रहने के साथ हमारा स्वस्थ होना भी बहुत ज़रूरी है। इस समय जब गर्मी अपने भीषण रूप में है, तापमान रहता है उच्चतम, तो हमें रखना होगा अपने खान पान पर विशेष ध्यान और साथ ही साथ कुछ व्यायाम, सुबह और शाम के समय वॉक, तभी हम होंगे स्वस्थ मानसिक और शारीरिक रूप से और हमारी ज़िंदगी रहेगी खुशनुमा।

मई 2026 की शाम को इस संसार से विदा ली और आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार बंबई में किया गया। 28 जनवरी 1937 को ढाका में जन्मी सुमन कल्याणपुर, इन्होंने 11 भाषाओं में 3000 से भी ज़्यादा गाने रिकॉर्ड किए और हिंदी फिल्मों में लगभग 800 फिल्मों में के लिए गीत गाया। दोस्तों, अपने नाम की ही तरह संगीत प्रेमियों के दिलों में राज करने वाली सुमन कल्याणपुर हम सभी के दिलों में फूलों की खुशबू की तरह यूं ही महकती रहेंगी। श्रद्धांजलि स्वरूप लीजिए सुनी उन्हीं पर फिल्माया गया ये खूबसूरत सदाबहार गीत।

0: पटाखा एंड पटाखा एयर आर्म्स।
1: शादियां और अन्य अवसरों पर पटाखों की विशाल रेंज।
0: बालाघाट में एयर गन के अधिकृत विक्रेता।
1: एयर गन के प्रयोग से फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जानवरों को आंशिक

0: आफत और डर से भगाएं, अपनी फसलों की रक्षा करें।
1: स्कूल कॉलेज गन शूटिंग के लिए भी संपर्क करें। पटाखा एंड पटाखा, सरेखा बाईपास रोड, बालाघाट।
0: मोबाइल नंबर 9406788702।
2: श्रोताओं, आज है 1 जून। आज के दिन विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। दूध और डेयरी उत्पादों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा यह दिवस मनाया जाता है। यूँ तो हम सभी जानते ही हैं कि इसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम होता है, जो कि हमारे शरीर में हड्डियों को मजबूत करने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो हमें भी दूध और उनसे बने उत्पादों का सेवन अपने दैनिक खान पान में ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, आज 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस भी मनाया जाता है। बच्चों के अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए कई देशों में इसे मनाया जाता है, ताकि हर बच्चे को मिले पूर्ण सुरक्षा, शिक्षा और मिले ढेर सारा प्यार, क्योंकि बच्चे तो होते हैं मन के सच्चे।

दोस्तों, आज ही की तारीख में यानी कि 1 जून 1970 को जन्म हुआ फिल्म कलाकार आर माधवन का। आर माधवन हिंदी फिल्मों के अलावा अंग्रेज़ी, मलयालम, तमिल और कन्नड़ भाषा में भी इन्होंने फिल्में की। इनकी पहली हिंदी फिल्म थी रहना है तेरे दिल में। इसके अलावा तनु वेड्स मनु, धुरंधर, दिल विल प्यार वैर, थ्री इडियट्स, झूठा ही सही आदि फिल्मों में अपने बेहतरीन अदाकारी से लोगों के दिलों में अपना एक विशेष स्थान बनाया। वर्ष 2026 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ लीजिए सुनिए आर माधवन की फिल्म थ्री इडियट्स का ये गीत।

दोस्तों, अब हम आपसे क्रम सवाल जवाब के अंतर्गत पूछते हैं कुछ सवाल। जानते हैं आपका ज्ञान, जो कि आधारित है सोशल मीडिया के एप्लीकेशन में, जो कि आप अपनी दैनिक दिनचर्या में हमेशा ही यूज़ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, गूगल की स्थापना कब हुई? दूसरा प्रश्न है, फेसबुक की स्थापना कब हुई? तीसरा प्रश्न है, YouTube की स्थापना कब हुई? और चौथा प्रश्न, WhatsApp की स्थापना कब हुई? पांचवा अंतिम प्रश्न, Instagram की स्थापना कब हुई? आप सोचिए इन सवालों के जवाब और सुनिए एक और गीत।

FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के ठीक 5:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का आगाज करते हैं गाइड फिल्म के इस गीत से। SD बर्मन का संगीत है, आवाज़ है किशोर कुमार की।

इंदिवर के गीत को संगीत से सजाया है जगजीत सिंह ने, आवाज़ है अनुराधा पौंडवाल की, फिल्म का नाम है प्रेम गीत।

अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म हमराज से। आवाज़ है महेंद्र कपूर की, संगीत है रवि का और गीत के बोल लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, फिल्म धर्मवीर से। आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की, आनंद बख्शी के गीत है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: कार्यक्रम गुड इवनिंग बालाघाट।
1: गुड इवनिंग बालाघाट। गुड इवनिंग बालाघाट। गुड इवनिंग बालाघाट।

इस गीत के साथ ही हमारा आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के ठीक 6 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत

कार्यक्रम सुनने वाले आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में है स्वागत। और आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी रेडियो मित्र अमिता श्रीवास्तव। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज का गुड इवनिंग बालाघाट का ये विशेष अंक आधारित है फिल्म जगत की महान और सुप्रसिद्ध अभिनेत्री नरगिस पर, जिनकी आज है जयंती।

0: क्या आप किसी ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज की तलाश में हैं जो आपको न सिर्फ शिक्षण दे बल्कि साथ में दे रोजगार?
1: तो अब आपकी तलाश हुई पूरी, चले आइए AICTE से मान्यता प्राप्त और RGPV भोपाल से संबद्ध सतपुड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज में, जहां BTech कंप्यूटर साइंस, माइनिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल में डिग्री और साथ ही पॉलिटेक्निक के साथ 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग में।
0: हमारा पता है सतपुड़ा कैंपस, लालबारा रोड, गर्रा, बालाघाट।
1: मोबाइल नंबर 6262604111 और 9425836824।
2: पटाखा एंड पटाखा एयर आर्म्स,
3: शादियां और अन्य अवसरों पर पटाखों की विशाल रेंज,
2: बालाघाट में एयर गन के अधिकृत विक्रेता।
3: एयर गन के प्रयोग से फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले

0: जानवरों को आंशिक आहत और डर से भगाएं, अपनी फसलों की रक्षा करें।
1: स्कूल कॉलेज गन शूटिंग के लिए भी संपर्क करें। पटाखा एंड पटाखा, सरेखा बाईपास रोड, बालाघाट।
0: मोबाइल नंबर 9406788702।

0: निशुल्क कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: श्रोताओं, 1 जून 1929 को कोलकाता में अभिनेत्री और गायिका जद्दनबाई और अब्दुल रशीद उर्फ मोहन चंद उत्तम चंद के घर जन्म हुआ फातिमा रशीद उर्फ नरगिस का। वर्ष 1935 में मात्र 6 वर्ष की उम्र में बाल कलाकार के रूप में अभिनय करियर की शुरुआत की फिल्म तलाश ए हक से। वर्ष 1942 में आई फिल्म तमन्ना, वर्ष 1943 में मुख्य भूमिका निभाई फिल्म तकदीर से। इसके साथ ही फिल्म आई बाबुल, आह और दीदार।

वर्ष 1949 में रोमांटिक फिल्म अंदाज और संगीतमय फिल्म आई बरसात। श्रोताओं, वर्ष 1951 में नरगिस ने फिल्म आवारा, वर्ष 1955 में श्री 420, वर्ष 1956 में चोरी चोरी जैसी सुपरहिट फिल्मों में बेहतरीन अदाकारी से दर्शकों का मन मोह लिया।

श्रोताओं, वर्ष 1957 में नरगिस ने महबूब खान की ऑस्कर नामित ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म मदर इंडिया में अभिनय किया, जो उस समय की सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्म थी, जिसके लिए नरगिस को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार साल 1958 में।

श्रोताओं, साल 1958 में नरगिस ने अपने सह कलाकार सुनील दत्त से शादी की और बन गई निर्मला दत्त।

श्रोताओं, नरगिस की और भी प्रसिद्ध फिल्में हैं मेला, अनबन, मीना बाजार, जोगन, जान पहचान, आधी रात, बेवफा, जागते रहो आदि। फिल्म आवारा उस समय 12.5 मिलियन की कमाई करते हुए देश विदेश में ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। वर्ष 1958 में चेक गणराज्य में कार्लोवी वेरी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला अभिनेत्री बनी। साल 1993 में भारतीय डाक विभाग ने इनके सम्मान में डाक टिकट जारी की। 3 अप्रैल 1980 से 3 मई 1981 तक राज्यसभा में सांसद सदस्य रहीं। साल 1958 में नरगिस को मिला देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री।

0: श्रोताओं, 50 और 60 के दशक में सर्वाधिक कमाई करने वाली अभिनेत्री रहीं नरगिस। नरगिस की आखिरी फिल्म वर्ष 1967 में आई रात और दिन, जिसके लिए उन्हें मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पहला राष्ट्रीय पुरस्कार। मई 1981 को लाजवाब फिल्मों की बेहतरीन अदाकारा नरगिस ने खतरनाक बीमारी के चलते इस संसार से विदा ली। ठीक एक वर्ष बाद उनकी स्मृति में उनके पति सुनील दत्त ने नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की। आज नरगिस दत्त की जन्मतिथि पर श्रद्धांजलि स्वरूप हमारा ये विशेष अंक था। इसी के साथ हमारा आज का अंक अब संपन्न होता है। दीजिए अपने रेडियो मित्र अमिता को इजाज़त। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग बालाघाट। गुड इवनिंग बालाघाट। गुड इवनिंग बालाघाट।

0: एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम। डीआरएस पद्धति से धान फसल का उत्पादन कैसे करें, खरीफ फसल पूर्व तैयारी, वर्तमान कृषि सामयिकी पर उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग बालाघाट श्री फूल सिंह मालवीय जी से अजय बैस की बातचीत।
1: श्रोताओं नमस्कार। हम देख रहे हैं कि अब जैसे कि अभी देखो कि गर्मी का मौसम है, कि आप भी सुरक्षित रहे। तापमान जिस तरीके से बढ़ा हुआ है, हम देख रहे हैं कि अभी खरीफ का जो समय है इसको लेकर हमारे यूं कहें कि तैयारी को लेकर कृषि विभाग भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। हम देख रहे हैं कि आत्मा समिति भी प्रयास रहे प्राकृतिक खेती के माध्यम से भी खरीफ की फसल को बेहतर हम कैसे बनाए, प्राकृतिक खेती हम करें खरीफ की फसलों में। आत्मा समिति के द्वारा कृषि सखी नियुक्त की गई है जिसका मुख्य उद्देश्य है कि हम प्राकृतिक खेती को किसानों तक लेकर जाएं, प्राकृतिक खेती करें, और इसको लेकर समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित हो रहे हैं और अभी संपन्न हुए हैं, जिन्होंने कृषि दीदियों ने प्राकृतिक खेती के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की है कि इन्हीं विषयों पर हमारे बीच में है संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग श्री फूल सिंह मालवी सर। और खासतौर से हम सुन भी रहे हैं कि DCR जिस पर हम विस्तृत चर्चा भी करेंगे, बालाघाट में यह नाम नया नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे परिस्थितियों के हिसाब से हमें इस ओर आगे आने की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं तकनीकी रूप से भी धान की फसल को अब प्रेरित किया जा रहा है। हमारे बीच में श्री मालवी सर। सर आप सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। काफी गर्मी का मौसम है और बीच में हमारे किसान भाइयों की सलाह काफी महत्वपूर्ण हो जाती है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। जैसा कि हम जानते हैं बालाघाट जो हमारा जिला है यहाँ पर 1443 जो mm है मिलीमीटर वर्षा लगभग, हम ये मान के चलते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में अगर कहीं सबसे ज़्यादा बारिश होती है तो पचमढ़ी और बालाघाट में होती है। और बालाघाट में अभी इतना अच्छा लास्ट ईयर भी बारिश हुआ, उसके बावजूद भी अभी ये जो हमारा मई का महीना चल रहा है तो एक पानी की बड़ी समस्या हमारे किसान भाइयों को आ रही है। पिछले साल भी 44,000 हेक्टेयर में इस वक्त हमारे किसान भाइयों ने, जिसको हम रबी धान बोलते हैं, रबी में धान लगाया था, जिसको हमने इस साल कम करके 44,000 से 33,000 हेक्टेयर पे हम लेके आए हैं। इसके बावजूद भी कई किसान भाइयों के जो है धान के खेत खड़ी फसल उनकी पानी की कमी के कारण सूख गई, क्योंकि उनको ऐसा विश्वास था कि उनके कुआ और ट्यूबवेल में पानी है वो सिंचाई कर लेंगे, परंतु वाटर टेबल इतना नीचे चला गया कि उनके ट्यूबवेल सूख गए और उन अपनी धान के खेत में एक दो पानी ही दे पाए वो। अब इससे हुआ क्या कि जमीन के अंदर जो पानी है उसकी कमी कैसे हो रही है, जब बारिश इतनी ज़्यादा है 1443 mm हमारे यहाँ हो रही है तो फिर तो जमीन के अंदर भी पानी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसका जो सबसे बड़ा कारण है हमारे यहाँ जो किसान भाई है वो परा लगाते हैं, परा पद्धति रोपा तैयार करते हैं, फिर खेत में कीचड़ मचाते हैं, फिर ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, पौध रोपते हैं, तो कीचड़ जब मचाता है किसान खेत में तो उसको हम पडलिंग करना बोलते हैं, मिट्टी को कीचड़ बनाना पलटना, उसकी वजह से वर्षों से किसान कीचड़ बनाता आया है पलटता आया है तो पूरी मिट्टी की हो गई संरचना खराब, मिट्टी का जो मूल स्वरूप है वो बदल गया और पडलिंग करने से कीचड़ मचाने से खेत में सिर्फ पानी भरा रहता है, खेत का पानी जमीन के अंदर नहीं जा पाता है। जब इतने हमारे बालाघाट जिले में बहुत बड़े क्षेत्र में मेड़बंदियों में खेती की जा रही है, यानी चारों तरफ से मेड़बंदान का काम है, तो खेत का पानी जमीन के अंदर नहीं जा रहा है, उसकी वजह से क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि कीचड़ मचा रहे हैं और उसकी वजह से हमारे यहाँ का जमीन में पानी खत्म हो गया, कुआं और ट्यूबवेल सूख गए। मई के महीने में हमारे यहाँ कई गांव ऐसे जहाँ पानी को लेके बड़ी परेशानी और दिक्कतें जनता को आ रही है। तो इसका एक और सबसे आसान और सरल तरीका जो हमने निकाला है और किसान भाई खुद भी जानते हैं इस बात को, बस उनको हमको याद दिलाने की आवश्यकता पड़ रही है कि ये जो है टिकाऊ खेती करना बहुत जरूरी है। टिकाऊ खेती जो कीचड़ वाली खेती है, ट्रांसप्लांटिंग रोपा वाली, टिकाऊ खेती नहीं रही वर्तमान समय में। इसकी जगह हमको सीधी धान के बीज की बुवाई,

0: डायरेक्ट सीडेड राइस पद्धति पे आना है, यानी कि किसान को रोपा तैयार नहीं करना है, अब सीधा खेत में अपना बीज बोना है। बीज दो तरीके से किसान बो सकता है, एक मशीन के द्वारा और दूसरा एक हाथों के द्वारा छिटकवा, जिसको यहाँ लोकल भाषा में बुआर के नाम से जानते हैं कि बुआर करना, ठीक है। इस पद्धति को किसान अपनाएगा तो कीचड़ नहीं मचेगा, नहीं मचाना होगा, उसकी वजह से जमीन का पानी, मिट्टी का जो खेत का पानी, वो जमीन के अंदर जाना शुरू होगा, क्योंकि वो जल नलिकाएं, जल केशिकाएं बनना शुरू होती है और जमीन के अंदर पानी जाना शुरू होगा और हमारी जमीन का जो जल स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर किसान भाई कीचड़ की ही खेती करते रहेंगे तो यहाँ एक विकराल समस्या और अगले साल पैदा पानी की हो जाएगी, तो ये बहुत नितांत आवश्यक है। इसलिए हमने एक DSR अभियान चलाया है और इस अभियान पे हम पिछले 20 से 25 दिन से हम काम कर रहे हैं। कृषि रथ यात्रा भी हमारी 10-12 दिन गांव-गांव गई है और 10 दिन जाके हर जगह, हर ग्राम पंचायत में हमने किसान भाइयों को DSR की खेती, सीधे बीज बोने की पद्धति के ऊपर किसानों को बताया और अवगत कराया और कीचड़ की खेती से होने वाले नुकसानों के बारे में भी उनको जानकारी हमने किसानों को दी है। कीचड़ की खेती से तो बहुत सारे नुकसान होते हैं, यदि मैं कुछ नुकसानों की आपसे बात करूँ तो आप देखेंगे कि वायु संचार नहीं होता है मिट्टी के अंदर, ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे कोई भी बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया नहीं पनपते, सूक्ष्म जीव नहीं पनपते और हमारे केचुए भी पूरे खत्म हो जाते हैं यदि हम कीचड़ वाली खेती करते हैं तो। दूसरा ही साथ साथ क्या होता है कि कीचड़ वाली खेती में जो रबी की जो आने वाली फसल है, गेहूं, चना, मसूर, अलसी, है ना, मूंग, उड़द, वो कोई भी अच्छी फसल नहीं हो पाती है, क्योंकि जमीन के अंदर वायु संचार रहता ही नहीं है, कोई बैक्टीरिया पनपता ही नहीं है, तो वो आने वाली रबी की फसल भी कोई अच्छी सी पैदावार नहीं हो पाती है। लेकिन जो किसान बुआर की खेती कर रहे हैं या DSR वाली खेती कर रहे हैं, उनके यहाँ इस साल भी, इस वर्ष भी 16 क्विंटल 18 क्विंटल प्रति एकड़ गेहूं हमारे किसानों ने पैदा किया है यहाँ पर बालाघाट में, जो लोग बुआर या DSR की खेती कर रहे हैं। अब सोचने की ये बात है, यहाँ किसानों का ये कहना है, मैंने लोगों को कहते हुए सुना है कि हमारी बालाघाट की जो धरती है, मिट्टी है, वो गेहूं के लायक नहीं है, ऐसा लोग मैं भी सुनता है एक साल से। फिर मैंने समझ में आया कि नहीं, ये गलत है, हमारे यहाँ बालाघाट की मिट्टी गेहूं लायक है, गेहूं बहुत अच्छे से पैदा किया जा सकता है, 16 से 18 क्विंटल हमारे किसान गेहूं पैदा कर रहे हैं, बस एक ही शर्त है कि उनको कीचड़ वाली खेती बंद करना पड़ेगी ताकि जमीन के अंदर वायु संचार बढ़ जाए, अच्छे बैक्टीरिया बढ़ जाए। दूसरा, साथ ही साथ ये जब हम DSR की खेती, बुआर की खेती करते हैं तो हमें कम से कम 25 से 30 दिन की समय की भी बचत होती है, उस जो समय बचता है उसकी वजह से हम धान और हमारे चना और गेहूं की फसल टाइम पे बुआई कर लेते हैं, फिर हमारा और टाइम एक महीना बच जाता है, तो हम जो जायद की फसलें हैं, उड़द और तिल, वो भी हम टाइम पे बो पाते हैं, जिसकी वजह से हमें अच्छा उत्पादन किसान भाइयों को मिलता है, तो ये समय बचता है, पैसा भी बचता है। इसमें जो किसान भाइयों से मेरी चर्चा हुई है, उन्होंने कहा सर 8 से लेकर 12 हज़ार रुपये प्रति एकड़ तक बुआर यदि हम करते हैं तो हमारा खर्चा बच जाता है, कीचड़ वाली खेती में इतना पैसा उनको एक्स्ट्रा देना होता है और लेबर भी उनको समय पर नहीं मिलती है, वो भी एक उनके लिए समस्या होती है। सिर्फ यदि हम हमारी साथ ही साथ इसमें बीज भी कम लगता है बुआर वाली खेती में, इसके अलावा मीथेन गैस भी नहीं निकलती है, जबकि कीचड़ वाली खेती में मीथेन गैस और उसकी वजह से वायु प्रदूषण होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं और DSR खेती को बहुत अच्छे से जो किसान भाई करना चाहते हैं उनको सुपर सीडर मशीन से करवाना चाहिए। एक और नई और सस्ती मशीन 1,20,000 से लेकर 35,000 के बीच की उसकी कीमत है, जिसको हम स्टेप सीडर के नाम से जानते हैं। अब ये स्टेप सीडर मशीन क्या है, लाइन से लाइन के बीच की दूरी और पौधों से पौधों के बीच की दूरी जैसी चाहे आप वैसी सेट कर सकते हैं उसमें, और पौधे से पौधे की डिस्टेंस पर्याप्त रहती है, लाइन से लाइन की दूरी भी मेंटेन रहती है, जो एक पौधा है उसको चारों तरफ से हवा मिलती है, स्थान मिलता है, सनलाइट भी, प्रकाश भी मिलती है, तो बढ़िया पौधे की बढ़वार होती है, उत्पादन ज़्यादा मिलता है। जो हमारी बुआर वाली खेती है, मैं कई किसानों से मिला हूँ कि जो बुआर वाली उनकी खेती है, DSR वाली खेती है, उनका 5 से 7 क्विंटल तक उत्पादन ज़्यादा मिलता है किसान भाइयों को, हाँ, तो वो एक एक्स्ट्रा किसान भाइयों का फायदा हो जाता है।
1: सबसे महत्वपूर्ण कि लागत भी कम हो,
0: लागत कम हो गई, उत्पादन ज्यादा मिल गया,

0: साथ ही हमारे किसान उतेरा क्रॉपिंग करते हैं, उतेरा की फसल रहते हैं, तो उड़द जो लोग बुआर किसान करता है वो उड़द डाल देता है उसके अंदर। तो इधर धान पक के तैयार होती है, जैसे धान कटती है उड़द उनकी 60 दिन के अंदर उड़द भी तैयार हो जाती है। तो ये और उनको एक्स्ट्रा फसल हमारे किसान भाइयों को मिल जाती है। फिर उसके बाद में फिर वो गेहूं चना की फसल ले लेते हैं। तो सबसे बेस्ट अगर कोई तरीका है तो वो है DSR सीधे धान के बीज की बुआई करने का। तो ये कुछ मोटे मोटे मैंने आपको फायदे बताए। एक जरूर है कि इसमें हमारे किसान भाइयों ने कहा कि सब इसमें एक खरपतवार की एक समस्या आती है। यदि हम बुआर करते हैं या DSR वाली खेती करते हैं तो खरपतवार आते हैं इसमें, बिल्कुल सही बात है। तो खरपतवार आते हैं तो इसके लिए हमारे पास में बहुत अच्छे अच्छे केमिकल रसायन अब वर्तमान समय में आ गए हैं, जो कीचड़ मतलब जो चौड़ी पत्ती वाले और जो सक्रिय पत्ती वाले दोनों प्रकार के खरपतवारों को बहुत अच्छे से प्रबंधन उनका किया जा सकता है, उनको खत्म किया जा सकता है। तो अब जो है ना वो समस्या नहीं रह गई है कि खरपतवार को हम कैसे खत्म करेंगे, है ना, तो वो कोई इशू नहीं है, राइट। इसमें खरपतवार की कोई समस्या नहीं है। हम जैसे ही बुआई करते हैं, बुआई के 3 दिन के भीतर एक हमारा पेंडा मेथिलीन करके केमिकल आता है, उसका हम स्प्रे कर देंगे तो शुरुआती दौर पे तब हम खरपतवारों को रोक देते हैं। फिर एक 20 दिन की अवधि में, 15, 20, 25 दिन की अवधि में फिर हम 25 बैक सोडियम एक केमिकल हमारा आता है, वो चौड़ी पत्ती वाले और सक्रिय पत्ती वाले खरपतवारों को दोनों को ख़त्म कर देता है। तो उससे भी जो है बहुत अच्छा, फिर कोई खरपतवार की समस्या नहीं रहती है। मैं कुछ कैसे ऐसे किसान भाइयों से मिला हूँ जिन्होंने कहा कि सर तीसरे साल में जाके जंगली धान हमारे खेत में उसकी एक समस्या, जंगली धान जिसको काला धान के नाम से लांबा के नाम से जानते हैं, तो वो एक खरपतवार की समस्या किसान भाइयों ने बताई है। और उसके भी बहुत अच्छे से हम उसका प्रबंधन हम 3 तरीकों से कर सकते हैं, ठीक है। एक हमारा पहला तरीका ये है, जब हम मानसून आ रहा उसके 5-7 दिन 10 दिन पहले ही खेत में एक सिंचाई कर दें, सारे खरपतवारों को उगने का मौका दें, वो उगें और उसके ऊपर से हम उसकी बखरनी कल्टीवेटर चला दें। तो एक तो वो तरीका हम खरपतवार को ख़त्म करने का, जंगली धान को ख़त्म करने का।
1: सर ये जो DSR है इसमें और कुछ पहलुओं को जोड़ा है, बीज की मात्रा, प्राकृतिक खेती को भी हमने जोड़ा है और
0: जैसे मैंने बताया कि मैं जैसा भ्रमण करता हूँ और किसानों ने बताया कि जैसे सर हम बुआर या सीधे धान के बीज की बुआई करते हैं तो उन्होंने कहा कि तीसरे साल में जाके, चौथे साल में जाके जंगली धान जिसको यहाँ लांबा के नाम से जानते हैं उसकी एक समस्या खड़ी हो जाती है और उसको नियंत्रण कैसे करें वो एक चैलेंज का काम है। वो बिल्कुल सही बात है, सारे खरपतवारों को हम नियंत्रण कर लेते हैं लेकिन जंगली धान का एक नियंत्रण एक अलग तरीके से किया जाता है। तो अलग तरीके से करने का मतलब कि एक तो ये है कि किसान भाई सबसे पहले जैसे मानसून आता है उसके 10-15 दिन पहले अपने खेत में पानी की एक सिंचाई कर दे, उससे सारे खरपतवार उग जाएंगे और उसके बाद में कल्टीवेटर चला दे, तो एक तरीका वो बताया। दूसरा तरीका ये है कि किसान भाई तीसरे साल में जाके इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है रायपुर, वहाँ से एक बहुत अच्छी किस्म निकाली है और उतना ही उत्पादन देती है जो आमतौर पर हमारे यहाँ अन्य किस्में देती हैं उत्पादन। उस किस्म का नाम है श्यामला और तो उसका रंग भी जो है ना श्याम कलर का रंग है, बैगनी रंग है उसका, उस किस्म की पत्तियों का रंग जो है बैगनी है, बाकी चावल वैसे ही है जैसा सभी किस्मों का होता है। तो जैसे हम उसको बोते हैं सारी पत्तियां उसकी बैगनी होती है और जंगली धान की जो पत्तियां हैं वो सब हरी होती हैं, तो वो हरे हरे रंग की पूरी धान अलग ही नजर आ जाती है। तो उनको पकड़ पकड़ के उखाड़ के जो खेत से निकाल सकते हैं, शुरू से लेकर आखिरी तक की अवस्था में कभी भी निकाल सकते हैं हम उसको। तो एक इस तरह से हम पूरे धान को बाहर, जंगली धान को बाहर कर सकते खेत से। एक फिर एक और नया टेक्नोलॉजी अभी दो साल से हमारे यहाँ पॉपुलर हो रहा है जिसको हम फुल पेज टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। एक बायर कंपनी और एक सवाना कंपनी है जो अपना बीज लेके आई है और वो बीज ऐसा बीज है कि वो बीज भी देते हैं और साथ में दवाई भी देते हैं, खरपतवार नाशक दवाई भी देते हैं। तो उन्हीं का बीज किसानों को लगाना होता है और उनके द्वारा दी गई दवाई, खरपतवार नाशक दवाई, वही स्प्रे भी करना है। तो उस खरपतवार नाशक दवाई से क्या होता है, जंगली धान के साथ साथ अन्य जो भी दूसरी किस्मों की धान है वो भी खत्म हो जाती है, सारे खरपतवार भी खत्म हो जाते हैं, बस उनने जो बीज दिया है धान का वो बचा रहता है, वो धान खत्म नहीं होती है। तो उसका भी तीसरे साल किसान इस्तेमाल कर सकते हैं, ये तीन तरीके मैंने आपको बताए किसान भाइयों को। और साथ ही साथ किसान भाई जब भी DSR लगाते हैं तो DSR को हम एक सूखे में भी कर सकते हैं, मानसून आने के 8 से 10 दिन पहले भी किसान भाई अपने खेत में बीज बो सकते, बात शर्ते कि खेत हमारा समतल हो, बराबर हो, अच्छे से हमारा खेत तैयार किया गया हो, भुरभुरी मिट्टी हो, ताकि और

इसमें सबसे डीएसआर में क्या है, एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु एक ही है, बीज की गहराई। बीज की गहराई जो है 1.25 इंच से गहराई ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 1.25 इंच से गहराई ज़्यादा हो जाएगी तो अंकुरण प्रभावित होता है, पूरा दाना फिर अंकुरण नहीं हो पाता है। तो अंकुरण होने के लिए जितना कम से कम गहराई पे हम दाना डालेंगे उतना अच्छा रहेगा। और इसके लिए मैंने मशीन में आपको बताई कि एक स्टेप सीडर मशीन बहुत अच्छी हमारे आ गई है। सुपर सीडर पहले से हमारे यहाँ पर है, तो दोनों मशीनों से हम लोग बुआई कर सकते हैं। अन्य जो सीड ड्रिल मशीन से भी बुआई कर सकते हैं, परंतु बीज जो है 1 इंच 1.25 इंच से ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहिए, ठीक है? ये ध्यान रखने की बहुत ज़रूरी बात है। बीज है, एक एकड़ पे 12 से 15 किलो बीज किसान इसमें ले सकते हैं, ठीक है? और जहाँ फिर हम लोग मशीनों का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि स्टेप सीडर मशीन है, तो उसमें 10 किलो बीज में ही हमारा, 8 से 10 किलो बीज में ही काम हो जाता है। तो ये महत्वपूर्ण कुछ बिंदु हैं। और इसी के साथ साथ किसान भाइयों को अभी वर्तमान में अपने खेत की तैयारी करना चाहिए, ठीक है? पर दूसरी एक और हमारी मैंने बताई, सूखी में डीएसआर करना और एक बारिश आने के बाद डीएसआर करना। तो बारिश आती है, खेत आपके कड़क रहते हैं तो वो नरम हो जाएंगे, उन खेत को तैयार कीजिए, और खेत में नमी रहती है आप उस समय भी बीजों की बुआई कर सकते हैं, ठीक है? ये ध्यान रखने की बात है। और शुरुआत के 15 से 20 दिन जो हमारे शुरुआत के फसल के होते हैं, उस समय हमारे खेत में पानी नहीं भरना चाहिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, यदि हम बीज बोने वाली खेती कर रहे हैं धान की, तो शुरुआत के 15 से 20 दिन हमारे खेत में पानी भरा हुआ नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगर पानी भरता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है, बस खेत में हमारी नमी बनी रहना चाहिए। खेत में नमी रहेगी तो फसल हमारी अच्छी पैदावार देगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, और पानी भरने की ज़रूरत है ही नहीं। एक तो ये मुख्य इम्पोर्टेंट रही बीज की बात, तो बीज जो है हमारे जितने भी विकासखंड कार्यालय हैं, पूरे 10 ब्लॉक में हमारे बीज आ गया है। धान का बीज आ गया, उड़द का बीज है, तिल का बीज है, अरहर का बीज है, ढेचा का बीज है, सभी प्रकार के जितने बीज हैं सब ब्लॉक विकासखंड में बीज किसानों के लिए हमने उपलब्ध करा दिया है। किसान भाई विकासखंड कार्यालय में जाए और वहाँ पर अपने कृषि विभाग के जो हमारे कर्मचारी हैं, जिनको हम कृषि विस्तार अधिकारी बोलते हैं, उनसे संपर्क करके अपना बीज खरीद ले। बीज वहाँ से अच्छी हमारी लेटेस्ट, सबसे कमाल की बात अच्छी ये है कि हमारे पास जो वैरायटी है वो सारी की सारी लेटेस्ट और अभी अभी 2-5 साल के भीतर जो आई हुई जो वैरायटी हैं वो ही वहाँ पर उपलब्ध है। तो सारी नई की नई वैरायटी किसान भाइयों को वहाँ से, हमारे कृषि विभाग से किसान भाइयों को लेना चाहिए। जैसे JR 81 है, JR 206 है, स्वर्णा सब वन उन क्षेत्र नदी वाले किनारे वाले क्षेत्रों के लिए बहुत अच्छी है, जहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति आती है, बाढ़ वगैरह आती है तो जहाँ पानी काफ़ी लंबे टाइम तक भरा रहता है, वहाँ के लिए स्वर्णा सब वन वेराइटी भी हमारे पास में उपलब्ध है। इसके साथ साथ JR 21 है, JR 206 है, और भी जो हमारी धान की लेटेस्ट वैरायटी है वो सारी की सारी कृषि विभाग में उपलब्ध हैं। इसी के साथ साथ जैसे मैंने खरपतवार प्रबंधन पे ऑलरेडी बात ही कर ली है, जैसे ही खरपतवार प्रबंधन का सीजन हमारा चालू होगा, धान की हमारी बुआई वगैरह हो जाएगी, फिर इसके बाद में फिर हम खरपतवार प्रबंधन पर एक अभियान चलाएंगे किसान भाइयों के लिए, हर किसान भाई तक कैसे खरपतवार प्रबंधन करें उसकी सूचना भी हम उनको देंगे। अभी वर्तमान में 2-3 चीज़ पे पहले से किसान भाइयों को कर लेना है, अपने खाद की ई टोकन के माध्यम से खाद की व्यवस्था कर ले, दूसरा कृषि कार्यालय में हमारे विकासखंड में जाके कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क करके बीज की व्यवस्था कर ले, और जिनके खेत तैयार हो सकते हैं अभी, जो बुआर वाले खेत हैं वो खेत आसानी से तैयार हो सकते हैं, उन खेत की तैयारी कर ले। तो ये 3 चीज़ अभी किसान भाई तैयार करके रख ले, और सुपर सीडर मशीन जो कस्टम हायरिंग सेंटर वालों के पास में अवेलेबल है उनसे बात करके रख ले कि भाई आपको हमारे खेत की बुआई करना है। हमारे यहाँ का जो फोरकास्ट अभी आ रहा है, लगभग 20 जून के आसपास, 20 से 25 जून के आसपास पानी आने की संभावना है, तो 20 से 25 जून के पहले हम 8 से 10 दिन के पहले भी हम सूखे खेत में बीज की बुआई कर सकते हैं, बशर्ते हमारा जो बीज है वो, कई किसान सीड ट्रीटमेंट करते हैं 24 घंटे तक उसको पानी में घोल के पानी में रखते हैं, तो पानी, हाँ पानी वाला बीज नहीं होना चाहिए, सूखा बीज ही होना चाहिए, ठीक है? ये ध्यान रखने की उसमें बात है। फिर इसके साथ में अभी मानसून का अभी जो फोरकास्ट आया है, हमारे 70% क्षेत्र में, बालाघाट के लगभग 70% क्षेत्र में मानसून जो है, पिछले जो हमारा नॉर्मल मानसून हो, जो हमारे यहाँ की जो एक एवरेज वर्षा है उससे 34 से लेकर

0: 45 तक उसकी संभावना कम बारिश की बताई गई है। उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 34 से 45 है कि 70% एरिया में बालाघाट में बारिश कम हो रही है।
1: कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं तो चिंताजनक है,
0: चिंता का विषय है ये, है ना। इसके ऊपर भी हम किसान भाइयों को अवेयर कर रहे हैं कि किसान भाइयों को हम तो मैं तो ये कहूँगा किसान भाइयों कि जो कम दिन की फसल है, कम पानी वाली फसलें हैं, जैसे हमारा कोदो, कुटकी, रागी, मक्का, अरहर के साथ साथ में मूंग, उड़द, तिल, रामतिल, इन फसलों को किसान भाइयों को लेना चाहिए। और कीचड़ वाली खेती तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। जब मानसून ने, भारतीय मौसम विभाग ने ये जानकारी दे दी कि साहब मानसून इस बार जो है बालाघाट का बारिश 34 से 45% तक बारिश की कम संभावना है, ऐसे में किसान भाइयों को सही निर्णय लेने की ज़रूरत है। मैं किसान भाइयों से अपील यही करूंगा कि किसान भाई कीचड़ या परहा या ट्रांसप्लांटिंग वाली खेती धान की ना करें। वो लाइन से लाइन की हम बात करते हैं, बुआई की बात कर रहे हैं, बीज बुआई की बात कर रहे हैं, बुआर की बात कर रहे हैं, छिटकाव विधि से धान की खेती की बात कर रहे हैं, वो करना चाहिए। बल्कि और जो मैंने अभी ये फसलें आपको बताई जो कम पानी वाली जल्दी पकने वाली फसलें हैं, उन किसान भाइयों को लेना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल सर, मैं आपका इशारा भी समझ गया। जैसे आपने कहा कि अभी हम सिर्फ खरपतवार की बात में करेंगे तो हमारे किसान भाई सिर्फ एक अपना मन चेंज करने की आवश्यकता है, क्योंकि इस और उसके बाद की जो प्रक्रिया है हम आगे अपने अपने कार्यक्रम में देते रहे। पहले अपने मन को आप DSR की ओर आगे लेकर गए। सर अब हम जैसे कि और भी बातें अपने कार्यक्रम में हम करेंगे, कुछ ऐसी बातें सर जो कि हम देख रहे हैं कि ई टोकन पद्धति से खाद मिल रहा है, लेकिन इसके अलावा जैसे कभी हम देखते हैं कि खाद की उपलब्धता भी कहीं ना कहीं अब हमारे सामने है, आपने पिछले बार भी महसूस किया है, और जब कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है।
0: बहुत सही सवाल किया आपने कि आखिर ये रासायनिक खेती हम लोग कब तक करेंगे, और उसकी वजह से हम प्रभाव बालाघाट में तो हमको देखने को मिल ही रहे हैं कि यहाँ की जमीन बहुत कड़क हो गई है, जमीन बिल्कुल सीमेंट जैसी हो गई है एक तरह से हम देखें तो। वर्तमान में अगर कोई भी आप इम्प्लीमेंट चलाएंगे तो इम्प्लीमेंट नहीं चलते कि बहुत बड़े बड़े ढेले टाइप के मिट्टी के निकलते हैं, समझ रहे हैं। मिट्टी के ढेले निकलना मतलब मिट्टी का भुरभुरा होना नहीं, उसके अंदर नमी नहीं है, है ना, पूरा सीमेंट का एक पत्थर जैसा बन गया है। तो इसलिए रासायनिक उर्वरकों को संतुलित उपयोग या बहुत कम इस्तेमाल करने की जरूरत है। उसके जो दूसरे उपाय हैं उनके ऊपर किसान भाइयों को जाना चाहिए। और जो अभी हमारा जो प्राकृतिक खेती मिशन चल रहा है, हम जिन 6,250 किसानों के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं और मैंने फील्ड में जाके देखा है, किसानों से चर्चा की है, तो एक हमारा जीवामृत खाद है। किसान खुद अपने घर पर तैयार कर सकता है, टंकियों में 200 लीटर की टंकियों में वो खुद तैयार कर सकता है। गोबर, गौमूत्र, बेसन और गुड़, बस ये 3-4 चीज़ें उसमें लगती है और उससे वो खुद उसको तैयार कर सकता अपने। तो जीवामृत खाद के इतने अच्छे परिणाम आ रहे हैं। जीवामृत खाद क्या है, एक तो खाद तो है ही, उसकी वजह से बहुत अच्छे सूक्ष्म जीवाणुओं की बहुत तेज़ी से वृद्धि होती है और वो अपनी ग्रोथ करते हैं, तो वो उनका लाइफ साइकिल भी छोटा होता है, वो जमीन में वहीं पैदा भी होते हैं और वहीं ख़त्म भी होते हैं, तो ख़त्म होते हैं तो खाद का काम करते हैं, है ना, समझ रहे आप। और जो भी हमारा बायोमास होता है जमीन के अंदर उसको सड़ा गला कर पौधे को पोषक तत्व के रूप में उपलब्ध कराते हैं, और जो भी हम खादे ऊपर से देते हैं NPK, DAP, यूरिया, उसको भी सरल रूप में तोड़ने का काम करते हैं वो। जो जीवामृत खाद है वो सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छी खाद मैंने देखी है अभी तक मेरे अपने उसमें। दो और अच्छे विकल्प हमारे सामने मौजूद हैं, उसमें एक ढेचा एक बहुत अच्छा है विकल्प है। किसान भाई यदि अपनी बुआर लगाता है या बीज वाली खेती करता है, बीज लगाने वाली, उसके साथ में 10 किलो बीज के साथ में 1 किलो ढेचा बोले वो, तो प्रकृति का नियम ये है कि जो तेजी से बढ़वार करता है जो पौधा वो दूसरे पौधों को दबा देता है, तो ढेचा तेजी से बढ़वार करने वाला पौधा है तो दूसरे जो खरपतवार है उनको दबा देता है, क्योंकि उसकी पत्तियों की वजह से सनलाइट वगैरह नहीं मिलती है। फिर वो जैसे ही बड़ा होता है तो बड़ा होने जब 30-35 दिन का ढेचा और धान एक ही साथ उगा है तो 30-35 दिन का जैसे हमारी फसल होती है उसमें हम एक 2,4-D एस्टर का एक छिड़काव करते हैं, पूरी अपनी पत्तियों को जो है जैसे इमली की पत्तियां होती है उस तरीके उसकी पत्तियां होती हैं, पूरी की पूरी ड्रॉप हो जाती हैं और एक पलवार का काम करती है और नीचे एक बिछ जाती है, मल्चिंग का काम करती है वो, और वो बायोमास का भी काम करती है। और ढेचा का ये है कि ढेचा खुद ही अपने आप में एक नाइट्रोजन फिक्सेशन प्लांट है, तो हमारी धान के पौधों को भी वो नाइट्रोजन भी उपलब्ध कराता है। 30 से 40% तक हमारी धान की जो है यूरिया की पूर्ति ढेचा से हो जाती है, तो किसान भाई इस टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

0: हरी खाद के बारे में किसान भाई हमारे पहले से जानते हैं कि यहाँ बुआई करने से पहले हरी खाद लगा दो, ढेचा सन लगा दो, उसको बाद में जैसे 30 दिन का होता है खेत में उसी को पलट दो तो वो हरी खाद का काम करता है और नाइट्रोजन हमारे पौधों को, धान की खेती को उपलब्ध कराता है। एक और बहुत अच्छी चीज जो अभी निकल के आ रही है कि आपने एजोला का नाम सुना होगा, एजोला। तो एजोला मुख्यतः जो है वो पशुओं को आहार के रूप में देते हैं दूध बढ़ाने के लिए, लेकिन एजोला भी खुद भी नाइट्रोजन फिक्सेशन प्लांट है, पौधा है। और एजोला के दो फायदे होते हैं, ये एजोला धान के फसल को नाइट्रोजन तो देते ही देता है, साथ में खरपतवार प्रबंधन फ्री में कर देता है वो, कि जैसे ही हमारा फसल, अगर मैं बुआर की बात करूंगा, मैं तो कीचड़ वाली खेती के फेवर में हूं नहीं, तो यदि हमारा किसान ने बुआर लगाया है, लाइन से बीज बोया है, उस खेत में जैसे ही हमारा 15-16 दिन का 20 दिन की फसल हो जाती है, उसके बाद में एक से दो सेंटीमीटर पानी खेत में भरा रहने दे, ठीक है, एक पानी की एक लेयर खेत में होना चाहिए, और उसमें खेत में 10-20 जगह जो है एजोला मुट्ठियों से जाके छोड़ दे। अच्छा, एजोला क्या है ना, बहुत तेजी से अपनी मल्टीप्लिकेशन करने वाला पौधा है, बहुत तेजी से वो अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, 100 से 1000, 1000 से 10 लाख तुरंत बनते हैं वो। तो 5-7 दिन में क्या है ना, पूरे खेत में एजोला एजोला हो जाएंगे, एक परत बन जाएगी उसकी, हरी परत जिससे काई की परत बनती है ना, वैसे तरह एक परत बन जाएगी। अब वो परत क्या काम करती है, वो परत के नीचे क्या है, वो उनको उगने ही नहीं देता, बढ़ने ही नहीं देता, पूरा खरपतवार फ्री हमारा खेत रहता है और एजोला खुद नाइट्रोजन हमारी धान की फसल को उपलब्ध कराता है। बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है, किसान भाइयों को इस पे आना चाहिए और धीरे धीरे हम कोशिश भी कर रहे हैं कि हम इसको किस तरह से किसानों के बीच में पॉपुलर करें, इस पे मेरा विचार मंथन चल रहा है।
1: बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं हमें इस ओर भी आगे आना चाहिए, बहुत सारी हमारे पास तकनीक है पे भी समय समय पर हम, सिर्फ हमें प्रयास करना है कि जो हमारे एक मन बनाना चाहिए कि विकल्प है और उन विकल्पों को भी हम परंपरागत रूप से हट कर, तो मैं क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि और भी विस्तृत जानकारी हम समय समय पर अपने किसान भाइयों को देते जाएंगे, क्या तैयारी रखा है, क्योंकि हमें देखेंगे अभी प्रशिक्षण दे रहे हैं किसानों को, यात्राओं के माध्यम से भी हम जागरूक कर रहे हैं, खासतौर से हमारा सोशल मीडिया भी है, प्रिंट मीडिया के साथ सभी प्रयास कृषि विभाग कर रहा है, क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि हमारा
0: वर्तमान जो समय हमारा चल रहा है गर्मी का मौसम है, ठीक है, नौतपस चल रहे हैं, ऐसे में मैं तो किसान भाइयों को अपील करना चाहूंगा कि जो MB प्लाउ मशीन है उससे किसान भाइयों को अपने खेतों की गहरी जुताई करना बहुत जरूरी है। गहरी जुताई करने के बहुत सारे फायदे हैं, जितने भी हमारे जो खराब बैक्टीरिया है, फफूंद है, दूसरे जितने माहू वगैरह लगते हैं, ब्राउन प्लांट हॉपर लगते हैं, उन सबके जो अंडे बच्चे कीड़े जो है सब वो जमीन के अंदर कहीं ना कहीं इल्लियों के छुपे रहते हैं और सारे के सारे जो है सीधे सनलाइट के डायरेक्ट उसमें आएंगे, सूर्य के प्रकाश में वो सब खत्म हो जाएंगे, और मिट्टी भी को भी धूप चाहिए, वो भी एक अच्छे से धूप खा लेगी और उसकी वजह से फिर उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ती है, फिर जैसे बारिश होगी तो ज्यादा से ज्यादा मिट्टी जो है पानी को सोखेगी और ज्यादा से ज्यादा जमीन के अंदर भी पानी जाएगा। तो मैं गहरी जुताई सबसे पहले अभी किसान भाइयों को कहना चाहूंगा कि किसान भाइयों को इस पे आना चाहिए। और बालाघाट जो जिला हमारा, मतलब मुझे बड़ा ताज्जुब, यहां मैंने सीड ड्रिल मशीनों की संख्या निकलाई तो हमारे एक विकासखंड में सीड ड्रिल की मशीन संख्या निकल के आई 15 से 20 सीड ड्रिल एक विकास। अगर आप मालवा निमाड़ के क्षेत्र में आप जाएंगे तो एक गांव में इतनी सीड ड्रिल मशीन मिल जाएंगी आपको, यहाँ पूरे एक ब्लॉक में सीड ड्रिल मशीनों की संख्या इतनी है और उधर के क्षेत्रों में मालवा निमाड़ के एक गांव में उतनी सीड ड्रिल मशीन है। तो बहुत बड़ा गैप है हमारे यहाँ कृषि यंत्रीकरण में, बालाघाट में काम नहीं हुआ। तो किसान भाइयों से मैं अपील करना चाहूंगा कि किसान भाइयों, वर्तमान समय जो है ना लेबर का नहीं है, अब लेबर का काम नहीं बची है, अब लेबर, अब आपको कृषि यंत्रीकरण पे आना पड़ेगा। इसलिए किसान भाइयों को ट्रैक्टर, किसान भाइयों को सुपर सीडर मशीन, किसान भाइयों को स्टेप सीडर मशीन या जो मल्टी क्रॉप सीडर जो मशीन आती हैं वो उनको खरीदने की आवश्यकता है, कृषि यंत्रीकरण पे जोर देने की आवश्यकता है। और जो किसान भाई अभी सुपर सीडर मशीन, स्टेप सीडर मशीन खरीद के लाएंगे और जो किराए पे चलाएंगे, यदि आप गुणा करें, मुझे भाई अभी पता चला है कि 1500 से लेकर 2000 रुपए घंटे में सुपर सीडर मशीन चलाई जा रही है, पूरे दिन भर में 10 घंटे, कम से कम 10 घंटे वो मशीन चल सकती है, ठीक है, अगर एक महीना भी वो मशीन हम चलाते हैं मोटा मोटा, राइट, तो एक महीने 30 दिन में अगर मशीन चलती है 10 घंटे 30 दिन तो लगभग लगभग 6 लाख रुपए का धंधा होगा और मशीन की जो कीमत है वो लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए के बीच में है, ठीक है, अगर सब्सिडी नहीं भी मिलती है, और वैसे भी सब्सिडी के लिए कोई इंतजार हमको आगे बढ़ना तो उसके इंतजार करने की जरूरत नहीं है, स्वयं भी आपका जो सुपर सीडर मशीन पे जो खर्चा करने वाले हैं 2 से 2.5 लाख रुपया, वो एक सीजन क्या है, एक महीने के अंदर निकल बाहर आ जाएगा, समझ रहे हो आप, आपको 6 महीने या साल भर इंतजार नहीं करना है उसके लिए, एक सीजन में आपका पूरा

0: पैसा वसूल हो जाएगा आपकी पूरी मेहनत। ये सिर्फ 6 लाख रुपए में एक सीजन की बात कर रहा हूँ, अगला सीजन फिर आएगा, रबी का सीजन फिर आएगा। पूरे 12 महीने हमारे यहाँ 3 बार किसान फसल लेता है, 3 बार उस मशीन का उपयोग हुआ, और 1 बार सुपर सीडर मशीन का जो किसान इस्तेमाल करवा लेते हैं, फिर उनको समझ में आ जाते हैं उसके फायदे, फिर उसको स्टेप सीडर मशीन, सुपर सीडर मशीन से ही किसान बुवाई करवाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं तो किसान भाइयों से और हमारे जितने भी युवा किसान हैं उनसे ये अपील करना चाहूँगा कि आप खेती में भी एक बिजनेस छुपा हुआ है जो मैंने आपको बताया अभी। हम हमारे घर पर रह के, गाँव में रह के ही हम एक अच्छा व्यवसाय खड़ा भी कर सकते हैं और किसानों की सेवा भी कर सकते हैं और उत्पादन में भी अपना योगदान दे सकते हैं। तो ये मेरी हमारे युवा किसान भाइयों से अपील है और इसके लिए हम तो प्रयास करेंगे। जो भी किसान भाई स्टेप सीडर मशीन खरीदना चाहता है, सुपर सीडर मशीन खरीदना चाहता है, हम जिला प्रशासन के सहयोग से उन किसान भाइयों को, अगर खरीदने की क्षमता नहीं है तो हम उनको लोन भी बैंक से उपलब्ध करवाएंगे।
1: बिल्कुल सर, और आवश्यकता भी है कि हमारे युवा किसान भाई भी तकनीकी रूप से जुड़े और हम कहते हैं कि इसमें भी व्यवसाय। तो सर निश्चित तौर पर और भी जानकारी हम अपने कार्यक्रम में समय समय पर देते रहेंगे, लेकिन ये जो अभी समय है खरीफ के पूर्व का, खरीफ फसल की तैयारी को लेकर के अभियान के रूप में संचालित हो रहा है, तो आप निकटतम कृषि विकास विभाग के कार्यालय, ग्रामीण कृषि विस्तार विकास अधिकारी के साथ साथ जो हमारे आत्मा समिति के हमारे BTM है, ATM है, उनसे संपर्क करें, और खासतौर से आपके गांव के आसपास कृषि दीदी होगी उनसे भी आप मिलकर के जानकारी प्राप्त कर सकते हो। सर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी इस महत्वपूर्ण समय में आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू अजय जी।
2: अभी आप सुन रहे थे DRS पद्धति से धान फसल का उत्पादन कैसे लें, खरीफ फसल पूर्व तैयारी वर्तमान कृषि समसामयिकी पर उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग बालाघाट के श्री फूल सिंह मालवीय जी से अजय बैस की बातचीत। FM बैंड पर ये प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय शाम के 7:02 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

अब से कुछ ही देर बाद यानी कि 7:05 पर आप सुनिएगा समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 7:10 का वक्त होगा प्रादेशिक समाचार का, जिसे हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। फिल्म संगीत 7:21 पर। 7:30 का वक्त होगा हेलो ग्राम सभा का, जिसे हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा रात्रि 8:00 और 8:30 पर पॉप म्यूजिक। 8:45 का वक्त होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचारों का। 9:00 विविध भारती सेवा मुंबई के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। नौ बजकर 15 पर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 9:30 का वक्त होगा विविध भारती सेवा मुंबई के कार्यक्रमों का। 7:00 फिल्मी गीतों का आनंद लीजिएगा रात्रि 10:30 पर। 11:00 हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 3 हमारी आज की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

एफएम बैंड पर यह प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। शाम के 7:05 होने ही वाले हैं। लीजिए सुनिए समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू। दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4000 का आया बिल। रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल। रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
1: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
2: हर लेन देन अब है आसान।
3: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। देशव्यापी खेत बचाओ अभियान रायसेन से शुरू। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग सीमित करने का आग्रह किया। प्रदेश में समान नागरिक संहिता यूसीसी की प्रक्रिया जारी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नागरिकों से अपने सुझाव साझा करने की अपील की। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले। और भोपाल, इंदौर, देवास, सीहोर सहित कई जिलों में बादल छाए, तेज हवाओं के साथ कई जगह बारिश और मौसम हुआ सुहाना। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज रायसेन जिले के रमासिया गांव में राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। यह अभियान 1 महीने तक चलेगा। इसका उद्देश्य कृषि भूमि की रक्षा करना और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए प्रोत्साहित करना है। किसानों को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि खेत बचाओ अभियान का उद्देश्य मिट्टी और कृषि भूमि की रक्षा करना है। उन्होंने किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग सीमित करने का आग्रह किया।
1: मेरे किसान भाइयों, आज धरती की हालत ये हो गई है कि लगातार हमने खाद, पेस्टिसाइड, कीटनाशक दवाई डाल डाल के ऐसी हालत कर दी कि धरती माता बीमार होने लगी। एक सीमा होती है, लेकिन आज मैं आपसे ये कहने नहीं आया कि खाद नहीं डालना है। आज मैं ये कहने आया हूँ कि डालना तो है, लेकिन ये तो विचार कर लो कितना डालना है।
0: इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और नौ निर्वाचित प्रतिनिधि भाग लेंगे। किसानों को मृदा परीक्षण, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्राकृतिक खेती, उर्वरकों के संतुलित उपयोग और जल संरक्षण तकनीक के बारे में जानकारी दी जाएगी। उन्हें नकली उर्वरकों, बीजों और कीटनाशकों की पहचान करना भी सिखाया जाएगा। अभियान के दौरान किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में भी मदद मिलेगी। इसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम शामिल है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। सोशल मीडिया पर जारी एक संदेश में आज उन्होंने बताया कि इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है जो विभिन्न धर्म समुदाय के लोगों से सुझाव लेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश को आज समान नागरिक संहिता की ओर बढ़ने की आवश्यकता है।
2: हम अपने राज्य के अंदर भी इस समान नागरिक संहिता को लगाने के लिए यूसीसी लगा रहे हैं, जिसकी समिति भी बना दी गई माननीय सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के नेतृत्व में, अलग अलग विद्वानों को जोड़ करके। और वो समिति अपने राज्य के विभिन्न जिलों में जाकर हमारे सभी धर्मों के लोगों से सुझाव भी ले रही है और सबका संकलन करके हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी समान नागरिक संहिता मध्य प्रदेश में लागू हो जाए। मध्य प्रदेश की इच्छा है कि वो होना चाहिए और मुझे गर्व होगा कि हमारी सरकार उस दिशा में आगे बढ़ेगी।

0: मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार सभी वर्गों के साथ संतुलन बनाते हुए समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता के लिए एक वेबसाइट भी लॉन्च की है जिस पर आम नागरिक अपने सुझाव दे सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और अरविंद कुमार की पीठ ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को तय की है। न्यायाधीश विवेक रुसिया मध्य प्रदेश जबलपुर उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट ने नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं। हाईकोर्ट चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा के प्रमोशन के बाद उन्हें स्थान मिला है। सचदेवा को उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति दी गई है। जस्टिस विवेक रुसिया जबलपुर के रहने वाले हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। उन्होंने लाभार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनका दृढ़ संकल्प, उद्यमशीलता देश की अर्थव्यवस्था को लगातार मजबूत कर रही है। आज विश्व दुग्ध दिवस है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी संदेश में कहा कि प्रदेश के परिश्रमी पशुपालकों ने मध्य प्रदेश को दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में देश में अग्रणी राज्यों में शामिल किया है। डॉ. यादव ने बताया कि राज्य सरकार गौ संरक्षण, गौशालाओं के निर्माण और डेयरी क्षेत्र के सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य कर रही है। शहडोल से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में हर दिन 6,50,000 लीटर दूध का उत्पादन होता है। और अब खबर मौसम की। नौतपा के 8वें दिन आज प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं का असर बना हुआ है। राजधानी भोपाल में भी ढलती शाम में अचानक बादल छा गए। तेज हवाओं के साथ मौसम में ठंडक घुल गई। भोपाल, इंदौर, देवास, सीहोर समेत कई जिलों में आज तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई। तापमान में तेजी से गिरावट आई। खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया कि आज जिले में भी तेज आंधी के साथ कई क्षेत्रों में बारिश हुई है। आगरमालवा जिले में आज दोपहर तेज धूल भरी आंधी तूफान ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया। पन्ना में कल अचानक तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग ने झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुना में आंधी और गरज चमक के साथ ओले गिरने का ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छिंदवाड़ा में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज परिसर में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। पन्ना में आज प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से नशे से दूर रहने के लिए एक रैली का आयोजन किया गया। झाबुआ के रामा में कल विकासखंड स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया जाएगा। शिवपुरी में पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने शहर के 4 नलकूपों का जनसामान्य को जल आपूर्ति के लिए 10 दिन के लिए अधिग्रहण किया है। गुना कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल के नवाचार के तहत कलेक्टर कार्यालय में आज उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। अशोकनगर में पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन 15 जून तक किए जा सकते हैं। राजगढ़ जिले में रेशम कृमि पालन के लिए ऑनलाइन पंजीयन शुरू हो गया है। इच्छुक कृषक आवेदन कर सकते हैं। मंदसौर कलेक्टर अदिति गर्ग ने संबल योजना के लंबित मामलों को जल्द निपटाने और जर्जर स्कूल भवनों को ठीक करने के निर्देश दिए। नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्रा की अध्यक्षता में 3 जून को जिला कौशल समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: ओह लवली, वेल डन,
1: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
0: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट, लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन?
2: आरबीआई कहता है,
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत

कार्यक्रम का आगाज करते हैं पाकीज़ा फिल्म के गीत से, आवाज है लता मंगेशकर की। कैफी आजमी के बोल हैं और गुलाम मोहम्मद का संगीत।

हलाकू। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में। शंकर जयकिशन का संगीत है और शैलेंद्र के गीत।

और आज लोकरंग कार्यक्रम में हमें पहलो पत्र भेजो है गांव भड़भूंजी जिला आगर मालवा से रघुनाथ मालविया, सुषमा, मंजू, बबीता, आयुष, ओम प्रकाश ने एक गीत की फरमाइश करी है जो लोकगीत गाँव है रुद्रदत्त दुबे ने, तो सुनते हैं जो लोकगीत।

इस गीत के साथ ही हमारा आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम सभा, जिसे हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं।

विश्व दुग्ध दिवस की। तो भैया बहनों देखो, दूध आज अरबों लोगों को पोषण करत है। दूध से हमें आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं जो आप और हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। हड्डियां मजबूत बनावो दूध को सबसे प्रथम कार्य है। और जो छोटे बच्चा है जो कमो कमो कुपोषण की तरफ बढ़न लगते हैं, तो ऐसे में यदि उन्हें अच्छी तरीके से दूध दो जाए तो उनको विकास तो होते ही, संगे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ावे में भी दूध अत्यंत महत्वपूर्ण है। और आज तो हम देख रहे हैं कि दूध से बने कई उत्पाद ऐसे हैं जिनसे हमें पोषक तत्व मिलते हैं, प्रोटीन और अन्य जरूरी ऊर्जा भी हमें मिलते हैं। तो हम तो जो ही कहेंगे कि दूध इतना महत्वपूर्ण है, इसके महत्व को समझें और अपने भोजन में इसको स्थान अवश्य दें। तो देखो चर्चा तो अब अपनी चलत रहे हैं, मनो अब आगे बढ़त हैं अगले लोकगीत के संगे। और इसकी फरमाइश करी है राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क MP साजापुर से मनमोहन राजावत, राज मधु राशि रक्षित एवं समस्त रजावत परिवार ने ये लोकगीत की फरमाइश करी है। जी ये गाँव है यादवेंद्र प्रसाद शुक्ला ने।

तो भैया बहनों अब गीत के संगे आगे बढ़े और अगलो पत्र हमें भेजो है घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया ने लोकगीत की फरमाइश करी है। जी ये गाँव है ठाकुर शहजाद सिंह ने।

तो भैया बहनों, अब लोकगीतन को सिलसिला चल रहा है और आपके ही पत्रों से आप लोग उनको जो लोकगीत सुनवा रहे हैं, आशा है आप लोग उनको लोकगीत पसंद आ रहे हुई हैं। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़े, सुनत है अगलो लोकगीत। जी की फरमाइश करी है नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन ने। संगे संगे ही गीत की फरमाइश करी है भागचंद साहू, अजय साहू, राज, करिश्मा और प्रेमाबाई साहू ने, राजेंद्र नगर गंजबासोदा से। तो सुनत है जो लोकगीत, जिए गाओ है रेवा राम मेहरा ने।

और अब आगे बढ़े और अगले लोकगीत की हमसे फरमाइश करिए। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरिंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा ने इन लोकगीत की फरमाइश करी है। जी ये गाँव है अनरथ लाल बैरसिया ने।

तो भैया बहनों अब आगे बढ़ें और अगले पत्र को हम अपने कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं। ये भेजो है ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम कुसुम प्रोनिका प्रोनामिका उत्कर्ष नेताम ने ये लोकगीत की फरमाइश करी है। जी ये गांव है हरीराम अहिरवार और उनके साथी अन्य।

तो भैया बहनों, इन लोकगीतन के संग अब आपको बता दें कि कल ग्राम सभा कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुने 1 जून 2026 को रायसेन जिला के रामसिया गांव में राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान की रेडियो रिपोर्ट। जी में रिकॉर्डिंग सहयोग है महेश सोनी को। तो जा रेडियो रिपोर्ट आप कल सुनेंगे ग्राम सभा कार्यक्रम के अंतर्गत। और अबे हो गई है चलवे की बिरिया, वही चलती बिरिया आप सबसे विदा लें। आप सबको अमृता बहन की राम राम।

0: आकाशवाणी भोपाल से अभी आप
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजने वाले हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। आज आपके साथ हूँ मैं अमिता। श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज करते हैं पहचान फिल्म के इस गीत से, जिसे गाया है मुकेश और सुमन कल्याणपुर ने। गीतकार हैं इंदीवर और संगीतकार शंकर जयकिशन।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में फिल्म शगुन से। साहिर लुधियानवी के बोल हैं और खयाम का संगीत।

दिल ही तो है। आइए सुनते हैं इस फिल्म में सुमन कल्याणपुर की आवाज़, रोशन का संगीत और साहिर लुधियानवी के बोल।

जब प्यार किसी से होता है। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म में मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ें। हसरत जयपुरी का लिखा यह गीत था और शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म ब्रह्मचारी से। मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ें हैं, शंकर जयकिशन का संगीत है और हसरत जयपुरी की रचना।

संगीतकार शंकर जयकिशन, गीतकार हसरत जयपुरी, फिल्म का नाम अप्रैल फूल। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर ने।

दिल ने फिर याद किया। आइए सुनते हैं इस फिल्म में मोहम्मद रफ़ी, सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाज़ें। सोनिक ओमी का संगीत है और जी एल रावल के गीत।

इस गीत के साथ ही हमारा आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। एफएम बैंड पर यह प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। रात्रि के 8:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है पॉप म्यूजिक। आगाज करते हैं कार्यक्रम का सोनू निगम के गाए इस गीत से।

हैरी पॉटर के गाए इस गीत के साथ ही हमारा आज का पॉप म्यूजिक का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 हुए हैं। डीजे प्रस्तुत है समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालाधान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति

0: भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: Both sides underscored the importance,
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
1: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है, क्योंकि ये एकमात्र आसियान देश है जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है। उन्होंने शांति और सुलह के लिए म्यांमा के प्रयासों के प्रति भारत के अटूट समर्थन का भी आश्वासन दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी।
3: I am confident that this comprehensive agreement,
4: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
3: Of our shared future.
0: श्री गोयल ने बताया कि समझौते के लागू होने के बाद आज मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से कई खेपें भेजी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यह समझौता अपनी उन्नत रसद और बंदरगाह अवसंरचना के माध्यम से खाड़ी सहयोग परिषद और पूर्वी अफ्रीकी बाजारों तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण द्वार बनेगा। श्री गोयल ने कहा कि अमरीकी FDA, यूरोपीय औषध एजेंसी या ब्रिटेन के MHRA से अनुमोदित भारतीय जेनरिक दवाओं को अब ओमान में 90 दिन के भीतर बाजार में बिक्री की अनुमति मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत ने समझौते के तहत गैर सेवा क्षेत्रों में भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा के लिए एक बाध्यकारी प्रतिबद्धता भी हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में क्षेत्र में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया की रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं।
2: डोमेस्टिक एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस के संबंध में पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 बुकिंग्स रिसीव हुई हैं। उसके अगेंस्ट 1,22,00,000 डिलीवरीज की गई हैं और 95% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई हैं।
1: इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिनमें एलपीजी डीलरशिप

0: और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpg वितरक चयन पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं और इनका आधिकारिक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप चयन प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। प्रामाणिक जानकारी केवल आधिकारिक एलपीजी वितरक चयन पोर्टल पर ही उपलब्ध है। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों की विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने दो विधायकों संदीप अंसाहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि लोक अदालतों और जिला विधि सेवा प्राधिकरणों को तलाक का निर्णय देने का अधिकार नहीं है और विवाह भंग करने का अधिकार केवल पारिवारिक न्यायालयों के पास है। एक याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा कि लोक अदालतों को केवल सौहार्दपूर्ण समझौते कराने का अधिकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
1: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
1: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रूपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रूपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
3: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रूपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से
1: न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है। हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए

0: विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और ऑनलाइन गतिविधियों की लत से बचाना है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए हैं। देश में विनिर्माण क्षेत्र में मजबूती से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में अप्रैल 2025 की तुलना में इस वर्ष अप्रैल में 4.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि विनिर्माण क्षेत्र में इस दौरान 6.2% की वृद्धि दर्ज की गई। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक बिजली तथा तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लू के दौरान सुरक्षित रहें, सावधानियां, तैयारी और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग की डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। श्रोता इस विषय से संबंधित अपने प्रश्न टेलीफोन नंबर 011-233-1481 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी को आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। वन रेंज अधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि फूलों की घाटी में वर्तमान में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और वनस्पतियों की कई दुर्लभ किस्में हैं।
2: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुँच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल। और राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, this is Akashwani. I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar U Mai Aung Lian hold talks in New Delhi, emphasize upon preventing misuse of their territory against each other's security interests. India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement becomes effective, giving duty-free access to Indian exporters on 98% of Oman's tariff lines. India and Australia to enhance defense industrial collaboration in futuristic technology research. Malaysia joins countries banning social media use by children below 16. And orange alert for thunder squall issued for Rajasthan, Gujarat, West Madhya Pradesh, Odisha and coastal Andhra Pradesh till tomorrow. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar U Mi Aung Lian held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi today. The discussions covered trade, defence, border management, culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said both sides expressed interest in forging closer cooperation.

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए थे।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं एक लाइन सुना करती, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
1: आप खाए थाली में, उन्ने कोधे प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

अभिनेत्री जिसने कई दशक तक दर्शकों के दिलों पर राज किया, जिसने एक काली अंधेरी रात में चमकते चांद को देखकर ये बात कही थी।

इज्जत का असली नाम था रशीद फातिमा। पैदा हुई 1 जून 1929 को कोलकाता में। नरगिस दत्त की माँ थी जद्दनबाई, जो उस जमाने की बहुत ही मशहूर शास्त्रीय गायिका थी। इसके अलावा वो नर्तकी, निर्देशक, संगीतकार और अभिनेत्री के तौर पर बहुत ही मशहूर थी। यहाँ तक कि भारतीय सिनेमा में संगीत देने वाली पहली महिला संगीतकार थी जद्दनबाई। हमेशा वो ये चाहती थी कि उनकी बेटी फातिमा रशीद अभिनय की दुनिया में जाए, लेकिन नरगिस का ऐसा कोई इरादा नहीं था। आपको बताते हैं कि सन 1935 में, जब फातिमा रशीद सिर्फ 6 बरस की थी, जद्दनबाई ने उन्हें अभिनय का मौका दिया। फिल्म थी तलाश-ए-हक। बतौर बाल कलाकार नरगिस के अभिनय की पारी शुरू

जैसे कि हमने आपको बताया, नरगिस का अभिनय का कोई इरादा नहीं था, वो तो डॉक्टर बनना चाहती थी। लेकिन माँ ने जिद पकड़ रखी थी कि बेटी बनेगी तो केवल अभिनेत्री। एक दिन जद्दनबाई ने उन्हें स्क्रीन टेस्ट के लिए भेजा जाने माने निर्माता निर्देशक महबूब खान के पास। चूंकि नरगिस का मन नहीं था एक्टिंग करने का, इसलिए उन्होंने बड़े बेमन से स्क्रीन टेस्ट दिया, बस यूं ही अपने डायलॉग्स बोल दिए। ये सोचकर यूं ही बोल दिए कि महबूब खान उन्हें फेल कर देंगे और वो डॉक्टर बनने के रास्ते पर चल पड़ेंगी। लेकिन उनका ये अंदाजा गलत निकला। महबूब खान ने अपनी फिल्म तकदीर के लिए नरगिस को नायिका चुन लिया। ये फिल्म सन 1943 में रिलीज हुई। इसके बाद सन 1945 में महबूब खान ने फिल्म हुमायूं में काम करने का मौका दिया नरगिस को। इसके 4 बरस बाद नरगिस का करियर चमक उठा। सन 1949 नरगिस की 2 फिल्में आईं। एक थी राज कपूर की फिल्म बरसात।

जैसा कि हमने कहा, सन 1949 में नरगिस का करियर चमक उठा। बरसात के अलावा इस साल आई दूसरी महत्वपूर्ण फिल्म थी अंदाज।

अंदाज में राज कपूर और दिलीप कुमार के साथ नरगिस का प्रेम त्रिकोण था। नरगिस अपने अभिनय से दर्शकों का ध्यान खींचने में कामयाब रही।

जिंदगी की राहों में कामयाबी और नाकामी जैसे बारी बारी से आती रहती हैं। सन 1949 में चमका नरगिस का तारा सन 1950 के बाद अचानक धूमिल पड़ने लग गया। एक के बाद एक उनकी कई फिल्में नाकाम होती रहीं। इन फिल्मों में खास थीं शीशा, बेवफा, आशियाना, अंबर, अनहोनी, शिकस्त, पापी और धुन। सन 1955 का जैसे नरगिस के करियर को इंतजार था, राज कपूर के साथ उनकी फिल्म आई श्री 420।

श्री 420 बेहद कामयाब रही। राज कपूर और नरगिस की जोड़ी बहुत पसंद की गई और उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में फिल्में एक साथ की। यहाँ आपको बता दें कि राज कपूर और नरगिस ने सबसे पहले सन 1948 में फिल्म वर्षा में काम किया था। इसके बाद बरसात, अंदाज, जान पहचान, प्यार और फिर आई आवारा।

आवारा के बाद राज कपूर और नरगिस की जो फिल्में आईं, उनके नाम भी आपको बता दें, अनहोनी, आशियाना और उसके बाद आ

आह के बाद धुन, पापी और जागते रहो राज कपूर और नरगिस की फिल्में हैं। इसके अलावा एक और फिल्म जो राज कपूर ने प्रोड्यूस नहीं की, सन 1956 में आई चोरी चोरी राज कपूर और नरगिस के अभिनय वाली आखिरी फिल्म थी।

राज कपूर की फिल्म जागते रहो में नरगिस ने अतिथि कलाकार के तौर पर भूमिका निभाई और इस फिल्म के आखिर में लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना नरगिस पर फिल्माया गया।

नरगिस की अभिनय यात्रा में हम आ पहुंचे थे सन 1956 तक। अब चलते हैं आगे, साल 1958, महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया।

महबूब खान और नरगिस का नाता पुराना रहा है और आज नरगिस की अभिनय यात्रा में हमने आपको बताया है कि किस तरह से बहुत कम उम्र में महबूब खान ने नरगिस से अपनी फिल्मों में काम करवाया था। जब अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म मदर इंडिया की तैयारी महबूब खान ने की तो जाहिर है नायिका नरगिस ही होनी थी, लेकिन नरगिस के जीवन में यह फिल्म अभिनय के अलावा दूसरे कारण से बड़ी महत्वपूर्ण बनी। फिल्म मदर इंडिया की शूटिंग बिलीमोरा में चल रही थी। दृश्य था आग से नरगिस को बचाने का। नरगिस आग में घिर गई थी। उनके बेटे की भूमिका निभा रहे सुनील दत्त ने आग में कूदकर नरगिस की जान बचाई। वो सुनील दत्त से इतनी प्रभावित हुई कि उन्हें अपना जीवन साथी बना लिया। 11 मार्च 1958 नरगिस और सुनील दत्त ने शादी कर ली।

दिलचस्प बात यह है कि बलराज दत्त जब रेडियो में बतौर अनाउंसर काम करते थे तो उन्होंने अपने जमाने की नामी अभिनेत्री नरगिस का इंटरव्यू किया था। नरगिस को इंटरव्यू करने का इस नौजवान का अंदाज बड़ा पसंद आया था। बलराज दत्त फिल्मों में आए सुनील दत्त के नाम से। सुनील दत्त और नरगिस एक साथ पर्दे

पर ज्यादा नजर नहीं आए। सन 1964 में आई फिल्म यादें जरूर ऐसी फिल्म है जिसमें दोनों ने ऑन स्क्रीन अपनी मौजूदगी दिखाई। शादी के बाद सुनील दत्त और नरगिस के जीवन में तीन बच्चों की किलकारियां गूंजी, संजय दत्त, नम्रता और प्रिया दत्त। सुनील दत्त और नरगिस के जीवन का एक दिलचस्प किस्सा। फिल्म हमराज की शूटिंग चल रही थी। सुनील दत्त को इस फिल्म के कुछ दृश्यों में 110 बरस के बूढ़े का किरदार निभाना था। पंडरी सुकर ने उनका मेकअप कर लिया था और वो एक बूढ़े बाबा के भेष में सेट पर मौजूद थे। नरगिस सुनील दत्त से मिलने आई, सबसे पूछती रहीं दत्त साहब कहां हैं। वहीं मौजूद एक बूढ़े बाबा ने कहा, वो तो सेट पर आए ही नहीं हैं। नरगिस हार मानकर वहां से जाने लगी। इस बीच तकरीबन 2 घंटे बीत गए। मेकअप मैन पंडरी दादा ने धीरे से नरगिस को बताया कि जिस बूढ़े बाबा से आपने दत्त साहब के बारे में पूछा, असल में वही दत्त साहब हैं। इतने शानदार मेकअप को देखकर नरगिस दंग रह गईं। उन्होंने मेकअप मैन पंडरी दादा को अपनी कीमती घड़ी भेंट कर दी। सुनील दत्त और नरगिस का ऐसा था दिलचस्प जीवन। नरगिस भारतीय सिनेमा की ऐसी पहली अभिनेत्री थी जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। समाज सेवा के लिए उन्हें राज्यसभा में सदस्य के रूप में चुना गया था। फिल्म मदर इंडिया में बेमिसाल अदाकारी के लिए नरगिस को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार। शादी के बाद नरगिस ने खुद को अभिनय से दूर कर लिया। वो परिवार और समाज सेवा में लग गईं। लेकिन अनवर हुसैन और अख्तर हुसैन, जो नरगिस के भाई थे, उनके जोर देने पर नरगिस ने सत्येन बोस की फिल्म रात और दिन साइन की। सन 1967 में आई रात और दिन। इस फिल्म के लिए नरगिस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला।

सन 1958 कार्लोवी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में नरगिस को मिला बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार। 3 मई 1981 पैंक्रियाटिक कैंसर ने नरगिस के हिस्से की सांसें खत्म कर दी। एक अभिनेत्री इस दुनिया से विदा हो गई।

0: पैंक्रियाटिक कैंसर ने नरगिस को जब उनके चाहने वालों और उनके परिवार से छीना। नरगिस महज 51 साल की थी। सबसे ज्यादा दिल दुखाने वाली बात यह है कि वो अपने लाडले बेटे को रुपहले पर्दे पर बतौर हीरो आते नहीं देख पाई। संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी नरगिस दत्त के देहांत के बाद रिलीज हुई और संजय दत्त को इसका हमेशा से अफसोस रहेगा। सन 1982 में नरगिस की याद में नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की गई। ये फाउंडेशन कैंसर पीड़ित लोगों के कल्याण के लिए आज तक काम कर रहा है। नरगिस एक जागरूक नागरिक, एक बेमिसाल अभिनेत्री, एक शानदार इंसान। अभिनेत्री नरगिस को हमारा विनम्र नमन।
1: रुक सा।

0: आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें थीं अभिनेत्री नरगिस की, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

मेरी किस्मत की किताब है तेरे हाथों में, सोच लो क्या करना है। मेरी तन्हाइयों का हिसाब है तेरे हाथों में, सोच लो इस दिल का अब क्या करना है।

ये बहाने, इन बहानों के फसाने हमें कर रहे हैं बेकरार। कब बनेगी फूल ये कली, है बस इसी का इंतजार।

क्या भरोसा है कल का, जो करना है चलो आज ही करें। जो चाहते हैं कि रेशम सा हो रिश्ता हमारा, तो ये कोशिश आज ही करें।

जब से लगाया है दिल, इस दिल का तो बुरा हाल है। छोड़ जाओगे घर कभी तो क्या होगा, जी को सता रहा यही ख्याल है।

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के ठीक 10:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है सदाबहार फिल्मी गीत। कार्यक्रम का आगाज करते हैं फिल्म फूल बने अंगारे से। इस गीत को गाया है मुकेश ने। कल्याण जी आनंद जी का संगीत है और आनंद बख्शी के गीत।

फागुन। आइए सुनते हैं इस फिल्म में आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें, ओपी नैयर का संगीत है और कमल जलालाबादी के बोल।

0: एक मुसाफिर एक हसीना, आइए सुनते हैं इस फिल्म के लिए मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़, ओपी नैयर का संगीत और राजा मेहंदी अली खां का गीत।
1: आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो।

शंकर जयकिशन का संगीत और हसरत जयपुरी की बोल, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ और फिल्म का नाम राजकुमार।

कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति, जिसे हमने लिया है फिल्म दूल्हा दुल्हन से, आवाज़ है मुकेश की, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है और कमल जलालाबादी का गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम है रात और दिन, शंकर जयकिशन का संगीत है। इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने।

0: इस गीत के साथ ही हमारा आज का सदाबहार फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजे हैं। आइए सुनते हैं समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
1: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्योगों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। पश्चिम एशिया में बदलती परिस्थितियों के बावजूद सरकार ने आज नागरिकों को आश्वस्त किया है कि ईंधन, खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है।

0: नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर आयोजित अंतर मंत्रालयी बैठक को संबोधित करते हुए उपभोक्ता मामलों के विभाग में अपर सचिव अनुपम मिश्रा ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा के मामले में मजबूत स्थिति में है। वहीं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सभी तेल विपणन कंपनियां सुचारू आपूर्ति बनाए रखने के लिए सभी खुदरा दुकानों पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति में सक्रिय रूप से लगी हुई हैं। वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव मनोज मुत्तथिल अयप्पन ने बताया कि सरकार ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष से प्रभावित व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है। इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिसमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpgvitarakchayan.in पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने, संगठन के विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने के लिए भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आर.एन. नवी ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। गृहमंत्री अमित शाह ने मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए मंत्रियों को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी डबल इंजन सरकार में नई टीम पूर्ण समर्पण, प्रतिबद्धता और जनसेवा की भावना के साथ काम करेगी। राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए गरज के साथ तूफानी मौसम का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज शेयर बाय अपराजिता नायर। Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar, U Min Aung Hlaing, held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi today. The discussions covered trade, defence, border management, culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, development, cooperation, health, education and energy. Foreign Secretary said Prime Minister reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of territory for activities inimical to their security interests.
2: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
1: Mr. Misri said both sides underlined the importance of connectivity and agreed to work as quickly as possible towards the completion of Kaladan Multimodal Transit Transport Project. President Draupadi Murmu has said Myanmar is an important partner in India's Neighbourhood First Act East and Mahasagar policies. Welcoming Myanmar President U Min Aung Hlaing at Rashtrapati Bhavan today, President Murmu said both the countries share deep cultural, civilizational and spiritual ties that go back to centuries. The President said Myanmar is India's gateway to Southeast Asia, as it is the only ASEAN country that shares a land border with India. Congratulating President Hlaing on assuming office as the President of Myanmar, President Murmu said that India looks forward to working closely with the new government to strengthen the bilateral partnership further. The India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement has come into force today. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the CIPA will deepen the economic and strategic ties between the two nations. Addressing media in New Delhi, Mr. Goyal said that this partnership agreement is not simply a trade agreement, it is a statement of civilizational trust. The Union Minister informed that from day one, India will secure duty-free access on 98% of Oman's tariff lines, covering over 99% of India's export to Oman. Mr. Goyal informed that multiple consignments are being shipped today from Mumbai, Kolkata,